0: 的这里广播电台听众朋友们，我们现在播送纳切兰邦的奥祖的民间歌曲，请收听。
1: 我就来的朋友

श्रोताओं, अभी आपने सुना भगवान महावीर के दर्शन पर विचार। आकाशवाणी दिल्ली का ये इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर, DRM 810 किलो हर्ट्स पर।

मंडप में श्री राम और सीता का विवाह संपन्न हो चुका है। दूल्हा दुल्हन अब एक आसन पर बैठे हैं। पुत्र के विवाह संस्कार के साथ पिता के मन में अपने वंश वृक्ष के फूलने फलने की कल्पना मूर्त रूप धारण करने लगती है। वशिष्ठ मुनि की आज्ञा पाकर राजा जनक ने अन्य कन्याओं मांडवी श्रुतकीर्ति तथा उर्मिला को मंडप में बुलवाया। कुशध्वज की ज्येष्ठ कन्या मांडवी, जो गुण शील सुख और शोभा की प्रतिमूर्ति थी, पूरे विधि विधान के साथ राजकुमार भरत को ब्याही गईं। उसी प्रकार उर्मिला का ब्याह लक्ष्मण से हुआ। सुंदर नेत्रों वाली श्रुतकीर्ति शत्रुघ्न की भार्या बनी। अपने चारों पुत्रों को वधुओं सहित देखकर अवध नरेश ऐसे आनंदित हो रहे हैं मानो उन्होंने यज्ञ श्रद्धा योग तथा ज्ञान इन चार राजसी क्रियाओं द्वारा अर्थ धर्म काम और मोक्ष प्राप्त कर लिया हो।

एम आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका रचा झा. अथ वार्ताः. केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन भारतस्य सेमीकण्डक्टर इति परिकल्पना निर्माण परिवेशस्य सुदृढीकरणाय पञ्चशताधिक सप्तविंशति सहस्राधिकैकलक्षकोटि रूप्यकाणां विनियोगेन सेमीकॉन 2.0 इत्येषा योजना अनुमोदिता. नवदिल्ल्यां ह्यः वार्ताहरान् सम्बोधयन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः एतान् मन्त्रिमण्डल निर्णयान् उद्घोषितवान्. असौ अवदत् यत् सेमीकॉन 1.0 इति योजनायाः सफलताम् अनुवर्तमाना एषा योजना भारतं वैश्विकं सेमीकण्डक्टर इति केन्द्रं स्थापयितुं प्रशासनस्य दृढ प्रतिबद्धतां द्योतयति. मन्त्रिमण्डलेन पञ्चशताधिक द्विषष्टि सहस्रकोटि रूप्यकाणां विनियोगेन चलदूरभाष विनिर्माण योजना अपि अनुमोदिता. एवमेव उत्तरप्रदेशस्य वाराणसी नगरे मार्ग संयोजनस्य सुदृढीकरणाय यातायातावरोधस्य न्यूनीकरणाय यात्रा समयस्य च संक्षेपणाय द्वे उन्नत मार्ग परियोजने अपि अनुमोदिते.

0: Para pemirsa yang terhormat, Anda bisa mengirimkan laporan dan saran Anda melalui postel atau email kami. Harap dicatat email kami sebagai berikut: air.indonesia313@gmail.com. Kami ulangi lagi, air.indonesia313@gmail.com. Laporan Anda tetap ditunggu di meja tugas kami di studio di sini. Terima kasih.
1: Catch the rain. बारिश की एक एक बूंद को हमें बचाना है तो मेरा खास आग्रह है वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
2: जल है तो हम है। आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश के वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमरीका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की दो एलिवेटेड राजमार्ग परियोजनाओं को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक कार्य समिति ने वाराणसी में सड़क संपर्क बेहतर बनाने और भीड़भाड़ तथा यात्रा समय को कम करने के लिए इन परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली में कल ये जानकारी दी।
4: सेमिकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमिकॉन 2.0 माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमिकॉन 2.0 में 6 पिलर्स हैं। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स। सेकंड बड़ा फोकस रहे

0: मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और एटीएमपी, ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
1: रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग आसान और अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए भारतीय रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन IRCTC की वेबसाइट का नया स्वरूप जारी किया है। हमारे संवाददाता ने बताया कि IRCTC ने इसमें चार बड़े सुधार किए हैं।
2: इन सुधारों में पहला सुधार है कि इसमें कैप्चा, पॉपअप या ध्यान भटकाने वाली दूसरी चीजें नहीं हैं। दूसरा, यात्री सभी क्लास में सीट की उपलब्धता देख सकते हैं। तीसरा, इसमें टिकट बुक करने के लिए जरूरी स्टेप्स की संख्या कम है और वेबसाइट अब यात्रियों की जानकारी सेव कर लेगी, जिससे दोबारा बुकिंग करना आसान हो जाएगा। मौजूदा वेबसाइट के होम पेज पर भी इस नए बीटा वर्जन का लिंक उपलब्ध है। मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं से इसके आसान फीचर्स पर फीडबैक देने का अनुरोध किया है। IRCTC वेबसाइट पहली बार 2002 में शुरू की गई थी और अभी यह हर दिन औसतन लगभग 14.5 लाख टिकट की बुकिंग संभालती है। सकलेन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब जाएंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री जालंधर में 5,470 करोड़ रुपए से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। श्री मोदी अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत जालंधर कैंट सहित 75 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन भी करेंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विश्व प्रसिद्ध भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आज से देश भर में शुरू हो रही है।

0: नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्याम जगन्नाथाय ते नमः। जगत के नाथ कहे जाने वाले श्री जगन्नाथ को भगवान श्री कृष्ण का रूप माना जाता है। रथ यात्रा के दौरान भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से लगभग 3 किलोमीटर दूर स्थित श्री गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। मान्यता है कि ये मंदिर भगवान की मौसी का घर है, जहां तीनों देवता 9 दिनों तक विराजमान रहते हैं। इसके बाद बहुधा यात्रा के साथ वे दोबारा मंदिर लौटते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत पाहंडी अनुष्ठान से होती है। इसमें मंत्रोच्चार, भजन कीर्तन और पारंपरिक रीति रिवाजों के बीच तीनों विग्रहों को रथों पर विराजमान कराया जाता है। इसके बाद लाखों श्रद्धालु रस्सियों से रथ खींचते हैं, जिसे अत्यंत शुभ और पुण्यदायक माना जाता है। भगवान के इस नगर भ्रमण को भक्तों को दर्शन और आशीर्वाद देने का प्रतीक माना जाता है।
1: लीला चलवा रे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले।
2: ओडिशा के पुरी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि रथ यात्रा को लेकर श्रद्धालुओं में अपार उत्साह दिखाई दे रहा है।
3: सुबह की पहली किरणों के साथ पुरी का पवित्र बड़दंड जगमगा उठा है और तीर्थयात्रियों के इस शहर में भक्ति का सागर उमड़ पड़ा है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी

0: सुभद्रा और भगवान सुदर्शन अपनी सालाना यात्रा पर श्रीगुंडीचा मंदिर जाएंगे। पुरी के गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव तीन शानदार ढंग से सजाया गया रथ नंदीघोष तालध्वज और देवी दलन पर छेरा पहरा की रस्म निभाएंगे। फिर भक्त जय जगन्नाथ के जयकारों के बीच इन रथों को ग्रांड रोड पर खींचना शुरू करेंगे। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार।
1: हमारी संवाददाता ने बताया है कि गुजरात के अहमदाबाद में भी रथ यात्रा धार्मिक उत्साह के साथ निकाली जा रही है।
2: सज रहा है रथ प्रभु का चंद्रमासा चेहरा।
3: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन अवसर पर सदियों पुरानी परंपरा के अनुसार भगवान जगन्नाथ जी की 149वीं वार्षिक रथ यात्रा धार्मिक उत्साह और उल्लास के साथ निकाली जा रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज जमालपुर स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर में सुबह मंगला आरती में भाग लेकर भगवान का आशीर्वाद लिया। इसके बाद मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने सोने के झाड़ू से रथों का मार्ग साफ करने की प्रतीकात्मक रस्म पहिन विधि सम्पन्न कर रथ यात्रा को रवाना किया। रथ यात्रा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय प्रशासन ने अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए हैं। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: रांची से हमारी संवाददाता ने बताया है कि झारखंड में भी रथ यात्रा को लेकर विशेष तैयारियां की गई हैं।
4: राजधानी रांची के ऐतिहासिक धुरवा स्थित जगन्नाथपुर मंदिर में सुबह से ही अनुष्ठान शुरू हो गए हैं। दोपहर में विग्रहों के रथारूढ़ होने के बाद शाम 5:01 पर महाप्रभु का रथ मौसीबाड़ी के लिए प्रस्थान करेगा। इधर हजारीबाग में इस्कॉन द्वारा आईआईटी के विशेषज्ञों की मदद से 40 फीट ऊंचे आधुनिक तकनीक वाले रथ पर भगवान विराजमान होंगे, जहां कोलकाता की टीम विशेष सांस्कृतिक प्रस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। केरलम का सबरीमला मंदिर आज से मासिक पूजा के लिए खुलेगा। मंदिर में आज शाम से लेकर 21 जुलाई तक दर्शन किए जा सकेंगे। भीड़ भाड़ से बचने के लिए यह तीर्थयात्रियों को केवल वर्चुअल कतार प्रणाली के माध्यम से ही प्रवेश मिलेगा। मध्य प्रदेश से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इंदौर से संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबूधाबी के लिए पहली उड़ान सेवा को कल झंडी दिखाकर रवाना किया। एयर इंडिया एक्सप्रेस की उड़ान सप्ताह में 4 दिन संचालित होगी। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। 15 अगस्त को केवल सरकारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी। अमरीका ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सवेरे एक जोरदार धमाके के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियां प्रभावी कर दी गईं। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत सहित इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। अमरीकी सेना ने कहा है कि उसने ईरान के लिए आर्थिक रूप से बहुत प्रमुख खार्ग द्वीप की ओर जा रहे एक खाली तेल टैंकर को रोक दिया है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि उनकी अमरीका के साथ बातचीत की कोई योजना नहीं है। और अब खेल जगत की हलचल के साथ हैं दुर्गा प्रसाद।
5: अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंच गया है। दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल मुकाबले में अब रविवार देर रात अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। सेमीफाइनल में पहला हाफ गोल रहित रहा। 55वें मिनट में इंग्लैंड के लिए एंथनी गॉर्डन ने पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडिस ने 85वें मिनट में गोल करके अपनी टीम को बराबरी दिलवा दी। 90वें मिनट में लोटारो मार्टिनेज ने गोल करके अर्जेंटीना को 2-1 से शानदार जीत दिलवाई। इससे पहले अर्जेंटीना ने 2022 में कतर में विश्व कप जीता था। और भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 से कार्डिफ के सोफिया गार्डन्स में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया। श्रृंखला का तीसरा मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान में खेला जाएगा।
1: मौसम विभाग ने अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र और उड़ीसा के कुछ स्थानों पर आज अत्यधिक तेज वर्षा की चेतावनी जारी की है। वहीं असम, मेघालय, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्रों में, सिक्किम और उत्तराखंड में भी

0: आज तेज वर्षा की संभावना है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णयों की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, चिप और रिएक्टर के लिए खजाना खोला। नवभारत टाइम्स के अनुसार चिप का हब बनेगा भारत, सेमिकॉन के दूसरे चरण को मिली कैबिनेट की मंजूरी। जनसत्ता की सुर्खी है, सेमीकंडक्टर और मोबाइल के लिए 1,90,000 करोड़ की योजनाएं मंजूर। दैनिक जागरण ने आयात घटाने की चुनौती शीर्षक से संपादकीय में दिया है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनेक फैसलों में अधिकांश के केंद्र में देश की आर्थिक स्थिति को बल प्रदान करना रहा है। ये फैसले रेखांकित करते हैं कि सरकार निर्यात बढ़ाना चाहती है, आयात घटाना और मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना चाहती है। पंजाब केसरी के अनुसार भारत ब्रिटेन में व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता लागू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किसानों और एमएसएमई को मिलेगा लाभ। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, समझौते से 99% निर्यात शुल्क मुक्त हो जाएगा। लोकसत्ता के अनुसार यूके की विस्की, कारें और ब्यूटी प्रोडक्ट्स अब भारत में मिलेंगे सस्ते। राजस्थान पत्रिका ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लेख देते हुए लिखा है, जगन्नाथ हैं महाप्रभु, उनका प्रसाद महाप्रसाद। जगन्नाथपुरी में पूरे वर्ष भक्त मंदिर में आकर महाप्रभु के दर्शन करते हैं और वर्ष में एक बार महाप्रभु बाहर आते हैं। दैनिक जागरण की सुर्खी है, जीन से ग्रीन क्रांति। देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को कल हरी झंडी दिखाएंगे पीएम। हेरिटेज और पर्वतीय रेल मार्गों पर चरणबद्ध रूप से चलेंगी 35 हाइड्रोजन रेलगाड़ियां। अमर उजाला का शीर्षक है, अमरीकी हमलों में 7 ईरानी सैनिकों की मौत, 300 से ज्यादा घायल। अमरीका की होर्मोज में सख्त नाकेबंदी, ईरान ने खाड़ी देशों में दागे मिसाइल और ड्रोन। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, एआई की मदद से हरियाणा में मिले 25,666 नए टीबी मरीज। टीबी मुक्त हरियाणा में 100 दिन के दौरान 4,73,000 लोगों की हुई जांच।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से अधिक की 2 एलिवेटेड सड़क परियोजनाओं को मंजूरी दी। रेल मंत्रालय ने टिकट बुकिंग में आसानी के लिए IRCTC की नई वेबसाइट शुरू की। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज से शुरू। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए। अर्जेंटीना फीफा फुटबॉल विश्व कप के फाइनल में पहुंचा, दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। फाइनल में रविवार को स्पेन से खेलेगा और भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आज शाम कार्डिफ में। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Anuja Kumar. The headlines. Union Cabinet clears 2 elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his 2 siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of 3-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And now the news in detail. The Union Cabinet has approved 2 elevated highway projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. The Cabinet Committee on Economic Affairs, CCEA, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved these projects to improve road connectivity and reduce congestion and travel time in Varanasi. The projects include a 6-lane greenfield elevated corridor covering over 46 kilometers between National Highway 19 and Varanasi Ring Road on hybrid annuity model. It will be built at a total capital cost of over 14,400 crore rupees. Briefing media in New Delhi Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the other project is related to the development of around 43-kilometer long, 6-lane and 4-lane elevated corridor along Varuna Riverbank in Varanasi city at a cost of around 11,000.

0: Moving on to the world of sports. In football, defending champions Argentina defeated England 2-1 in the second semi-final at Atalanta Stadium in USA to set up the title clash of the FIFA World Cup against Spain. The first half ended goalless, but Anthony Gordon scored the opening goal for England in the 55th minute. Argentina's Enzo Fernandez equalised in the 85th minute, and Lautaro Martinez struck in the 90th minute to complete a dramatic 2-1 comeback victory for Argentina. And in men's cricket, second one-day international of the three-match series between India and England will be played at Sophia Gardens in Cardiff today. The match will start at 5:30 p.m. Indian time. And now for a look at today's newspapers, it's over to Shagun Chopra.
1: Thank you, Anuja. All the dailies have noticed the India-UK historic FTA coming into effect, setting a new path, and also the cabinet clearing major projects pushing for semiconductor chips and mobile phone production. Iran threatens regional oil blockade over US sanctions is a headline in the Hindu. Well, the paper quotes Iran saying oil and gas will either be for everyone or no one as US claims waves of strikes. As the world famous Rath Yatra in Puri begins today, President Draupadi Murmu in an op-ed in Hindustan Times has written about her childhood memory of prayers and hymns to Sri Jagannath. She has expressed her feelings, saying 13 festivals are also said to be celebrated during the 12 months of the year in Kshi Kshetra. But the splendor of Rath Yatra is unique and incomparable. And finally, under the headline, Power of Second Life, the Times of India writes about discarded X-ray sheets transformed into stylish dresses, orange peels creating fabric, and for use for shoes refurbished for school children in Ladakh, showing India's journey towards sustainability. And with that, it's back to you, Anuja.
0: Thank you, Shagun. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Union Cabinet clears two elevated road projects worth over 25,000 crore rupees for Varanasi in Uttar Pradesh. Railway Ministry launches new beta version of IRCTC website to make train ticket booking simpler and more user-friendly. World-famous Rath Yatra of Lord Jagannath and his two siblings begins today at Puri in Odisha. US says it launched new wave of strikes on Iran aimed at protecting vessels in Strait of Hormuz. In football, defending champions Argentina beat England 2-1 in second semi-final of FIFA World Cup to set up title clash with Spain. And in men's cricket, second ODI of three-match series between India and England to be played in Cardiff this evening. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं कलीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खबरें। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों के आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को एक के मुकाबले दो गोल से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 रोजा मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो शाहराह प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की सदारत में इक्तसादी उमूर की काबीना कमेटी ने वाराणसी में सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने और सफर में लगने वाला वक्त कम से कम करने की खातिर इन प्रोजेक्टों को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में नामानिकारों को जानकारी देते हुए इत्तलात नशरियात के वजीर अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 6 लेन वाले ग्रीन फील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर के अलावा दूसरा प्रोजेक्ट वाराणसी शहर में तकरीबन 43 किलोमीटर तवील एलिवेटेड कॉरिडोर से मुतालिक है, जिसमें 6 और 4 लेन होंगी। इस पर तकरीबन 11,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी।
3: पहला है वरुणा नदी के किनारे किनारे कंप्लीट सिक्स लेन

0: के पहले मरहले की रफ्तार को आगे बढ़ाते हुए मस्कूरा स्कीम का मकसद आलमी सतह पर सेमीकंडक्टर मंजरनामे पर भारत को आगे रखने के सरकार के अहद के सिलसिले में कदम बढ़ाना है। वजीर मौसूफ ने बताया कि सेमीकॉन के दूसरे मरहले के तहत 4 लाख करोड़ रुपए की मालियत की सरमायाकारी होने की उम्मीद है।
1: सेमीकॉन 2.0 1,27,500 करोड़ रुपए का सेमीकॉन 2.0 आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने अप्रूव किया। सेमीकॉन 2.0 में 6 पिलर्स है। पिलर 1 है डिजाइन ऑफ चिप्स, सेकंड बड़ा फोकस रहेगा मशीन्स एंड मटेरियल्स, तीसरा बहुत सारी नई फैब्स बनेंगी, सिलिकॉन फैब्स, डिस्प्ले, कंपाउंड और ATMP ओसेट इंडस्ट्री जो भारत में डेवलप हो गई है, अभी 10 यूनिट लग चुके हैं, उस इंडस्ट्री को और आगे बढ़ाने के लिए भी इसमें प्रावधान है।
0: जनाब वैष्णो ने कहा कि मरकजी काबीना ने 62,500 करोड़ रुपए के अखराजात के साथ मोबाइल फोन तैयार करने की स्कीम को भी मंजूरी दी है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। वजीर आजम हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के दरमियान भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। जनाब मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और उन्हें मुल्क के नाम वक्फ करेंगे। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर इंडियन रेलवे कैटरिंग और टूरिज्म कारपोरेशन IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। IRCTC ने इस नई बीटा वेबसाइट को बेहतर बनाते हुए 4 अहम इकदाम किए हैं। मुसाफिर अब सभी जुमरों में सीटों की दस्तियाबी को देख सकेंगे। इसके अलावा टिकट बुक करने का अमल अब और ज्यादा सहल हो जाएगा। इसके साथ साथ वेबसाइट में अब मुसाफिरों की तफसीलात महफूज रहेंगे, जिससे उन्हें दोबारा बुकिंग करने में आसानी होगी। इसके लिए वेबसाइट का पता है irctc.co.in/e-ticket/। दिल्ली के तारीखी लाल किले कॉम्प्लेक्स को 15 अगस्त को होने वाली 80वीं योम आज़ादी की तकरीबात तक आवाम के लिए बंद कर दिया गया है। योम आज़ादी के जश्न के लिए जारी तैयारियों के मद्देनज़र महकमे आसार कदीमा ने इस सिलसिले में एक हुक्मनामा जारी किया है। महकमे के एक अहलकार ने कहा है कि योम आज़ादी से कबल हर साल इस तरह के अहकाम जारी किए जाते हैं। मध्य प्रदेश से पहली बैन अलाक्वामी फ्लाइट सर्विस का आगाज किया गया है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर से मुत्तहिद अरब अमारात की राजधानी अबू धाबी के लिए पहली बराह रास्त प्रवास को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम मोदी का हमेशा से ये मानना है कि एक आम आदमी को भी हवाई जहाज में सफर करने का मौका मिलना चाहिए। रियासत की एविएशन पॉलिसी इसी नजरिए के तहत तैयार की गई है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। उड़ीसा के शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ, बड़े भाई भगवान बलभद्र और छोटी बहन देवी सुभद्रा की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज शुरू हो रही है। रथ यात्रा के सालाना फेस्टिवल के दौरान भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहन मखसूस रथों में गुंडीचा मंदिर जाते हुए लोगों को दर्शन का मौका फराहम करते हैं। रथ यात्रा को देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से लाखों अकीदतमंद वहां जमा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान सुदर्शन श्री गुंडीचा मंदिर के अपने सालाना सफर पर रवाना हो रहे हैं और पुरी के पवित्र शहर की फजा जय जगन्नाथ की अकीदतमंदों के नारों से गूंज रही है। पुरी में आज सुबह सवेरे से तेज बारिश होने के बावजूद लाखों अकीदतमंद बारिश की परवाह न करते हुए पवित्र रथों का इंतजार कर रहे हैं। इसके लिए सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए गए हैं। खराब मौसम के तनाजुर में हुक्काम चौकसी बरत रहे हैं। मौसमियात महकमे ने खलीज बंगाल के ऊपर हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर पुरी में बारिश के इम्कान के मद्देनजर रेड अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
0: उधर झारखंड में सालाना रथ यात्रा पूरी रियासत में रिवायती जोशोखरोश और अकीदत के साथ हो रही है। पेश है एक रिपोर्ट।
3: जगन्नाथ चक्का नैन लीला चलवारे।
4: रांची के धुरवा में तारीखी जगन्नाथपुर के मंदिर में आज सुबह मजहबी रसूमात का आगाज हो गया है। दोपहर बाद देवी देवताओं को रथ पर विराजमान कराए जाने के बाद शाम 5

0: बजे रथ यात्रा मासीबारी के लिए रवाना होगी। जिला इंतजामिया ने सीसीटीवी निगरानी और बड़ी तादाद में सिक्योरिटी अहलकारों की तैनाती समेत वसी हिफाजती इंतजाम किए हैं। खुंटी में मकामी इंतजामिया ने कल तारीखी रथ मेले के लिए किए गए हिफाजती इंतजाम का जायजा लिया। रांची से महवेश रहमान की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस अली।
1: गुजरात में अहमदाबाद के जमालपुर इलाके में भी 400 साल कदीम जगन्नाथ मंदिर से भगवान जगन्नाथ की 149वीं रथ यात्रा शुरू हो गई है। इसके लिए सख्त सिक्योरिटी बंदोबस्त किया गया है। बड़ी तादाद में अकीदतमंद दर्शन के लिए मंदिर के अहाते में इकट्ठा हुए हैं। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: अहमदाबाद में आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीय के शुभ मौके पर भगवान जगन्नाथ की सालाना रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत और धूमधाम के साथ मनाई जा रही है। आज सुबह मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जमालपुर में तारीखी जगन्नाथ मंदिर में मंगला आरती में शिरकत की और भगवान का आशीर्वाद लिया। उसके बाद रियासत के वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने सुनहरी झाड़ू से रथों के रास्तों को साफ करने की अलामती पाहिंद विधि की रस्म अंजाम दी और बाजाब्ता तौर पर रथ यात्रा का आगाज किया। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के अजीम शान रथ दर्जनों अखाड़ों, भजन मंडलियों और लोक रक्स करते हुए ग्रुपों के हमरा 16 किलोमीटर के रिवायती रास्ते से गुजर रहे हैं। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं शोएबा।
1: मरकजी वजीर दाखला अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा के मौके पर लोगों को मुबारकबाद दी है। जनाब अमित शाह ने कहा कि आलमी शोहरत याफ्ता जगन्नाथ रथ यात्रा पुख्ता अकीदे, एतमाद और भक्ति की अलामत है। उन्होंने कहा कि इस पवित्र रथ यात्रा से भारत के शानदार सकाफती विरसे और भगवान के तई गैर मुतजलजल अकीदत की अक्कासी होती है। केरलम में सबरीमाला मंदिर के कपाट महाना पूजा अर्चना के लिए आज खोले जा रहे हैं। ये मंदिर इस महीने की 21 तारीख तक दर्शन के लिए खुला रहेगा। अकीदतमंदों को कतार के वर्चुअल निजाम के जरिए ही वहां दाखिल होने की इजाजत होगी ताकि लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ न हो सके। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ़ के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। अमरीकी फौज ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों को निशाना बनाने की ईरान की सलाहियत को कमजोर करने के लिए कल भी ईरान पर हमले किए। उधर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अहमियत के हामिल आबी गुजरगाह पर ईरान की गिरफ्त को कमजोर करने की खातिर फौजी कार्रवाई का दायरा बढ़ाने के मुख्तलिफ मुतबादिल रास्तों का जायजा ले रहे हैं। ईरान ने दावा किया है कि उसने बहरीन और कुवैत समेत खित्ते में अमरीकी फौज के ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीका के साथ बातचीत करने का ईरान का कोई मंसूबा नहीं है। अब कुछ खबरें फीफा वर्ल्ड कप की। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। अमेरिका के एटलांटा स्टेडियम में खेले गए दूसरे सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 1-2 से हरा दिया। वक्फे से पहले कोई भी टीम गोल नहीं कर सकी थी, लेकिन खेल के 55वें मिनट में एंथनी गोर्डोन ने इंग्लैंड की तरफ से पहला गोल किया। अर्जेंटीना के एंजो फर्नांडीज ने 85वें मिनट में गोल करके स्कोर बराबर कर दिया, जबकि लुटारो मार्टिनेज ने 90वें मिनट में गोल करके 2-1 से अर्जेंटीना की जीत में अहम रोल अदा किया। अब इतवार की रात को फाइनल में अर्जेंटीना और स्पेन की टीमें आमने सामने होंगी। मर्दों की क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में शोपिया गार्डन्स में खेला जाएगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 5:30 शुरू होगा। भारत को इस सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। भारत ने मंगल को बर्मिंघम में पहले 1-1 मैच में इंग्लैंड को 6 से हराया था। सीरीज का तीसरा और आखिरी 1-1 मैच इतवार को लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर खेला जाएगा। भारतीय मौसमियात महकमे ने आज अरुणाचल प्रदेश, मगरबी बंगाल में गंगा की तराई वाले इलाके और उड़ीसा में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने के इम्कान के मद्देनजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसमियात महकमे ने अगले 2-3 दिन के दौरान पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, मशरकी राजस्थान, मगरबी राजस्थान और मगरबी उत्तर प्रदेश में कहीं

0: कहीं कहीं बारिश होने की पेशगोई की है, जबकि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के बाज़ हिस्सों में आज शदीद गर्मी का इम्कान जाहिर किया है। दिल्ली में जुज़वी तौर पर बादल छाए रहने और हवा में नमी के साथ मौसम गर्म रहने की पेशगोई की गई है। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं कौनैन हैदर।
1: शुक्रिया कलीम। कौमी राजधानी से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारात की शेयर सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। रोजनामा प्रताप ने भारत और बरतानिया के दरमियान हुए जामे इक्तिसादी और तिजारती मुआहदे के नाफिजुलअमल होने की खबर को अपने पहले सफ़े की बड़ी खबर के तौर पर शाये किया है और वजीर अजम नरेंद्र मोदी के इस बयान को नुमाया किया है कि यह भारत बरतानिया शराकतदारी में एक अहम लम्हा है। राज्यसभा के चेयरमैन सीपी राधाकृष्णन ने पार्लियामेंट हाउस में दो नौ मुंतखब अरकान मंसूर अली खां और रजनीश कुमार अग्रवाल को राज्यसभा की रुकनियत का हलफ दिलाया। इस खबर को प्रताप ने पहले सफे पर पेश किया है। सरकार ने 62,000 करोड़ रुपए की लागत वाली मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग स्कीम को मंजूरी दी है। इस खबर को कई अखबारात ने अहमियत के साथ शाये किया है।
0: खास खास खबरें एक बार फिर। मरकजी काबीना ने उत्तर प्रदेश में वाराणसी के लिए 25,000 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के सतह जमीन से ऊपर दो सड़क प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। रेलवे की वजारत ने ट्रेन के टिकट बुक करने के अमल को और ज्यादा सहल और साजगार बनाने की खातिर IRCTC वेबसाइट के नए बीटा सिलसिले का आगाज किया है। भगवान जगन्नाथ और उनके दो भाई बहनों की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा आज उड़ीसा के शहर पुरी में शुरू हो रही है। अमरीका ने कहा है कि उसने आबनाए हुरमुज में बहरी जहाजों के तहफ्फुज के मकसद से ईरान पर फिर हमले किए हैं। फुटबॉल में मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना इंग्लैंड को 1-0 से हराकर फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया है, जहां उसका मुकाबला स्पेन से होगा। और मर्दों के क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के दरमियान 3-1 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स पर यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। DRM 810 किलो हर्ट्स पर 8:45 हुए हैं। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वरगंगा में पंडित शिव कुमार शर्मा का संतूर वादन। राग है भोपाल तोड़ी।

0: अभी आप सुन रहे थे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज आपने सुना पंडित शिव कुमार शर्मा से संतूर वादन, राग था भोपाल तोड़ी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब वक्त हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। यह हमारा अगला कार्यक्रम है उद्योग पत्रिका। आइए सुनते हैं ये कार्यक्रम।
1: उद्योग पत्रिका।
2: नमस्कार, उद्योग पत्रिका में आप सबका स्वागत है।
3: श्रोता मित्र नमस्कार। आज का व्यावसायिक परिवेश पहले की तुलना में कहीं अधिक कॉम्पिटिटिव यानी प्रतिस्पर्धी हो गया है। तकनीकी आधारित तेजी से बदला है और ऐसे समय में किसी भी संस्था की सफलता केवल अच्छे उत्पाद या सेवाओं पर निर्भर नहीं करती बल्कि प्रभावी प्रबंधन यानी कि इफेक्टिव मैनेजमेंट, प्रशिक्षित मानव संसाधन, प्रेरणादायी नेतृत्व और मजबूत साइबर सुरक्षा व्यवस्था पर भी समान रूप से आधारित होती है। आज हम इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है सुशांत दीक्षित को। सुशांत जी, आप एक मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आपको 2 दशकों का एक लंबा नेतृत्व का अनुभव है और आप व्यवसाय के मामले में, बिजनेस के मामले में साइबर सिक्योरिटी के एक्सपर्ट भी हैं। हम आपका स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार।
4: धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए यहाँ पे।
3: सुशांत जी, आपने इसकी शुरुआत कहाँ से की?
4: 20 साल पहले जब कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स नए नए आए थे पूरे दुनिया में, तभी साइबर सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दिया मुझे। और तभी स्लोनेस लाने के लिए सिस्टम में और ऑपरेशन रोकने के लिए साइबर अटैकर्स करते थे
3: जी।
4: तो वो टाइम पे स्किल गैप मुझे बहुत दिखा, तो मैंने मेरा स्किल्स उस पे बढ़ाने का कोशिश किया, अलग अलग तकनीकें यूज की, डेवलपमेंट से लेके एप्लीकेशन डेवलपमेंट से लेके इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, फिर साइबर सिक्योरिटी में आया। और उसके बाद मुझे मौका मिला एक टीम लीड करने का, तभी मैंने सोचा कि मुझे मैनेजमेंट तकनीक की आवश्यकता है, उसके बिना मैं आगे नहीं बढ़ सकता हूँ। और स्किल धारण कर लिया है मैंने, अभी मुझे मैनेजमेंट का स्किल धारण करना है। तो मैंने 2 साल का फुल टाइम MBA किया, बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट से किया। उसमें मुझे एक डायरेक्शन मिला कि मैनेजमेंट एक्चुअली क्या होता है और करना क्या चाहिए मैनेजमेंट के साथ और उसका महत्व क्या है, वो पूरा मैंने समझा।
3: सुशांत जी, तो आज के दौर में व्यवसाय में एक इफेक्टिव मैनेजमेंट ये कितना इम्पोर्टेंट है?
4: ये बहुत ही आवश्यक चीजें है, सिर्फ इंडियन कंपनीज के लिए नहीं बट पूरे इंटरनेशनल कंपनीज के लिए। आपने देखा रहेगा बहुत सारे ग्लोबल कंपनीज में इंडियन CEOs की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि स्किल डेवलपमेंट से लेके मैनेजमेंट सीखा है और अभी वो लीडरशिप में एक अव्वल स्थान पे है। तो मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंस बहुत है, जो उत्पादन है
3: जी
4: उसको गुड क्वालिटी बनाने के लिए, उसको तकनीकी दौर से अच्छा बनाने के लिए और जल्दी से जल्दी मार्केट तक पहुंचाने के लिए, वो करते हुए अपने लोगों को ऊपर लेके जाने के लिए मैनेजमेंट एक बहुत ही अच्छा टूल है। मेरे ख्याल से सब लोग ने जिंदगी में सीखना चाहिए
3: जी। सुशांत जी, तो जैसे अभी आपने कहा कि ग्लोबल लेवल पे इंडियंस जो है वो लीडरशिप दे रहे हैं, और तो क्या आपको लगता है कि हमारे देश में जो स्किल्ड या फिर स्किल डेवलप्ड है या फिर मैनेजमेंट जो क्वालिटी है वो कहीं और जगह से बेहतर है?
4: मैनेजमेंट की एक खूबी है जो इंडिया में है और इंडिया में बहुत अच्छे क्वांटिटी में है, जो कि स्कार्सिटी हम लोग के कल्चरल वैल्यूज है और जो हम लोग अपने परिस्थितियों से हम लोग जूझते हुए आए हैं 20 इयर्स 30 इयर्स, वो हमें कहीं ना कहीं रेजिलिएंट बनाता है
3: जी।
4: और लीडरशिप में रेजिलिएंट रहना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनी कभी आगे होती है, कभी पीछे होती है, कभी उनका शेयर ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है, बट रेजिलिएंट होना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है।

0: जो इंडियन लीडरशिप प्रोवाइड कर सकती है दुनिया में कोई भी कंपनी को।
1: तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि आज का दौर जो है वो चैलेंजिंग का दौर है, चुनौतियों का दौर है। चुनौतियों के साथ में जो आज जो परिवर्तन हो रहा है, और वो भी डिजिटल परिवर्तन हो रहा है, और इसमें डिजिटल परिवर्तन में ये देखा जा रहा है कि जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा यानी कि जो बिजनेस कॉम्पिटेटिवनेस है वो कुछ ज्यादा बढ़ गया है। तो आज की चुनौतियां क्या क्या है, क्या हो सकती है?
0: सबसे बड़ी चुनौती और अपॉर्चुनिटी दोनों एक साथ है, जो है कि कस्टमर के पास जल्दी से जल्दी पहुंचना और उनको अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करना, इस्तेमाल करने के लिए जल्दी से जल्दी वो समय कम लगना चाहिए, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज हो चुकी है।
1: जी
0: तो जैसे बिजनेसेस के लिए कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन जो होता है वो डिजिटल माध्यमों के वजह से कम हो गया है।
1: जी
0: और जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूंगा बैंकिंग में जो अकाउंट ओपन करने के लिए टाइम लगता था, और अभी अकाउंट ओपन करने के लिए जो टाइम लग रहा है वो बहुत ही कम है। पहले 3-4 दिन लगते थे, अभी वो 1 घंटे में, या फिर ऑनलाइन आप विद इन 5 मिनट्स कर सकते हैं। तो ये जो डिजिटल इकोनॉमी ने हम लोग को दिया है वो बहुत ही ऊपर के दर्जा का है। और जो कंपनियां सेवाएं दे पाती है डिजिटल इकोनॉमी की वजह से, डिजिटल टूल्स की वजह से,
1: जी
0: वो कंपिटेटिव हो गई है। सेवाओं की वजह से उनका एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर बन जाता है जो कंपटीशन में जिताता है।
1: जी सुशांत जी, अभी आपने कहा कि पहले जैसे बैंकिंग के आपने उदाहरण दिया और ये कहा कि पहले 3-4 दिन एक अकाउंट खोलने में लग जाता था, लेकिन अब जो है कुछ ही मिनटों में, कुछ ही घंटों में ये सब सारे काम हो जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से आजकल जो सुविधा हो गई है, जो आसानी हो गई है, उसके बाद कुछ खतरा भी बढ़ गया है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। डिजिटल इकोनॉमी के वजह से साइबर अटैक्स भी बढ़ गए हैं।
1: जी
0: तो जैसे मैंने लीडरशिप के बारे में बोला, वैसे ही मैं डिजिटल इकोनॉमी के बारे में बोलूंगा कि रेजिलियंट रहना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है।
1: जी
0: अटैक होने के बाद भी हम कितने टाइम में उभरते हैं वो अटैक से, वो बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है, और उसमें हमने काम करना चाहिए। मैं बहुत सारे कंपनीज के साथ काम करता हूँ, बहुत सारे गवर्नमेंट के साथ काम करता हूँ अक्रॉस द ग्लोब। उनको रेजिलियंट बनाने के लिए उनके प्रोसेसेस, उनके पॉलिसीज और उनके प्रोडक्ट्स, ये सारे चीजों में हम उनको हेल्प करते हैं ताकि वो रेजिलियंट रहे, रेजिलियंट बने और कोई भी खतरे से बाहर जल्दी से जल्दी आ जाए।
1: रेजिलिएंट बनाने के लिए आप किन किन बातों को ध्यान रखते हैं, किन चीजों पर आपका ज्यादा फोकस होता है?
0: इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप कम्युनिकेशन कैसे करते हैं कोई इंसिडेंट में, पॉलिसीज कैसे लगाते हैं, डिसीजन कितना फास्टर लेते हैं,
1: जी
0: ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है रेजिलिएंट बनने के लिए। अगर आप एट द टाइम ऑफ इंसिडेंस आपने डिसीजन लेने के लिए 4 घंटे लगा दिए, तो तब तक पूरा प्रॉब्लम और बड़ा हो गया रहेगा।
1: जी
0: तो डिसीजन मेकिंग हैज टू बी फास्टर, और प्रोसेसेस जो हम लोग ने कंपनीज में लगा के रखी है, गवर्नमेंट में लगा के रखी है, वो कितनी अजाइल है, ये भी हमको देखना चाहिए।
1: सुशांत जी, तो अभी जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल की भी जरूरत होती है, स्किल डेवलपमेंट में ये कम्युनिकेशन स्किल कितना मायने रखता है, किन किन बातों पर ध्यान रखना पड़ता है जब आप किसी बिजनेस की शुरुआत करते हैं, क्योंकि आपके बिजनेस के बारे में आपको बताना है, प्रचार करना है?
0: ये बहुत गलत फहमी है कि कम्युनिकेशन मतलब लैंग्वेज स्किल। कम्युनिकेशन का मतलब आप कितने कम से कम वर्ड्स यूज किए हुए आपका मैसेज सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचा सकते हो। कंपनी के बारे में जो कॉपी राइटिंग होता है वो आप कैसे करते हो, आपका एडवर्टाइजिंग कैसा होता है, क्या आपका सेल्स, प्रोडक्ट और मार्केटिंग सेम लैंग्वेज बात कर रहा है कि नहीं, सेम मैसेज भेज रहा है कि नहीं, ये होता है कंपनी का कम्युनिकेशन। इसमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है।
1: इसमें सिर्फ लैंग्वेज की ही बात नहीं होती, यानी कि हर मुद्दे पर, हर पहलू पर ध्यान देने की बात होती
0: यस, सबसे बड़ा गैप मैं देख रहा हूँ आज की स्टार्टअप्स में, कंपनीज में, या फिर कंपनीज बहुत बड़ी कंपनीज में भी, उनका सेल्स,
1: है।
0: मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट और प्रोडक्ट तीनों अलग अलग चीजें बात करते हैं,
1: जी
0: तो एक सिंगल मैसेज कस्टमर तक पहुंच नहीं पाता है।
1: देखिए सुशांत जी, मेरे ख्याल से जहां तक लगता है कि स्टार्टअप तो शुरू कर लेता है, उस स्टार्टअप के शुरुआत करने के बाद में जो प्रोडक्ट आते हैं उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग के लिए दिक्कत होती है, तो आप इसको किस प्रकार से मैनेज करते हैं? इसमें भी क्या कम्युनिकेशन स्किल चाहिए, स्किल डेवलपमेंट चाहिए, मैनेजमेंट चाहिए?
0: बिल्कुल, ये बहुत अच्छा सवाल है। प्रोडक्ट का मार्केटिंग करने में, सेल्स करने में एक प्रोसेस और एक बहुत ही सीखा और स्किल डेवलप किया हुआ इंसान की आवश्यकता है। पूरे दुनिया में ही सेल्स, या फिर जो बेचने वाला है, उसको इतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता, बट ये सबसे इम्पोर्टेंट इंसान होता है कंपनी में, जो पूरे कंपनी का वजन अपने कंधों पे लेके घूमता है। उसके वजह से ही सैलरी एचआर को मिलती है, मार्केटिंग को मिलती है, सबको,
1: कंपनी भी उसी
0: सेल्स
1: से चलती है।
0: कंपनी भी उसी से चलती है। तो उसके लिए एक स्किल होता है, एक तकनीक होता है, वो सीखने की आवश्यकता है, जो मेरे ख्याल से फाउंडर ने भी सीखने की आवश्यकता है।
1: आज का दौर जो है डिजिटल का दौर है।

0: डिजिटल में भी अब एआई की तकनीक आ गई है,
1: बिल्कुल
0: और एआई तकनीक आने के बाद ये कितना सुरक्षित है और क्या इसमें लीडरशिप की भी कितनी आवश्यकता होती है?
1: मैं दो चीजें कहना चाहूंगा। कभी भी इंसान का जजमेंट जो है वो एआई कभी रिप्लेस नहीं कर पाएगा। हर एक
0: लेकिन इम्पोर्टेंट तो
1: इंसान
0: है किसी बिजनेस के लिए आज के दौर में डिजिटलाइज्ड होना या फिर एआई को अपना लेना, ये भी तो
1: हमारे
0: जरूरी है।
1: पास कोई ऑप्शन नहीं है एआई को अपनाने के अलावा, क्योंकि जो जैसे मैंने बोला कस्टमर एक्विजिशन जो है या फिर कम्पिटेटिवनेस है, उसके लिए एआई का उपयोग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। और एआई कितना भी आगे चले जाए, अगर ये दो चीजें आपके पास है, जजमेंट और रिलेशनशिप, तो आपको एआई से कोई खतरा नहीं है, आप सुरक्षित है, आपका जॉब सुरक्षित है। ये दो स्किल आपने पास रखिएगा, जजमेंट और रिलेशनशिप।
0: जी, आज के दौर में चूंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, जब तक आप उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं करते हैं, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म में आप खुद को शो नहीं करते हैं, तब तक कुछ आगे बढ़ना मुश्किल सा लगता है। निर्भर हो गए हैं सभी को इसमें, तो ऐसे में साइबर सुरक्षा, जिसके कि आप एक्सपर्ट भी हैं, ये कितना जरूरी है और इसमें चैलेंज क्या है?
1: साइबर सुरक्षा इम्पोर्टेंट चीज़ है और ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी है, तो इसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत आवश्यकता है। अगर भारत स्किल्ड रिसोर्सेज साइबर सुरक्षा में दे पाए, कम से कम 5 मिलियन इम्प्लॉयज की जरूरत है और पूरा दुनिया 1 मिलियन ही इम्प्लॉयज प्रोड्यूस कर पा रहा है, स्किल्ड लेबर प्रोड्यूस कर पा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। और ये सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं बट देशों के लिए, राज्यों के लिए भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है।
0: जी
1: और बिकॉज स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स आपने देखे रहेंगे, ये वोलाटाइल सिचुएशन में बहुत सारे स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैक्स भी होते हैं और उसके वजह से ये इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है।
0: जी सुशांत जी, आजकल देखा जा रहा है कि कोई भी अपना बिजनेस शुरू करना चाहता है, स्टार्टअप शुरू करना चाहता है, जिसमें कि जो होते हैं एमएसएमई, और उनके पास में सीमित संसाधन होते हैं, रिसोर्सेस थोड़े कम होते हैं, और उसे आगे ले जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में साइबर सुरक्षा के जरिए उसको कैसे मजबूत किया जा सकता है?
1: एमएसएमई में मैनेजमेंट स्किल्स ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैनेजमेंट स्किल्स एमएसएमई में आप उभारे, अच्छे मैनेजर को अच्छा अपॉर्चुनिटी दे, तो साइबर सुरक्षा के जरिए वो आरओआई आपको दे पाएगा, आपके उत्पादन मार्केट में जल्दी पहुंचा पाएगा, एक कैटेगरी क्रिएट कर पाएगा आपका खुद का, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो साइबर सुरक्षा के जरिए किया जा सकता है।
0: जी, एक लीडर के लिए और लीडरशिप के लिए कौन सी क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि एक अपने स्टार्टअप को, अपने बिजनेस को आगे लेकर जा सकता है?
1: विजन एंड कॉन्फिडेंस,
0: जी
1: हर एक लीडर के पास एक विजन होना चाहिए जो इररिप्लेसेबल है और कोई कॉपी नहीं कर सकता उसको। जितना आगे का देख सकते हो और क्लियरली देख सकते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है, और क्लैरिटी बहुत ही जरूरी है विजन के साथ साथ।
0: इतने सारी क्वालिटीज होने के बाद में भी कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि कहीं पर कुछ कमजोर हो रहे हैं, बिजनेस में थोड़ा सा स्लो हो रहा है, मूवमेंट थोड़ा स्लो हो रहा है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? फाइनेंशियल या मैनेजमेंट या स्किल डेवलपमेंट, तीनों को मिलाकर के किस प्रकार से आगे बढ़ा जा सकता है?
1: मैं आपको एक बहुत अच्छी तकनीक बताता हूँ, जो अच्छी एक तकनीक बहुत ही उम्दा प्लेयर ने बनाई थी, उसका नाम है ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी। रेड ओशन मतलब जिधर 10 प्लेयर ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे सारे लोग फोन बेच रहे हैं और मैंने आईपॉड बना दिया, तो ये ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी मतलब इनोवेशन है, जो आप थोड़ा और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी की आवश्यकता है स्लो मार्केट में, कम्पिटिटिव मार्केट में, और जहाँ पे आपको ग्रो होना है और डिफरेंशिएट करना है, तो मैं ब्लू ओशन स्ट्रेटेजी रिकमेंड करूंगा।
0: सुशांत जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का एक विजन है, पूरे देश का विजन है कि 2047 तक हमें एक विकसित भारत बनाना है, तो इसमें बिजनेस या स्टार्टअप की भूमिका क्या हो सकती है और किस प्रकार से इसे आगे लेकर जा सकते हैं?
1: हमें अवश्य अलग अलग जगह पे बिजनेस की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी, जैसे सेमीकंडक्टर हुआ, एम्बेडेड टेक्नोलॉजीज हुई। सिर्फ आईटी सर्विसेज से जीडीपी ग्रो नहीं होगा, हमको हर एक अलग अलग माध्यम से अपना जीडीपी बढ़ाने के लिए कोशिश करना पड़ेगा और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने के लिए हमको आगे आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि जो लीडरशिप और जो मैनेजरियल स्किल्स और जो स्किल्स भारत में है, मुझे नहीं लगता कि कोई चैलेंज आ सकता है इसमें। हमारे युवा बहुत ही प्रिपेयर्ड है ये सिचुएशन के लिए, और नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है वो बहुत ही उम्दा है, और यही हम एक्सपेक्ट कर रहे थे लीडर से। सो आई थिंक इट इज नॉट इम्पॉसिबल, वी कैन डू इट।
0: जी वैसे अभी अपने युवाओं का जिक्र किया और जो यूथ है हमारे देश में, यूथ की संख्या बहुत है, यानी कि काफी है पूरी दुनिया से, तो युवा उद्यमियों को जो बिजनेस करना चाहते हैं, जो स्टार्टअप्स के लिए, आपका क्या संदेश है ताकि वो प्रबंधन में, नेतृत्व में, कौशल विकास और साइबर सुरक्षा के बीच एक संतुलन स्थापित कर सके, एक बैलेंस बना सके?
1: मैं इतना ही कहना चाहूंगा, ज्यादा विचार विनिमय पे आपका समय

0: मत डाले, जस्ट स्टार्ट।
1: ओके,
0: एंड वो एक प्रोसेस है, उसमें आप बहुत चीजें सीखेंगे। कोई भी आपको प्रिपेयर करके बिजनेस आप चालू नहीं कर सकते, कुछ ना कुछ तो आप नया सीखेंगे बिजनेस चालू करने के बाद, कुछ ना कुछ तो नई सीख आपको हर एक दिन मिलती रहेगी।
1: यानी कि जो चैलेंजेस आते रहेंगे उससे भी आप सीखते रहेंगे,
0: उससे भी सीखते रहेंगे। तो जस्ट स्टार्ट, चालू करिए और सब चीजें होती रहेंगी।
1: जी सुशांत जी, आपने लीडरशिप के विषय में और मैनेजमेंट के विषय में, स्किल डेवलपमेंट के विषय में बहुत सारी जानकारियां दी। उससे आपसे हम तो चाह रहे थे कि और भी कुछ बातें करें, लेकिन हमारे पास वक्त की बड़ी कमी होती है, इसलिए हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो साथियों, आपने व्यवसाय में प्रभावी प्रबंधन, निरंतर कौशल विकास, सशक्त नेतृत्व और साइबर सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर अत्यंत उपयोगी जानकारी आपने सुशांत जी साझा की। हमें विश्वास है कि आपकी बातें हमारे श्रोताओं और उद्यमों के लिए प्रेरणादायक और एक मार्गदर्शक साबित होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: थैंक यू।
2: इसी के साथ उद्योग पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है। वाचक स्वर शालिनी मित्तल और प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा।
3: उद्योग पत्रिका।
4: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उद्योग पत्रिका, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अब सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम मिट्टी दी महक। तो प्रस्तुत है पंजाबी कार्यक्रम मिट्टी दी महक।

अल्लाहो अकबर से खुदा ने दीन। वो बंदा जिसको

से फलक पर चार सू जिक्र रसूलुल्लाह से पहले फलक पर चार सू जिक्र रसूलुल्लाह से पहले फरिश्ते

Germany. لتؤمنوا بالله ورسوله وتعلموا

فمن نكث فإنما ينكث على نفسه.

सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनकी संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने विश्वास व्यक्त किया है कि भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता, सुरक्षा और रक्षा साझेदारी को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। उन्होंने ब्रसल्स में तीसरी भारत यूरोपीय संघ व्यापार तथा प्रौद्योगिकी परिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से ये बात कही। डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ ने एक दूसरे के साथ इस विश्वास को विकसित किया है और अब इसे व्यापार तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ एसोचैम और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। इस समझौते से भारतीय व्यवसायों, लघु और मध्यम उद्यम तथा आम जनता को होने वाले फायदों पर भी विचार विमर्श किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच देश की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज सुबह के सत्र में 0.4% की बढ़त आई। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 286 अंक बढ़कर 77,471 पर

0: आमदन।
1: लेकर ढेर सारी जानकारियां और मनोरंजन प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम घर आंगन। तो स्वीकार कीजिए अपनी रेडियो सखी कल्पना का प्यार भरा नमस्कार और जुड़े रहिए हमारे साथ एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर, साथ ही इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी कि 819 किलो हर्ट्ज पर भी। और दोस्तों, हर बार की तरह आज भी हम पूछने वाले हैं आपसे एक प्रश्न। तो आज का प्रश्न आपके लिए ये है कि आपने अपने हाथों से कोई पौधा कब लगाया था और वो पौधा कौन सा था। तो आपके जो जवाब है उनकी हमें प्रतीक्षा है। आप हमें भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पर अपने उत्तर, और हमारी ईमेल आईडी आप नोट कर लीजिए, वो है fmgoldga@gmail.com। तो यहाँ पर आप अपने उत्तर भेज दीजिए और तब तक सुनिए आप ये मीठा मीठा सा गीत प्यार किए जा फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और मन्ना डे ने।

दोस्तों, आप पुकारते हो और हम घरांगन कार्यक्रम लेकर उपस्थित हो जाते हैं। और आज मैंने जो प्रश्न पूछा है उसका उत्तर आपको देना है। आज का प्रश्न मैं दोबारा से बता देती हूँ कि कौन सा पौधा आपने अपने हाथों से लगाया था और वो किस चीज़ का पौधा था। तो ये आपको लिख भेजना है। हमारी ईमेल आईडी है fmgoldga@gmail.com। तो जल्दी से लिख भेजिए। और आज का दिन बहुत विशेष है क्योंकि भगवान श्री जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज निकाली जा रही है। इस पावन अवसर पर भगवान जगन्नाथ उनके बड़े भाई बलभद्र तथा बहन सुभद्रा भव्य रथों में विराजमान होकर श्री मंदिर यानी जगन्नाथपुरी के श्री मंदिर से गुंडिचा मंदिर तक नगर भ्रमण करते हैं। ये रथ यात्रा भगवान के भक्तों के बीच स्वयं आने का प्रतीक है। साथ ही यह उत्सव प्रेम, समानता, सेवा और लोक कल्याण का संदेश देती है। और कहते हैं कि जन सेवा में भी ईश्वर की सेवा होती है। तो आइए हम भी दूसरों की मदद करने का संकल्प लें, यही इस पर्व की सार्थकता होगी। और यदि आप दिल्ली में हैं तो आपके लिए ये जानकारी बहुत उपयोगी है क्योंकि श्री जगन्नाथ मंदिर त्यागराज नगर नई दिल्ली में 16 जुलाई से 27 जुलाई तक भगवान श्री जगन्नाथ, भगवान बलभद्र एवं देवी सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा का उत्सव मनाया जा रहा है। रथ यात्रा दोपहर 2 बजे से प्रारंभ होगी और 12 दिवसीय रथ यात्रा महोत्सव यहाँ पर मनाया जाएगा। तो अगर आप जाने की सोच रहे हैं तो आप ज़रूर जाइए। और भगवान जगन्नाथ के बहुत सारे स्वरूप हैं और उनका एक स्वरूप है श्याम का। तो आइए हम भी श्याम रंग में रंग जाते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा गीत येसुदास की आवाज़ में अपने पराये फिल्म से।

दोस्तों, और देख रही हूँ कि हमारे बहुत से श्रोता जुड़े हैं और हमें ईमेल भी भेज रहे हैं। उनके ईमेल भी हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक ज़रूरी जानकारी आपको देनी है कि भाई देखो, एक बात है कि हर दिन है खूबसूरत, हर दिन नया फसाना, वाकिफ रहे ज़माना, ये हमने मन में ठाना। इसलिए सबसे पहले अपने दोस्तों को बताएंगे कि भाई आज क्या खास है। आज है जयंती भारत की महान स्वतंत्रता सेनानी, समाज सेवी और प्रखर राष्ट्रवादी नेता अरुणा आसफ अली की। उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की नायिका तथा ग्रैंड ओल्ड लेडी ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी कहा जाता है। उनके जनहित संबंधी कार्यों और राष्ट्र सेवा के लिए उन्हें लेनिन शांति पुरस्कार, पद्म विभूषण तथा मरणोपरांत भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया। अरुणा आसफ अली का व्यक्तित्व हमें देशभक्ति, साहस, त्याग और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा देता है। आज उनकी जयंती पर हम उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनके लिए ये शेर कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। और इतना ही नहीं, इसके साथ ही आज है एक और जयंती हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, नाटककार जगदीश चंद्र माथुर की। ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक के रूप में आकाशवाणी नाम का आधिकारिक नामकरण इनके द्वारा ही किया गया था। महानिदेशक के पद पर रहते हुए देश की सभी भाषाओं और कला साहित्य की उत्कृष्ट प्रतिभाओं को उन्होंने मंच दिया और हिंदी भाषा के विकास में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी जयंती पर भी हम उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये गीत आप महेंद्र कपूर की आवाज में हमराज फिल्म से सुन रहे हैं।

और दोस्तों देखिए, बहुत सारे हमारे पास ईमेल आ गए हैं। हमने अपने श्रोताओं से आज प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कौन सा पौधा लगाया था और कब लगाया था। तो हमारे बहुत से श्रोता हैं जिन्होंने हमें लिखकर भेजा है ईमेल। तो पहला ईमेल है नवीन भाटिया का। नवीन भाटिया जी हमारे नियमित श्रोता हैं। वो लिखते हैं कि लास्ट 1 मंथ पहले उन्होंने गुलाब का पौधा लगाया था। अरे वाह, आप तो खुशबू बिखेरने का काम कर रहे हैं। और साबिर सिद्दीकी जी लिखते हैं कि मैंने जामुन का पेड़ लगाया था 1993 में और ये बहुत ही लाभदायक होता है। बिल्कुल होता है, लेकिन इतना समय पहले लगाया था, अब और भी लगाइए। इतनी योजनाएं हमारी चल रही हैं, एक पेड़ माँ के नाम, देश के नाम, तो और भी आप पेड़ लगाएं, हमारा तो यही कहना है। और चरणदास जी लिखते हैं कि हम खेती करते हैं, पूरा दिन पौधों का एक काम है। अपने पैसे से 8 साल पहले 700 पौधे लगाकर गांव में बांट दिए तथा घर में खाली डिब्बे में पौधे तैयार करके गांव में दे देते हैं। अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए पेड़ बहुत बड़ी दौलत है। तो हमारा जो FM गोल्ड है वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी दौलत है, और पेड़ तो हमारे लिए दौलत है ही। तो मैं पेड़ लगाता भी हूँ और दूसरे लोगों को भी प्रोत्साहित करता हूँ। बहुत अच्छी बात है चरणदास जी। और राधा शुक्ला का एक ईमेल है, वो कहती हैं कि बचपन में बड़ी सुंदर सी घास थी, उसे लगाया था और हमारे बड़े भैया ने उसे उखाड़ कर फेंक दिया। फिर हम बहुत गुस्सा हुए कि भैया खुद तो पेड़ लगाते हैं और हमारा उखाड़ के फेंक दिया। तो भैया आपने घास का पेड़ लगाया था ना, कुछ ऐसा यूजफुल सा लगाती तो वो शायद नहीं फेंकते उखाड़ के। और बहुत टाइम हो गया बचपन के बाद, अब तो अगर आप बड़ी हो गई हैं तो फिर आप और भी वृक्ष लगाइए। तो ऐसे ही सुदर्शन मुखी जी हमारे साथ जुड़ी हैं, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, ये भी हमारी नियमित श्रोता हैं। और इन्होंने भी कहा है कि भाई उन्हें ये कार्यक्रम अच्छा लग रहा है और वो सुन रही हैं और वो ज़रूर पेड़ लगाएंगी। तो ये तो हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया, लेकिन आगे बढ़ेंगे हम कार्यक्रम में। और अब आपके लिए एक जानकारी, क्योंकि मनोरंजन ही नहीं जानकारियों का खजाना भी है हमारा घर आंगन कार्यक्रम। तो अब हम समय समय पर अपने श्रोताओं को अनेक उपयोगी योजनाओं की जानकारी देते हैं। इसी क्रम में आज जानकारी लेकर आई हूँ दिल्ली लक्ष्मी योजना की। ये योजना दिल्ली सरकार की एक महिला कल्याण योजना है। इसका उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की जो महिलाएं हैं उन्हें हर महीने 2,500 की वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। ये योजना पहले महिला समृद्धि योजना के नाम से प्रस्तावित थी, जिसे बाद में दिल्ली लक्ष्मी योजना का नाम दिया गया। योजना के लिए पात्रता मानदंड तय हो चुके हैं, जिनके अनुसार महिला की आयु 21 से 60 वर्ष के बीच हो और कम से कम 10 वर्ष से दिल्ली की वो निवासी हो। परिवार की जो वार्षिक आय है वो 2.5 लाख से अधिक ना हो। एक परिवार से केवल एक महिला को लाभ मिलेगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया संबंधी जानकारी आपको इन सरकारी वेबसाइट पर मिलेगी, दिल्ली सरकार के ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और दिल्ली महिला एवं बाल विकास विभाग की जो वेबसाइट है वहां से आप जानकारी ले सकते हैं। और इतनी अच्छी जानकारी के बाद आपको सुनवाती हूँ ये प्यारा प्यारा

शहर का तब्दील होना, शाद रहना या उदास, रौनकें जितनी यहाँ हैं औरतों के दम से हैं। आज हर क्षेत्र में खुद को साबित कर चुकी भारतीय महिलाएं वैसे तो स्वयं में संतुष्ट रहती हैं दोस्तों, लेकिन उन्हें सबको साथ लेकर चलने की आदत होती है और कुछ उम्मीदें भी होती हैं इस समाज से, जिन पर आज हम बात करने वाले हैं। महिलाएं समाज से किसी विशेष सुविधा की नहीं, बल्कि समान सुरक्षा और समान अवसर की अपेक्षा रखती हैं। वे चाहती हैं कि उन्हें शिक्षा, रोजगार, निर्णय लेने और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का बराबर अवसर मिले, उनके विचारों को सुना जाए, उनकी मेहनत की सराहना हो और उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न किया जाए। क्योंकि मैं भी एक महिला हूँ तो मैं समझती हूँ कि महिलाएं क्या चाहती है। हर महिला का सपना होता है कि वो बिना भय के अपने जीवन के निर्णय ले सके, अपने परिवार और समाज के विकास में बराबरी से योगदान दे सके और उसकी पहचान केवल रिश्ते

दोस्तों, ये खूबसूरत सा गीत अभी आप जो सुन रहे थे अभिमान फिल्म से, और जिसे गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी साहब ने। और इससे पहले आपको जो गीत सुनाया था मैंने, आँखों में काजल है, ये दूसरा आदमी फिल्म से, इसे भी लता मंगेशकर और किशोर कुमार साहब ने गाया था। तो आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, और अब हम पढ़ते हैं अपने श्रोताओं के ईमेल। हमने श्रोताओं से एक प्रश्न पूछा था कि भाई आपने कौन सा पौधा लगाया था और

कब लगाया था अपने हाथों से, हमें लिखकर भेज दीजिए। तो भास्विता का मैसेज आया है हमारे पास, वो लिखती हैं, ईमेल आया है इनका कि मेरी याद में पहला पेड़ मैंने शादी के बाद नाशपाती का लगाया था, जिसमें अब मीठे फल आते हैं। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को मिठास बांट रही हैं। गौरी शंकर जी लिखते हैं, कल्पना बेटा राम राम, राम राम आपको। पौधों का शौक तो बचपन से ही रहा है, बाहर तो नहीं घर में ज़रूर लगाते हैं, जैसे तुलसी है, ग्वार पाठा है, गुलाब है, गेंदा है, उनका पूरा ध्यान रखते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है कि घर में भी पौधे लगाने चाहिए। बहुत लोग पार्क में लगाते हैं, लेकिन अपने घर में भी इंडोर प्लांट्स भी होते हैं, वो भी आप लगा सकते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। भूमिका लिखती है, मैंने तो अपनी शादी के बाद तुलसी का पौधा लगाया है बस। मेरे पापा को पेड़ लगाने का बहुत शौक है, वो बहुत तरह के पौधे लगाए भी हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, पौधे हम सबको लगाने चाहिए, क्योंकि भाई पौधे हमारा जीवन है, हमारी जो प्राणवायु है हमें वहीं से प्राप्त होती है। तो बहुत अच्छी अच्छी ईमेल्स के लिए आपका धन्यवाद। और आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं महिलाओं की। हम महिलाएं कुछ भी बेकार नहीं जाने देती, कभी चावल बच गए तो फटाफट मौसमी सब्जियां मिलाकर फ्राइड राइस तैयार कर देती हैं, और कभी रोटी बची तो सब्जियां भरकर स्वादिष्ट रोल बना देती हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि बची हुई या पुरानी चूड़ियां मिल जाएं तो महिलाएं क्या करती हैं? मुझे पता है सब श्रोता जानना चाहते हैं, तो चलिए मैं बताती हूँ। पहला उपाय वो है वॉल हैंगिंग। चूड़ियों को रंगीन धागों, मोतियों और घंटियों से सजाकर आकर्षक दीवार सजावट तैयार की जा सकती है, या फिर चूड़ियों पर धागा लपेटकर पंख और मोती लगाकर सुंदर ड्रीम कैचर तैयार करें। इसके अलावा कैंडल होल्डर भी बनता है, और चूड़ियों को एक के ऊपर एक चिपकाकर आकर्षक मोमबत्ती स्टैंड भी बनाया जा सकता है। पुराने फोटो फ्रेम पर चूड़ियाँ और छोटे मोती चिपकाकर नया लुक दे सकती हैं। घर में कोई पूजा या उत्सव हो तो चूड़ियों को रंगीन धागों और फूलों के साथ जोड़कर दरवाजे पर बंधनवार की तरह सजाया जा सकता है। साथ ही जो पौधों के गमले हैं ना घर पे, जैसे हम पौधे लगाते हैं, हम पौधे लगाने की बात कर रहे हैं, तो अगर आपने पौधे लगाए हैं तो उनको इस तरह से आप डेकोरेट कर सकती हैं कि भाई उन पौधों के गमलों पर चूड़ियाँ चिपकाकर उन्हें नया और सुंदर रूप दिया जा सकता है। इसके साथ ही त्योहारों की जो सजावट की बात आती है, तो जैसे दीपावली हो गया, तीज, करवा चौथ या रक्षाबंधन जैसे जो अवसर होते हैं ना, इन पे कुछ नया ट्राई करना चाहती हैं, कुछ अलग तरह की सजावट करना चाहती हैं, तो चूड़ियों से आकर्षक सजावटी वस्तुएं बनाई जा सकती हैं। याद रखिए, पुरानी चीज़ें बिल्कुल बेकार नहीं होती, बस उन्हें नए नज़रिए और थोड़ी सी रचनात्मकता की ज़रूरत होती है। और बात चूड़ियों की हो रही है, तो आपको सुनाती हूँ ये प्यारा सा शेर कि हाथ मलवाती हैं हूरों को तुम्हारी चूड़ियाँ, प्यारी प्यारी है कलाई प्यारी प्यारी चूड़ियाँ। हरे कांच की चूड़िया फिल्म से अब आपको एक मीठा सा गीत भी सुनवा देती हूँ इसी बात पे, जिसे गाया है आशा जी ने, यानी कि आशा भोंसले ने।

लगता है सारी दुनिया बंद है मेरी मुट्ठी में, जिस पल मेरी उंगली थामे मेरा बेटा चलता है। और ये हर माँ का दायित्व भी होता है दोस्तों, जीवन के हर वय में यानी कि हर उम्र में बेटों को सही गलत बताएं। देखिए बेटियों की बात तो बहुत होती रहती है, लेकिन आज बेटों के लिए भी कुछ बेहद ज़रूरी सीखे हैं मेरे पिटारे में, जो उन्हें सिर्फ एक माँ समझा सकती है। पहली बात ये कि हर स्त्री का सम्मान करना, चाहे वो माँ हो, बहन हो, पत्नी, मित्र या कोई अनजान महिला हो, सबसे भला और उचित व्यवहार करना, उनसे बात करते समय अपनी शब्दावली बेहद सोच समझ कर चुनना, गलती अगर हो जाए तो माफ़ी मांग लेना। इसके अलावा बेटों को ये भी बताएं कि कभी भी बिना खटखटाए किसी महिला, भले वो मित्र ही क्यों ना हो, उसके कमरे में नहीं जाना है, उसके पर्स बिना अनुमति नहीं खोलें, अलमारियां और दराजों में भी ना झांके, कुछ ज़रूरत हो तो स्पष्ट बोलकर मांग लें। याद रखें, सही व्यवहार और बातचीत से हर महिला आपके साथ सहज महसूस करती है और आपसे कोई भी बात बताने में नहीं हिचकती। इसके अलावा माएँ अपने बेटों को घर के काम करना भी सिखाएं, खाना बनाना, सफाई करना और अन्य जिम्मेदारियां निभाना। ज़रूरत पड़ने पर अपने घर की या बाहर की महिला की जो है वो हेल्प कर सके उनके कामों में, ताकि आपका जो बेटा है, अगर आप वो घर के काम सिखाएंगे तो वो बड़ा होकर एक अच्छा जीवन साथी बनेगा और अच्छी तरह से साथ दे पाएगा। साथ ही अपने बेटों को अपनी भावनाएँ व्यक्त करना भी सिखाएं। हम कहते हैं ना कि बच्चे रोते नहीं हैं, लड़के रोते नहीं हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्हें सिखाएं कि भाई रोना, दुख या डर बताना कोई कमज़ोरी नहीं है, ये मनुष्य होने के आवश्यक गुण हैं और उन्हें व्यक्त किया जाना चाहिए। उन्हें हर मानवीय भाव के साथ तालमेल बिठाना सिखाएं। इसके साथ ही उन्हें समय की कीमत भी सिखाएं, रुपयों का उचित उपयोग भी सिखाएं, सच्चरित्रता सिखाएं, कृतज्ञता, स्वावलंबन और सहयोगी बने रहना भी सिखाएं। याद रखें कि एक माँ अपने बेटे को केवल चलना नहीं सिखाती, बल्कि ये भी सिखाती है कि जीवन की राह पर सिर ऊंचा रखकर दूसरों का सम्मान करते हुए और अच्छे इंसान बनकर कैसे चलना है, क्योंकि हर बच्चे के व्यवहार में उसकी माँ परोक्ष रूप से शामिल होती है। माँ ही वो कलम होती है जो बच्चे के कोरे कागज जैसे मन पर अच्छी अच्छी बातें लिखती है। और इसी बात पे आपके लिए प्यारा सा गीत आराधना फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में।

और दोस्तों घरांगन कार्यक्रम में हम आपको सैर कराते रहते हैं पूरी दुनिया भर की, लेकिन अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो दिल्ली में भी घूमने का एक बहुत अच्छा अवसर है। आप जा सकते हैं राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय दिल्ली में। यूँ तो हमेशा एक पारंपरिक हस्तशिल्प का बाजार वहाँ पर लगा रहता है, लेकिन 10 जुलाई से 19 जुलाई तक इस बार एक खास बाजार लगा हुआ है जिसका नाम है इंडी हाट। ये ऐसा हस्तशिल्प बाजार है जहाँ देश भर के स्थानीय कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्त निर्मित उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ, टिकाऊ वस्तुएं और अनूठी रचनाएं उपलब्ध होती हैं। ये स्थान भारतीय संस्कृति, रचनात्मकता और शिल्प कला का सुंदर संगम है जहां आगंतुकों को खरीदारी के साथ साथ सांस्कृतिक अनुभव भी प्राप्त होते हैं। तो यदि आप मन बना रहे हैं यहां जाने का तो जानकारी नोट कर लीजिए कि ये बाजार 10 जुलाई से 19 जुलाई 2026 तक लगा रहेगा, सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक। स्थान है राष्ट्रीय शिल्प संग्रहालय एवं हस्तकला अकादमी और भैरव मार्ग प्रगति मैदान नई दिल्ली। प्रवेश जो है वो निःशुल्क है। यहाँ देश भर के कारीगरों द्वारा बनाए गए हस्तशिल्प, हथकरघा उत्पाद, पारंपरिक कलाकृतियाँ, लाइव क्राफ्ट डेमो, सांस्कृतिक गतिविधियों और स्थानीय उत्पादों की प्रदर्शनी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पर आपको लोक नृत्य और लोक धुन पर आधारित गीत भी देखने सुनने को मिल जाएंगे। और आइए फिर जब लोकगीतों की बात हो रही है तो आपको एक लोक धुन वाला प्यारा सा गीत सुना देती हूँ अपना देश फिल्म से, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

बेटा अपने जन्मदिन पर एक पेड़ जरूर लगाना। उसी दिन हमने आम का एक छोटा सा पौधा लगाया, रोज उसे पानी देते, उसकी देखभाल करते और मन ही मन सोचते कि ये कब बड़ा होगा। और सुदर्शन मुखी जी का भी एक ईमेल आया है, उन्होंने लिखा है कि हमने अपने घर में राम और श्याम तुलसी के पौधे लगाए हैं। आपका दिन और जीवन बहुत मंगलमय हो। आपका दिन भी और आपका जीवन भी बहुत मंगलमय हो।

श्रोताओं, ये खूबसूरत सा गीत आप सुन रहे हैं एक फूल दो माली फिल्म से, जिसे रफ़ी साहब और आशा भोसले गा रही हैं। उनकी आवाज़ में आप ये गीत सुन रहे हैं। और आज के घर आंगन कार्यक्रम से मुझे यानी अपनी रेडियो सखी को अनुमति दीजिए, कल्पना का स्वीकार कीजिए। नमस्कार।

0: जहाँ मिले दो जवान नजर होती तकरार वही है दिल पर रखकर हाथ ये
1: आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा आपका घर आंगन आंगन।

0: राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान सहित आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों के बीच घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मुख्य धारा से कटा हुआ महसूस न करे। प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब का दौरा करेंगे। प्रधानमंत्री हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को हरी झंडी दिखाएंगे। श्री मोदी जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रुपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात कर बढ़ाकर 14.50 रुपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रुपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरों मध्य में जहाजों की सुरक्षित आवाजाही के लिए ईरान पर फिर हमले किए हैं। आज सुबह लगातार किए गए जोरदार धमाकों के बाद तेहरान में वायु रक्षा प्रणालियों को नुकसान पहुंचाया गया। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बहरीन और कुवैत समेत इस इलाके में अमरीकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बेल्जियम के ब्रसल्स में भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग महासंघ, भारतीय उद्योग परिसंघ SOCHM और अन्य क्षेत्रीय संघ के सदस्यों वाले भारतीय व्यापार प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि इस दौरान भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते से भारतीय उद्योग के लिए सृजित होने वाले नए अवसरों पर चर्चा की गई। पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का दूसरा मैच आज शाम 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स।

डीआरएम 810 किलो हर्ट्ज पर। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:10 हुए हैं। वक्त है कार्यक्रम एक ही फिल्म से का। कार्यक्रम एक ही फिल्म से लेकर हाजिर हूं मैं आपकी होस्ट रिया। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। श्रोताओं, आज जिस फिल्म के बारे में हम बात करेंगे वो वर्ष 1997 में बनी भारतीय रोमांटिक संगीतमय फिल्म दिल तो पागल है, जिसे यश चोपड़ा ने निर्देशित और निर्मित किया था। पटकथा लेखन यश चोपड़ा, पमिला चोपड़ा और तनुजा चंद्र का है। इस फिल्म की कहानी, नृत्य और इसके सदाबहार संगीत ने इसे भारतीय सिनेमा की एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बना दी। फिल्म में शाहरुख खान यानी राहुल, माधुरी दीक्षित यानी पूजा, करिश्मा कपूर यानी निशा मुख्य भूमिका में हैं। साथ ही अक्षय कुमार यानी अजय कैमियो करते नजर आए हैं। तो चलिए, बातें तो और भी होंगी, फिलहाल सुनते हैं ये गीत।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: श्रोताओं, 1997 में रिलीज हुई फिल्म दिल तो पागल है, इसे राहुल, पूजा और निशा के बीच लव ट्रायंगल को खूबसूरती और शानदार गानों के साथ दिखाया गया है। फिल्म का कुल बजट 9 करोड़ था, जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसने 71.86 करोड़ की कमाई की और उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन गई। फिल्म को व्यापक आलोचनात्मक प्रशंसा मिली, जिसमें निर्देशक, कहानी, पटकथा, संगीत, छायांकन और अभिनय को खूब सराहा गया। इस फिल्म ने कई पुरस्कार जीते। फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेता पुरस्कार शाहरुख खान को मिला, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार यश चोपड़ा को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार माधुरी दीक्षित को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार करिश्मा कपूर को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संगीतकार पुरस्कार उत्तम सिंह को, फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखन पुरस्कार आदित्य चोपड़ा को प्राप्त हुए। साथ ही राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार करिश्मा कपूर को बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए और राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ नृत्य संयोजन श्यामक डावर को प्राप्त हुए।

0: बदलो बदलो आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन

0: से शिकायत करें। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है में कुल 10 गीत हैं। संगीतकार उत्तम सिंह उस वक्त तक कई वर्षों से सक्रिय थे, लेकिन सफलता उन्हें इस फिल्म से मिली। उन्होंने लगभग 100 धुनें तैयार की थीं, जिनमें 9 धुनों को चुना गया। बोल्ड आनंद बख्शी द्वारा लिखे गए थे। जारी होने पर गीत बहुत लोकप्रिय हुए और ये साल 1997 की सर्वाधिक बिकने वाली एल्बम रही। फिल्म की सफलता के लिए इसके संगीत को प्रचुर श्रेय दिया जाता है। उत्तम सिंह की धुन और आनंद बख्शी के साधारण भाषा में रचे गए बोल का युवाओं से जुड़ना इसकी सफलता के मुख्य कारण रहे।

श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है में निशा के किरदार के लिए मेकर्स की पहली पसंद करिश्मा कपूर नहीं थी। जी हाँ, इनसे पहले जूही चावला, मनीषा कोइराला, उर्मिला और काजोल को रोल ऑफर किए गए थे। इन सब ने उस रोल को रिजेक्ट कर दिया क्योंकि इनके ऑपोजिट माधुरी दीक्षित थीं, जो ऑलरेडी एक स्टार थीं, साथ ही बेहतरीन डांसर भी। तब ये रोल करिश्मा कपूर को ऑफर हुआ, जिन्होंने किरदार को बखूबी निभाया। नतीजा ये निकला कि उन्हें फिल्मफेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री पुरस्कार मिला, साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का राष्ट्र पुरस्कार भी प्राप्त हुआ।

श्रोताओं, फिल्म दिल तो पागल है का गीत ले गई में बतौर बैकग्राउंड डांसर शाहिद कपूर नजर आए थे। उस वक्त शाहिद कपूर इंडस्ट्री में बिल्कुल नए थे। करिश्मा कपूर के साथ डांस स्टेप मैच वो नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से करिश्मा कपूर को गाना शूट करने के लिए करीब 15 रीटेक लेने पड़े।

दिल तो पागल है एक ऐसी फिल्म रही जिसने ना केवल हमारे दिलों को छुआ बल्कि बॉलीवुड में रोमांस और डांस की परिभाषा ही बदल दी। श्रोताओं, इसके साथ ही संपन्न होता है कार्यक्रम एक ही फिल्म से। आशा करती हूँ फिल्म से जुड़ी जानकारियाँ आपको पसंद आई होंगी। अब अपनी होस्ट रिया को दीजिए अनुमति।

0: आगाज हो रहा है, जिसका मकसद माहौल के लिए साजगार और पायदार रेल मोबिलिटी को फरोग देना है। भारत की सरकर्दा बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु आलमी नंबर 5 चीन की खिलाड़ी हान युई को सीधे सेटों में हराकर जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। और क्रिकेट में आज शाम कार्डिफ में भारत और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैनुल अक्वामी मैच खेला जाएगा। अब खबरें तफसील से। कौमी सलामती के मुशीर अजीत डोभाल ने आलमी जुग्राफियाई सियासी तनाज़ियात के दरमियान सलामती के उभरते हुए चैलेंजों से निमटने के लिए करीबी इलाकाई इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक मेंबर मुल्कों को अपने मफादात के लिए एक साथ मिलकर काम करने और फैसलाकुन कार्रवाई करने की जरूरत है। वो आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक मुल्कों के कौमी सलामती के सरबराहों की 5वीं मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब डोभाल ने कहा कि दुनिया को तनाज़ियात और जुग्राफियाई सियासी गैर यकीनी सूरत हाल का सामना है और मुल्कों को सलामती के मुख्तलिफ खतरात भी दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक के रुकन मुमालिक ने दहशतगर्दी, सरहद पार से किए जाने वाले मुनज्जम जराइम, साइबर खतरात और बहरी सलामती के चैलेंजों से निमटने में इश्तराक को खातिर ख्वाह मुस्तहकम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि बिम्स्टेक मुमालिक नए और उभरते हुए खतरात से एक साथ मिलकर निमटने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आलमी सप्लाई चेन में रखना समेत इक्तिसादी चैलेंजों से निमटने के लिए बिम्स्टेक रुकन मुमालिक के दरमियान करीबी इश्तराक की जरूरत पर जोर दिया। जनाब डोभाल ने इस बात को भी उजागर किया कि बिम्स्टेक बुहेराए हिंद के इंतहाई अहम और फाल खित्तों को जोड़ती है, जिसकी मजमूई GDP तकरीबन 5 ट्रिलियन अमरीकी डॉलर है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा है कि सरकार की कोशिश एक ऐसे भारत की तामीर की है जहां सरहदें न सिर्फ महफूज हों बल्कि इंतहाई मरबूत भी हों। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि तरक्की और कौमी सलामती एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सरहदी सड़क तंजीम BRO टेक सिंपोजियम से खिताब करते हुए जनाब सिंह ने इस बात को उजागर किया कि जदीद टेक्नोलॉजी और बुनियादी ढांचा किसी भी तरक्की याफ्ता तहजीब की एक अहम पहचान रहा है। उन्होंने कहा कि जो बुनियादी ढांचा आज तामीर किया जा रहा है वो आने वाले बरसों में मुल्क की तहजीब तैयार करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार का मकसद इस बात को यकीनी बनाना है कि दूर दराज के इलाके में रहने वाले किसी भी शहरी को ये महसूस न हो कि वो असल धारे से अलग है। उन्होंने कहा कि रोहतांग में अटल टनल और सेला टनल जैसे अहम प्रोजेक्ट BRO की सलाहियतों का मजहर हैं। उन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी अपनाने के सिलसिले में BRO की सताइश की।
1: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। हमने यह इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। और साथियों, हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: सुप्रीम कोर्ट ने आज CBSE निसाब के तहत नवीं जमात में एक तीसरी जबान को मुतारिफ किए जाने पर तश्वीश का इजहार किया है और कहा कि इससे तलबा पर दबाव में इजाफा होगा। अदालत आलिया ने तजवीज़ किया है कि उसे 5वीं या 6ठी जमात में ही शुरू किया जाना चाहिए ताकि तलबा इससे वाकिफ हो सकें। जस्टिस BV नागरत्ना और R महादेवन पर मुश्तमिल बेंच ने मरकज से जबानी तौर पर कहा है कि वो नवी जमात की सतह पर तीसरी जबान मुतारिफ न कराए। ये रायजनी मद्रास हाईकोर्ट के उस हुक्म के खिलाफ तमिलनाडु सरकार की दरखास्त पर समाअत के दौरान की गई, जिसमें रियासत के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय के कयाम में सहूलत की बात कही गई थी। तमिलनाडु हुकूमत स्कूलों की जानिब से तीसरी जबान से मुतालिक पॉलिसी के निसाब के ताल्लुक से तशवीश के मामले पर मुसलसल जवाहर नवोदय विद्यालयों के कयाम की मुखालिफत करती रही है। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर कल मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के दरमियान चलेगी और ये हाइड्रोजन ईंधन सेल टेक्नोलॉजी पर मबनी है जो रेल को चलाने के लिए हाइड्रोजन को बिजली में तब्दील करती है। इस अमल से सिर्फ भाप निकलती है जिससे कार्बन का बिल्कुल भी इखराज नहीं होता। भारत में ही डिजाइन करता और तैयार की गई इस रेलगाड़ी में मुल्क की ही टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: मुल्क की पहली हाइड्रोजन पर मबनी रेलगाड़ी का आगाज रेलवे के शोबे में माहौल के लिए साजगार और पायदार मोबिलिटी की जानिब

0: पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की पांचवी नंबर की खिलाड़ी चीन की हानियो को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने वैश्विक भू राजनीतिक संघर्षों के बीच उभरती सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया है। आज नई दिल्ली में बिम्स्टेक राष्ट्रीय सुरक्षा प्रमुखों की पांचवी बैठक में श्री डोभाल ने कहा कि वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में व्यवधान के कारण सभी देशों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि बिम्स्टेक सदस्य देशों के लिए सहयोग करना, पारस्परिक लाभ के लिए निर्णायक कदम उठाना और आपसी चर्चाओं के माध्यम से समाधान खोजना अत्यंत आवश्यक है।
1: बिम्स्टेक्स लॉन्ग स्टैंडिंग गोल्स
2: क्षेत्रीय सुरक्षा, संपर्क, निर्माण क्षेत्र और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाने में बिम्स्टेक के सामूहिक प्रयासों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भारत के लिए बिम्स्टेक पड़ोस प्रथम के हमारे दृष्टिकोण और महासागर के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो पूरे क्षेत्र में सुरक्षा और विकास के लिए प्रगति का प्रतीक है।
1: होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन।
0: श्री डोभाल ने कहा कि बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को एक साथ लाता है, जिनके संयुक्त जीडीपी लगभग 50 खरब अमरीकी डॉलर है।
1: There is an urgent need for us.
2: हमारे लिए जरूरी है कि हम मिलकर काम करें, आपसी फायदे के लिए एक ठोस कदम उठाएं और उन बड़ी समस्याओं का समाधान आपसी बातचीत और विचार विमर्श से निकालें जिनका हम सभी सामना कर रहे हैं। बिम्स्टेक हिंद महासागर के सबसे महत्वपूर्ण और जीवंत क्षेत्रों को एक मंच पर लाता है। यहाँ 1,70,00,000,000 लोग रहते हैं, जो दुनिया की आबादी का लगभग 22% है।
0: श्री डोभाल ने कहा कि सदस्य देशों ने आतंकवाद, अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, साइबर खतरों और समुद्री सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में सहयोग को आगे बढ़ाया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक ही दिशा में आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है।
3: हम यह समझते हैं कि जिस देश का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा उसी देश का फ्यूचर भी सबसे अधिक मजबूत होगा। पिछले 10-12 वर्षों में हमने गांव-गांव, शहर-शहर, पहाड़, पर्वत, नदी सबको आपस में जोड़ने का एक मिशन चलाया और यह जुड़ाव केवल रोड ट्रांसपोर्ट तक सीमित नहीं रहा। हमने सड़क से, रेल से, हवाई मार्ग से और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से सबको जोड़ने यानी हर प्रकार की कनेक्टिविटी प्रदान करने पर विशेष बल दिया है। हमने इंश्योर किया दूर दराज के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी नागरिक मेन स्ट्रीम से कटा हुआ महसूस न करे। हमने ऐसा इसलिए किया क्योंकि हमने कनेक्टिविटी को सिविलाइजेशन के डेवलपमेंट का एक अनिवार्य अंग माना।
0: श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि रोहतांग में अटल सुरंग, उमलिंगला में विश्व की सबसे ऊंची वाहनों की सुरक्षित आवाजाही योग्य सड़क और लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर निर्मित सेला सुरंग जैसी ऐतिहासिक परियोजनाएं बीआरओ की क्षमताओं का जीवंत प्रमाण है।
3: शक्ति चाहे कितनी भी हो, चाहे कितनी भी एडवांस क्यों न हो, उसे खड़े होने के लिए एक ठोस जमीन चाहिए ही। और बीआरओ हमारे सीमावर्ती और कठिन क्षेत्रों में एयरफील्ड्स भी बनाता है, यानी टेक्नोलॉजी चाहे कितनी भी बदल जाए, हम चाहे जमीन से आकाश तक और आकाश से समुद्र तक कितनी भी प्रोग्रेस कर लें, पोर्ट्स, एयरफील्ड्स, रोड्स और टनल्स, इनकी भूमिका कतई कम नहीं होने वाली है। वारफेयर का स्वरूप जितना भी बदल जाए, इस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का महत्व यह हमेशा बना ही रहेगा। और इसका सीधा अर्थ यह है कि बीआरओ के कामों का रिलेवेंस भी आने वाले युग में लंबे समय तक बना रहने वाला है।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने आतंकी गतिविधियों के लिए कथित रूप से धन उपलब्ध कराने और अवैध घुसपैठ नेटवर्क के सिलसिले में आज 13 परिसरों पर छापेमारी की। ये मामला उत्तर प्रदेश आतंकरोधी दस्ते द्वारा दर्ज की गई FIR से संबंधित है। इसमें एक संगठित गिरोह पर रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में सहायता करने का आरोप है। जांच में एक व्यापक वित्तीय नेटवर्क का पता चला है जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सर्वोच्च न्यायालय ने

0: सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई और कहा कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवी या छठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे नवीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू न करें। ये टिप्पणी मद्रास उच्च न्यायालय के विरुद्ध दायर तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई। मद्रास उच्च न्यायालय ने राज्य के हर जिले में जवाहर नवोदय विद्यालय खोलने की बात कही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को वृद्ध या असाध्य रोग से ग्रसित कैदियों की शीघ्र या समय से पहले रिहाई के लिए व्यापक नीति बनाने और लागू करने का निर्देश दिया है। न्यायालय ने देश भर में ऐसे मामलों पर विचार के लिए एक समान तंत्र सुनिश्चित करने के संबंध में नीति को 3 महीने के भीतर अधिसूचित करने का आदेश दिया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज अधिकारियों को कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य की दैनिक निगरानी करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जीवन अनमोल है। श्री वांगचुक नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं। केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का जीवन अनमोल है और वांगचुक की नियमित चिकित्सा जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है। भारत में पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन से चलने वाली पहली रेलगाड़ी की शुरुआत कल से होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन पर इसे रवाना करेंगे। ये रेलगाड़ी जींद और सोनीपत के बीच चलेगी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से संचालित है, जो हाइड्रोजन को बिजली में परिवर्तित करती है। एक रिपोर्ट।
1: देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होने से रेलवे अब स्वच्छ और पर्यावरण के अनुकूल सफर की ओर एक नई शुरुआत कर रहा है। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। इस ट्रेन में 10 डिब्बे हैं, जिससे यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। यह ट्रेन जींद सोनीपत रेल खंड पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी। ग्रीन हाइड्रोजन के इस्तेमाल से कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन से बनने वाली बिजली पर निर्भरता कम होगी। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा होगी और देश को स्वच्छ परिवहन की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। इस ट्रेन के शुरू होने के साथ ही भारत उन चुनिंदा देशों जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका की सूची में शामिल हो जाएगा, जो रेलवे में साफ और हरित तकनीक के लिए हाइड्रोजन का उपयोग कर रहा है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री जींद के एकलव्य स्टेडियम में लगभग 14,700 करोड़ रूपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और शुभारम्भ भी करेंगे। प्रधानमंत्री कल हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के दौरे पर रहेंगे। वे चंडीगढ़ में दोपहर में स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा और सड़क के बुनियादी ढांचे से जुड़ी 6,600 करोड़ रुपए से अधिक के विभिन्न विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे और उनका उद्घाटन करेंगे। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मानसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सतत कृषि विकास सुनिश्चित करने के लिए किसानों के बीच एकीकृत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया है। नई दिल्ली में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि किसानों और वैज्ञानिकों के सामूहिक परिश्रम से असाधारण परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि अनुसंधान से किसानों को वास्तविक समय में लाभ मिलना चाहिए। श्री चौहान ने कहा कि देश ने 376 करोड़ टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड बनाया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलेंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICAR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बना

0: ना शीर्षक वाली कार्ययोजना को संबोधित करते हुए डॉक्टर सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा के लिए आज विस्तृत अनुष्ठान और अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सुबह से ही पुरी में हो रही मूसलाधार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डांडा पर पवित्र अनुष्ठानों के साक्षी बन रहे हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मौसी के घर श्री गुंडीचा मंदिर की ओर तीनों रथों को खींचे जाने से पहले गजपति महाराजा दिव्य सिंह देव द्वारा औपचारिक छेरा पहरा रथों की सफाई की रस्म की जाएगी। उत्सव के सुचारू संचालन के लिए व्यापक सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अंग्रेजी दैनिक में लिखे गए लेख को सोशल मीडिया पर साझा किया। एक पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लेख भगवान जगन्नाथ के प्रति राष्ट्रपति की आजीवन भक्ति को दर्शाता है, जिसमें उनके बचपन की प्यारी यादों से लेकर उनके जीवन को आकार देने वाले गहन आध्यात्मिक अनुभवों की यात्रा का वर्णन किया गया है। सरकार ने ईंधन निर्यात की पाक्षिक समीक्षा में पेट्रोल, डीजल और विमानन ईंधन ATF के निर्यात पर लगने वाले विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क में बदलाव किया है। डीजल के निर्यात पर कर बढ़ाकर अब 15.50 रूपए प्रति लीटर और विमानन ईंधन पर निर्यात पर कर बढ़ाकर 14.50 रूपए प्रति लीटर कर दिया गया है। वहीं पेट्रोल के निर्यात पर कर घटाकर 2.50 रूपए प्रति लीटर किया गया है। ये बदलाव आज से लागू हो गए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक आज के सत्र में 0.4% की बढ़त के साथ कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 29 अंक बढ़कर 77,214 पर और निफ्टी 18 अंक बढ़कर 24,060 पर पहुंच गया। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं जागृति शर्मा।
1: पीवी सिंधु जापान ओपन सुपर बैडमिंटन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। उन्होंने विश्व की 5वें नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को मात्र 35 मिनट में लगातार सेटों में हराकर सीजन का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। हालांकि प्री क्वार्टर फाइनल में तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की मिक्स्ड डबल्स जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। क्रिकेट में भारत और इंग्लैंड के बीच 3 एक दिवसीय मैचों की श्रृंखला का दूसरा मुकाबला आज शाम भारतीय समय के अनुसार 5:30 बजे कार्डिफ में खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय मैच में मेजबान इंग्लैंड को 6 विकेट से हराया था। श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मुकाबला रविवार को लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर खेला जाएगा। वहीं फुटबॉल में फीफा विश्व कप में अर्जेंटीना ने फाइनल में जगह बना ली है। सेमीफाइनल में अर्जेंटीना ने रोमांचक मुकाबले में इंग्लैंड को 2-1 से हराया। अब फाइनल मुकाबले में रविवार को अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने भू राजनीतिक संघर्षों के बीच सुरक्षा और आर्थिक चुनौतियों से निपटने के लिए बिम्स्टेक सदस्य देशों में घनिष्ठ सहयोग का आह्वान किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, सरकार ये सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रगति एक दिशा में आगे बढ़े। सर्वोच्च न्यायालय ने CBSE को तीसरी भाषा 5वीं या 6ठी कक्षा से शुरू करने का सुझाव दिया। पर्यावरण अनुकूल और सतत रेल आवाजाही को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोजन संचालित देश की पहली रेलगाड़ी कल से शुरू। बैडमिंटन में पीवी सिंधु ने विश्व की 5वीं नंबर की खिलाड़ी चीन की हान यू को हराकर जापान ओपन टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और क्रिकेट में भारत तथा इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय मैच आज शाम कार्डिफ में खेला जाएगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम उर्दू मजलिस।

0: देखिए, पहले तो हम समझे कि डायबिटीज़ क्या होता है। देखिए, डायबिटीज़ दो किस्म का होता है, एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है और एक टाइप 2 डायबिटीज़ मेलिटस होता है। टाइप 1 डायबिटीज़ है वो बेसिकली यंग लोगों में, बच्चों में देखा जाता है, जिसमें एक सेल्स होते हैं बीटा
1: जी
0: सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं, वो काम करना बंद हो जाते हैं। उनकी वजूहत क्या होती है अलग चीज़ है, बट वो शुरू से ही पेशेंट इंसुलिन पे रहते हैं और उनको हमें इंसुलिन स्टार्टिंग से ही देना पड़ता है। और अक्सर ये यंग पेशेंट्स में, बच्चों में, यंग एडल्ट्स में ये बीमारी देखी जाती है। बट जो कॉमन बीमारी है, जिसको हम टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटिस बोलते हैं, वो कॉमनली हम एडल्ट्स में देखते हैं, वो
1: जी
0: उसका इंसिडेंस एंड प्रिवलेंस ज़्यादा है। बेसिकली ये आपकी बॉडी में क्या होता है कि आपकी बॉडी में इंसुलिन जो पैनक्रियाज रिलीज
1: जी
0: करते हैं वो उसका रेजिस्टेंस हो जाता है। मतलब हमारी बॉडी में इंसुलिन तो होता है लेकिन वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता है। और उसका सबसे कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से डायबिटीज़ होने का रिस्क होता है। ये एक फैक्टर नहीं है कि जो ज़्यादा मीठा खाए उसको डायबिटीज़ होगा,
1: जी
0: सिर्फ एक रिस्क फैक्टर नहीं है, ये पॉलीजेनिक जेनेटिक डिसऑर्डर है। पॉलीजेनिक रीजंस हैं इसके, बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो एक तो जेनेटिक हेरिडिटरी फैक्टर है कि अगर आपकी फैमिली में पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, एक को है तो रिस्क रहता है, दोनों को
1: जी
0: है तो रिस्क बढ़ता है। तो एक हेरिडिटरी फैक्टर होता है जिसकी वजह से आपका एक रिस्क हमेशा बना रहेगा कि आपको भी डायबिटीज़ हो सकता है।
1: यानी वालदैन को या
0: जी,
1: वालदैन में से किसी एक को भी है तो
0: तो
1: चांसेस इस
0: आपका
1: बात के
0: चांसेस
1: ज्यादा
0: है कि
1: होते हैं।
0: आपका डायबिटीज़ होने का रिस्क है। दूसरा सबसे बड़ा रीज़न जो आजकल देखा जाता है वो है मोटापा, ओबेसिटी। मोटापा, जब इंसान का वज़न बढ़ता है तो बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाता है। जो बॉडी में इंसुलिन काम करना चाहिए वो प्रॉपरली काम नहीं करता, जिसकी वजह से शुगर हमारा बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ने के रीजन्स सिर्फ एक नहीं है। मोटापे होने का रीज़न सबसे बड़ा हमारा हाई कैलोरी इंटेक, जब हम खुराक ज़्यादा खाते हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है, जैसे हमारा आजकल लाइफस्टाइल। इसलिए डायबिटीज़ को लाइफस्टाइल डिसऑर्डर बोला
1: जी
0: जाता है,
1: जी बिल्कुल
0: क्योंकि जब हमारी कैलोरी इंटेक हो ज़्यादा होती है और आउटपुट कम होता है तो हमारा वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा, विसरल फैट बढ़ेगा, पेट के आसपास जो जिसको सेंट्रल ओबेसिटी हम बोलते हैं वो बढ़ता है, तो उससे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाता है। अब मोटापा बढ़ना सिर्फ हाई शुगर से नहीं होता। मोटापा आप अगर ज़्यादा खाना खाएंगे, वो नॉन जो स्वीटेंड फूड है वो भी अगर आप
1: जी
0: ज़्यादा खाएंगे, कैलोरी इंटेक ज़्यादा करेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है और आउटपुट कम होगा,
1: जी
0: तो फिर आपका मोटापा होगा, वज़न बढ़ेगा, तो वज़न बढ़ने से इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है जिससे डायबिटीज़ का चांस ज़्यादा है। ओवरऑल भी अगर खुराक ज़्यादा खाएं जिसमें आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं है तो आपको शुगर होने का चांसेस ज़्यादा है।
1: जी आपकी बातों में ये भी एक पोशीदा इशारा था कि
0: जी
1: ज़्यादा खाना भी उतना मसाला नहीं है, लेकिन अगर आपके जिस्म को उस खाने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, तो वो आपके लिए एक लायबिलिटी बन जाती
0: जी
1: है।
0: बेशक बेशक
1: इसलिए आमतौर से जो जिम जाने वाले बच्चे होते हैं, उस तरह के लोग होते हैं जो कसरत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, उनकी डाइट अच्छी खासी होती है, लेकिन देखने में भी फिट होते हैं और फिट अदरवाइज भी फिट होते हैं। तो ये इसके पीछे का सबब गालिबन यही होगा
0: यही
1: जो
0: है
1: आप कह रहे
0: जी।
1: हैं,
0: देखिए, अगर आप खुराक ज़्यादा ले रहे हैं और उतना आउटपुट नहीं आ रहा है
1: नहीं आ रहा है।
0: तो वो बॉडी में आपका लीवर में, जो लीवर हमारा जो स्टोरेज ऑर्गन होता है बेसिकली, वो लीवर में फैट की तरफ एक्यूमुलेट हो जाता है, जिसको हम फैटी लीवर बोलते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि फैटी लीवर भी एक शुरुआती, मतलब जिसको शुगर बेशक उसका नॉर्मल आ रहा है, बट अगर फैटी लीवर है तो एक चांस होता है कि लॉन्ग टर्म में इस मरीज़
1: डेवलप हो
0: को
1: जाए।
0: डायबिटीज़ होने का रिस्क है, क्योंकि एक्स्ट्रा खुराक ही आपके लीवर पे जाके फैट एक्यूमुलेट करके फैटी लीवर कर देती है। तो बेसिकली अगर आपकी खुराक ज़्यादा है, आउटपुट कम है, आपका फिजिकल एक्टिविटी कम है, आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस हो जाता है कि बॉडी से जो इंसुलिन रिलीज हो रहा है वो प्रॉपरली काम नहीं करता है, जिससे शुगर जो मसल्स में जाना चाहिए, आपके टिश्यूज में जाना चाहिए, वो सिर्फ आपके ब्लड में रहता है। तो जब ब्लड में रहता है तो फिर शुगर हाई हो जाता है और उसी से कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क ज़्यादा बढ़ जाता है।
1: शुगर अपने आप में सेहत के लिए एक मसला तो है ही, और कई बार इसकी हदें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो दूसरे कई मरज़ को पैदा कर देता है। तो इस तरह के कौन कौन से इससे जुड़े हुए अमराज हैं कि जो अगर शुगर पर वक्त पर ध्यान नहीं दिया गया है या उसका इलाज नहीं कराया गया, तो किन दूसरी बीमारियों के होने के इम्कान हैं?
0: डायबिटीज़ ये मत समझिए कि कोई बीमारी है, लेकिन इसको हमें कंट्रोल इसलिए करना है क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर शुगर हाई रहता है तो

0: आपके जो एंड ऑर्गन, जो ऑर्गन्स का डैमेज होगा, वो खतरनाक बीमारियां होती हैं। हमारा जो मकसद होता है शुगर को कंट्रोल करने का, वो यही होता है कि इससे होने वाले जो ऑर्गन्स डैमेज होते हैं, जो मैं बताता हूँ क्या क्या हैं,
1: जी
0: वो हमें रोकना है। तो ये मकसद होता है हमें कि हम शुगर को एक नॉर्मल रेंज में इसलिए रखें ताकि जो इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होने वाली हैं वो उनसे हम रोकें। तो सबसे कॉमन जो इन्वॉल्वमेंट ऑर्गन्स का होता है वो है सबसे पहले तो आइज़। आपकी आइज़ को बहुत डैमेज करता है, जो हमारे रेटिना होता है, जो पर्दा होता है आँख का पर्दा, वो सबसे पहले और कॉमनली इन्वॉल्व होता है। तो जब भी अगर आपका आँखों में कोई नज़र कमज़ोर हो रही है या चश्मा फ्रिक्वेंटली चेंज कर रहे हैं आप क्या, तो हमेशा अपना शुगर ज़रूर चेकअप
1: जरूर चेक
0: कराएं।
1: करना।
0: और कई मरीज तो हमारे पास इसलिए आते हैं क्योंकि वो आई स्पेशलिस्ट के पास गए हैं, उनको तो पता भी नहीं था कि शुगर है। जब
1: जी
0: आई डॉक्टर ने चेक किया तो पता चला कि इनके तो पर्दे पे शुगर की वजह से काफ़ी असर आया है, तो फिर वो हमारे फिजिशियन के पास भेजते हैं कि आप शुगर चेकअप करा लीजिए और अपना इलाज कराइए। तो आइज़ का इन्वॉल्वमेंट कॉमनली होता है। सेकेंड है नर्व्स का, नसें, जो नर्व्स जो हमारी होती हैं उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है, जिसको हम डायबिटिक न्यूरोपैथी बोलते हैं। तो पेशेंट को नंबनेस, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट, सुनपन, बेसिकली ये सब सिम्टम होते हैं। तो नर्व्स का डैमेज होता है, ये भी हाई शुगर से होता है। और दो कॉमनली सिम्टम जो ड्रेडिड, जिसको हम खतरनाक सिम्टम बोलते हैं, जिसकी वजह से मरीज की एक डेथ का रीज़न भी बनता है, वो है किडनी का और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट। इसको हम डायबिटिक नेफ्रोपैथी बोलते हैं, और किड हार्ट का इन्वॉल्वमेंट जो हार्ट अटैक का एक रीज़न, जो डेथ का रीज़न बन जाता है। तो हमें जो पेशेंट को बेसिकली प्रिवेंट करना है वो इन चार मेजर कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ की, ये मरीज़ को ये चार कॉम्प्लिकेशंस, इसके अलावा भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है, बट जो चार जो कॉम्प्लिकेशन है जिसको हम माइक्रोवेस्कुलर कॉम्प्लिकेशंस बोलते हैं, इससे प्रिवेंट करना है। तो वो कैसे प्रिवेंट होगा? जब हम अर्ली डायग्नोस करें, कि पहले ही पता चले कि इसके इस पेशेंट को, इस इंसान को शुगर इसका हाई जा रहा है और इसको हम अभी से कंट्रोल करें। अगर एक इंसान जिसका शुगर पता चला है और उसने लाइफ में कभी शुगर उसके बाद बढ़ने नहीं दिया, नॉर्मल रखा, उसको ये कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। हमारा मकसद यही है कि हम शुगर अभी से कंट्रोल करें ताकि मरीज़ इन सब कॉम्प्लिकेशंस के साथ हमारे पास ना आए। अगर कोई मरीज़ जिसका शुगर अनकंट्रोल है और उसने दवाई नहीं ली, कोई अपना ध्यान नहीं रखा, तो अल्टीमेटली ये कॉम्प्लिकेशंस लेके पेशेंट हमारे पास आएगा ही आएगा। और ये कॉम्प्लिकेशंस बहुत कॉमनली हमारे पास प्रेजेंट करके आता है। मतलब बेसिकली पेशेंट को कई बार शुगर का पता भी नहीं होता है, वो पता चले कि उसका किडनी भी ख़राब हो गया है, उसके हार्ट की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, उसकी आंखों की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, और हैरानगी की बात ये होती है कि मरीज़ को ये तक नहीं पता है कि उसका शुगर हाई था। तो इसीलिए डायबिटीज़ में सबसे इम्पॉर्टेंट है अवेयरनेस, कि लोगों को पता होना चाहिए कि भाई हमें एक रूटीन चेकअप करना ज़रूरी है। इसलिए पहले गाइडलाइंस होते थे कि बियॉन्ड 40 ईयर्स ऑफ एज आप अपना शुगर चेकअप ज़रूर कराएं, लेकिन अब जो देखा गया है यंगर एज में भी डायबिटीज़ होने का रिस्क रहता है। तो हम कब चेकअप कराएं? पहले तो अगर आपका फैमिली हिस्ट्री है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि अगर आपको पेरेंट्स में एक को या दोनों को है, तो आप यंगर एज ग्रुप में, मैं तो ये कहूँगा 20 साल के बियॉन्ड ही एक रूटीन चेकअप ज़रूर करा लिया करें, शुगर का चेकअप ज़रूर करा करें। लेकिन अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री नहीं है लेकिन आपका वज़न बढ़ रहा है, तो शुगर का चेकअप ज़रूर कराएं। और अगर वज़न नहीं बढ़ रहा है तो बियॉन्ड 30 और 40, तो आप एक रूटीन डायबिटीज़ का चेकअप ज़रूर कराएं, ताकि हमें इसको जल्दी कंट्रोल कर सकें और जो इससे होने वाली कॉम्प्लिकेशंस हैं उसको हम प्रिवेंट कर सकें।
1: जी उम्दा बातें, ख़ास तौर से जो बिल्कुल नए बच्चे हैं, नौजवान हैं, आम तौर से उन्हें लगता है कि अभी तो हमारी उम्र ही उछलने कूदने की है, भागने दौड़ने की है, तो उनके जहन में कभी ये बात आती ही नहीं गुमान में कि उन्हें भी इस तरह के मसाइल हो सकते हैं। जैसे आजकल बच्चे आमतौर से पढ़ने वाले हैं, हॉस्टल में हैं, कहीं बाहर हैं, तो उनको खाने पीने की न तो वक्त की पाबंदी होती है, न वो क्या खा रहे हैं उन्हें इसका पता होता है, बाहर से वो जो मंगा रहे हैं वो किस क्वालिटी का है, वो उन्हें किस तरह से नुकसान पहुंचा रहा है उसका पता नहीं होता। कई बार बच्चों की फिजिकल इनएक्टिविटी का एक जस्टिफिकेशन उनके पास ये था कि हम पढ़ रहे होते हैं, हमें स्टडी करना है, अभी हमारे पास उछलने कूदने के लिए, बाहर खेलने भागने दौड़ने के लिए वक्त नहीं है, लेकिन उनका वेट बढ़ता जाता है, उन्हें पता नहीं होता। ये अब आपकी बातें सुनकर ये लगता है कि ऐसे बच्चों को भी बहुत केयरफुल रहना
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: बिल्कुल, मैं वही बताना चाह रहा था, क्योंकि पहले एक ट्रेडिशनली एक 40s बियॉन्ड हम बोलते थे, बट आजकल जो इंसुलिन रेजिस्टेंस, मोटापा यंग लोगों में, आपको यकीन नहीं आएगा, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था कि
1: जी
0: टाइप 1 डायबिटीज़ यंग में देखा जाता है, बट अब टाइप टू डायबिटीज मेलाइटिस जो इन मोटापे से होता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस से होता है, वो यंग लोगों में देखा जा रहा है। और यंग लोगों से मेरा मतलब 16, 17,

0: एज ग्रुप,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उनमें मोटापा बढ़ रहा है, फिजिकल इनएक्टिविटी का रीज इनटेक का ज़्यादा है और फिजिकल इनएक्टिविटी हो रही है जिससे वजन बढ़ता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है, और यंग लोगों में भी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस का इंसिडेंस देखा जा रहा है।
1: खास तौर से बड़ों में तो नहीं, लेकिन बच्चों में ये बात आम होती है कि वो बहुत सी चीज़ें जैसे फल, साग सब्जी, ये तमाम चीज़ें उन्हें आम तौर से खाने में बहुत पसंद नहीं आती। तो क्या इनका न लेना भी एक सबब होता है उनके जिस्म को उस तरह बिहेव करने का?
0: जी, हम जो भी खाने को दो हिस्सों में तोलते हैं कि इसका कैलोरी इंटेक कितना है, जब आप कुछ चीज़ खाते हैं तो वो कितनी कैलोरी आपको देती है। आजकल ज़्यादातर तो जो फूड यूज़ होता है, जैसे मैदे की चीज़ें,
1: जी
0: फास्ट फूड, ये टेस्ट के हिसाब से बच्चों को यंग एज में बहुत पसंद आता है, लेकिन ये साथ साथ आपको कैलोरीज बहुत ज़्यादा दे देता है। जैसे अगर आप एक बर्गर खाएं या एक पिज़्ज़ा खाएं, आपको कॉमनली आजकल आप जाएंगे कहीं पे
1: जी
0: भी
1: जी
0: ज़्यादातर
1: जी
0: यही चीज़ें यूज़ होती हैं, तो ये इनका कैलोरीज बहुत ज़्यादा प्रोवाइड करते हैं जिसकी वजह से आपका वज़न बढ़ना और मेटाबॉलिक सिंड्रोम का इंसिडेंस बढ़ जाता है। जितने भी हाई फाइबर डाइट होती है, चाहे वो फ्रूट्स हैं या सैलेड्स हैं, इससे पेट भरता है लेकिन ये कैलोरी कम देता है। तो हाई कैलोरी और लो कैलोरी, जैसे जितने भी सब्जियां, फल फ्रूट हैं,
1: जी
0: इनसे आपकी कैलोरी बहुत कम मिलती है एज़ कंपेरिजन टू फास्ट फूड और बाकी मैदे की चीज़ें जो
1: जी
0: कॉमनली यूज़ होती हैं या फास्ट फूड, उनसे कैलोरी ज़्यादा मिलती है। तो क्योंकि आजकल इनसे फल फ्रूट और फाइबर का इंटेक कम हो गया है,
1: कम हो गया
0: फास्ट
1: बहुत।
0: फूड इंटेक बढ़ गया है, क्विक शुगर इंटेक, इनफैक्ट जैसे शुगरी प्रोडक्ट्स, कोल्ड ड्रिंक, जूसेस, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली आपके बॉडी में कैलोरी देंगी, आपकी बॉडी में वजन बढ़ाने में हेल्प करेंगी और जिससे डायबिटीज़ का इंसिडेंस बढ़ जाएगा।
1: जी ये तो हमने आमतौर से बातें जो अभी की उसमें एक बड़ा हिस्सा नौजवानों पर मरतखिज था।
0: जी
1: हम एक खास एज को जब क्रॉस करते हैं तो उसके बाद वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, हमें बहुत सारे ऐसे मसाइल से दोचार होना पड़ता है जिसके बारे में हम आमतौर से नहीं सोचते, और अपने प्राइम में या 40s 50s तक हमें ध्यान नहीं रहता, लेकिन उसके बाद उसको हमें संजीदगी से लेना होता है। आपने खुद बताया कि वो टेस्ट कराते रहना चाहिए, ये एक रूटीन टेस्ट ज़रूर कराना चाहिए खास एज के बाद। और खाने पीने में आपने बताया कि जो लो कैलोरी है वो लेना चाहिए अगर हम फिजिकल एक्टिविटीज़ ज़्यादा नहीं कर रहे हैं।
0: जी
1: तो अलग अलग उम्र के लोगों को अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ में शामिल होना चाहिए ताकि एटलीस्ट इंसुलिन के जो मसाइल पैदा हो
0: जी
1: रहे हैं उसकी वजह से वो ना पैदा हों। तो आप किस तरह से सजेस्ट करते हैं कि सीनियर सिटीजन्स और जो यंग हैं दोनों में क्या फर्क होता है दोनों के डायबिटीज में? वो आपने बताया भी है पहले, दोनों को खाने पीने में अपने मामूलात में किस तरह का फर्क करना चाहिए?
0: देखिए, जहाँ तक जो डायबिटीज़ की जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो शुगर वैल्यू से उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज़ से पड़ता है। जितना लंबा शुगर की बीमारी है, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। मतलब कोई पेशेंट सबसे पहले जब हमारे पास आता है, हमारा सबसे पहला सवाल होता है कि आपको शुगर कितने सालों से है। जितना लंबा डायबिटीज़, उतना कॉम्प्लिकेशंस का रिस्क बढ़ जाता है। यंग लोगों में अगर डायबिटीज़ हो रहा है, तो इतना हमें पता है कि इसको हमें अभी कंट्रोल
1: चेक किया
0: करना
1: जा
0: बहुत
1: सकता है।
0: ज़रूरी है, ताकि जब ये पेशेंट बियॉन्ड 40s, बियॉन्ड 50 और बियॉन्ड 60s हमारे पास आए, तो इसके जो डायबिटीज़ से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हैं वो ना हो। तो इसलिए अर्ली टारगेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि हम उसको कॉम्प्लिकेशंस से रोकें। जो एल्डरली पेशेंट्स हमारे पास आते हैं, अक्सर अमूमन ये देखा गया, वो ज़्यादातर इन कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में शायद उन्होंने ध्यान नहीं दिया होगा शुगर का। तो ये लोग ज़्यादातर हमारे पास आइज, नर्व्स, किडनी या हार्ट का डैमेज लेके आते हैं। ऐसे पेशेंट्स में और भी बीमारियां होती हैं, किडनी की बीमारी होती है, हार्ट की बीमारी हो चुकी होती है, तो उनमें हमें फिर उसके अकॉर्डिंग डायबिटीज़ से रिलेटेड हमें एडवाइस देनी पड़ती है। पहले तो जो कॉमन एडवाइस है वो सबके लिए सेम रहती है कि आपको कैलोरीज को ध्यान देना है, कि कैलोरीज रिस्ट्रिक्ट करें आप, कैलोरीज को बढ़ने ना दें, और फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि एल्डरली में फिजिकल एक्टिविटी एज कम्पेयर टू यंग थोड़ा डिफरेंट रहेगी, क्योंकि उस एज में फिर आपके घुटनों की प्रॉब्लम, कमर की प्रॉब्लम, तो हम वो वाली फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको एडवाइस नहीं कर सकते जो यंग को कर सकते हैं। तो हम यही बोलते हैं कि आप जो रोज़मर्रा आपकी ज़िंदगी है, उसी में आप फिजिकल एक्टिविटी ऐसे इनकॉर्पोरेट कर दीजिए कि आपको, ज़्यादातर आजकल प्रॉब्लम ये है कि लोगों के पास टाइम नहीं है अलग से।
1: जी
0: तो जो मैं एडवाइस करता हूँ एज ए डॉक्टर, हम ये एडवाइस करते हैं कि आप अपने रूटीन में वो चीज़ें लाएं जो आप डेली फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर मरीज ये

0: बोलते हैं कि एक दिन आएगा जहां मैं जब मैं जिम जाऊंगा, एक दिन जब आएगा जब मैं वॉक करने जाऊंगा, बट वो दिन कभी नहीं आता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपनी रूटीन में वो चीज़ें लाएं
1: जी
0: जो आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं। जैसे कॉमन चीज़ें क्या कर सकते हैं हम, एक तो जैसे आप लिफ्ट अगर यूज़ करते हैं तो लिफ्ट की जगह आप स्टेयर्स यूज़
1: जिम
0: कर रहे हैं।
1: यूज कीजिए।
0: अगर आप गाड़ी से जाते हैं तो गाड़ी से हर कोई जाता है, तो आप पार्किंग थोड़ा दूर करें ताकि आप थोड़ा चल के अपने ऑफिस तक जाएं, और अगर हो सके तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करें। जब आप मेट्रो से जाते हैं तो आप चल के जाते हैं मेट्रो तक, रिक्शा का यूज़ कम से कम करें। तो अगर, और खासकर जो ऑफिस गोइंग लोग हैं जो जिनका प्रोलॉन्ग सिटिंग रहता है, तो उनको हमेशा बोलते हैं कि आप प्रोलॉन्ग सिटिंग अवॉइड करें, थोड़ा थोड़ा ब्रेक ले लें। जैसे आप 1 घंटे बैठे हैं तो थोड़ा टहल के आइए आप। तो ये चीज़ें और इनकॉर्पोरेट कीजिए जिससे आपका फिजिकल एक्टिविटी डेली एक रूटीन बन जाएगा। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम है तो आधा पौना घंटा डेली ब्रिस्क वॉक करें, जो अगर आप कर सकते हैं तो बेस्ट है, क्योंकि एक इंसान को 30 से 45 मिनट्स फिजिकल एक्टिविटी 5 दिन हफ्ते में काफ़ी होता है एक फिजिकली एक्टिव रहने के लिए। तो अगर यही चीज़ हमने कर ली तो आपको जिम जाने की जरूरत नहीं है अलग से कि आप एक दिन मैं जिम
1: बिल्कुल
0: जाऊंगा, वो एक जो हमेशा माइंड में रहता है कि, तो आप जस्ट एक इनको अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ही वो चीज़ें इनकॉर्पोरेट कीजिए जो आप फॉलो कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि डायबिटीज़ लॉन्ग टर्म बीमारी है। ये एकदम ऐसे नहीं होगा कि आपने 10 दिन किया फिर 20 दिन नहीं किया। तो एक इसको रूटीन बनाना पड़ता है जिसमें आपकी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ जाती है, क्योंकि देखिए आजकल हर एक के पास स्मार्ट वॉचेज़ होते हैं। तो मैं अक्सर ये बोलता हूँ पेशेंट्स को कि मिनिमम 10,000 स्टेप्स आप ज़रूर एक डे में करिए। 10,000 नहीं भी हो सकता है तो 5 से 10,000 के बीच में स्टेप्स आप ज़रूर करिए। उससे आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होता है और इनफैक्ट शुगर भी कंट्रोल होता है अगर आप फिजिकल एक्टिविटी अपनी बढ़ाते हैं तो।
1: जी, अभी आपने बहुत उम्दा मशवरे दिए जो यकीनन बहुत सूदमंद हैं, हर कोई जानता है। ये और बात कि उस पर अमल न कर पाए,
0: जी
1: और जैसा कि आपने कहा, हम सोचते हैं हम अब ये करेंगे, अब
0: जी
1: ऐसे रहेंगे, अब जिम जाएंगे, वगैरह वगैरह। समाज का एक तबका हमारे ऐसा भी है जो हमें सेहतमंद रखने के लिए, हमें तंदुरुस्त रखने के लिए बड़ी मेहनत करता है, लेकिन उसे खुद अपना ख्याल नहीं रहता। और वो तबका है औरतों का,
0: जी जी
1: वो सबकी सेहत का ख्याल रखती हैं, लेकिन जब उनसे अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए कहा जाता है तो उनके पास वक्त नहीं होता। कई बार वो दूसरों के पीछे इतनी दीवानी रहती हैं, उनका जो मकसद होता है, जो टारगेट होता है, उसके पीछे बच्चों को स्कूल जाना है सुबह में, हस्बैंड को दफ्तर जाना है, फिर उनको बच्चों को ट्यूशन जाना है, वो उन्हीं में लगी रहती हैं। तो आमतौर से उनमें भी अब इस तरह की जो बीमारियां हैं वो होती हैं, लेकिन वो ध्यान नहीं दे पाती। तो औरतों के लिए क्या कुछ अलग तरह से कोई हिदायतें हैं, या उनके सिम्टम्स हैं, या उनको कैसे इस चीज़ को ध्यान देना चाहिए कि जो सेहत है, खास तौर से डायबिटीज़ के लिए बहुत कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है।
0: बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि डायबिटीज़ का इंसिडेंस मेल्स और फीमेल्स में अगर देखा जाए तो फीमेल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। की वजह यह है कि जो मेल्स हैं चूँकि घरों के बाहर जाते हैं, थोड़ा
1: जी
0: फिजिकल एक्टिविटी उनकी ज़्यादा रहती है, और फीमेल्स चूँकि घर पे रहती हैं और फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, तो उसकी वजह से मोटापा फीमेल्स में ज़्यादा देखा है, और उसी वजह से डायबिटीज़ का इंसिडेंस भी फीमेल्स में ज़्यादा देखा जा रहा है। तो उसमें भी यही ज़रूरी है कि वो अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा ध्यान दें, एक वक्त अपने लिए ज़रूर निकालें जहाँ वो वॉक ज़रूर करें, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जैसे मैंने भी कहा कि जिम जाएं। आप घर पे भी अगर आपका फ्लैट है या घर है, और गर्मी में चूंकि अगर आप बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे भी वॉक कर सकते हैं। और अगर वॉक ना भी करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेज होती हैं जैसे योगा है, वो भी आपका हेल्प करता है वेट लॉस में, आपकी डायबिटीज़ को इंसिडेंस को कम
1: जी
0: करने में। तो आप एरोबिक एक्सरसाइजेस घर पे भी कर सकते हैं, और ये ज़रूरी नहीं है कि आपको पार्क में ही जाना है, आपको धूप में जाना है। आप एक अपने कमरे में भी कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस कर सकती हैं जिससे आपका वेट कम होगा और आपका डायबिटीज़ का इंसिडेंस कम होगा। दूसरा खुराक है, खुराक पे सबसे इम्पॉर्टेंट कि आपने कैलोरीज को हमेशा देखिए, चेक कर लीजिए कि वैसी चीज़ें ना खाएं जिससे आपका वज़न बढ़े, क्योंकि जब वज़न बढ़ेगा तो डायबिटीज़ का इंसिडेंस ज़रूर बढ़ता है, और एक यही एक बहुत बड़ी वजह हो जाती है अल्टीमेटली जो आपका किडनी और हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है।
1: जी, आपने बड़े अच्छे मशवरे दिए, कई लोगों को बहुत सूट करता है। मैं तो बहुत खुश हुआ कि मैं भी घर में टहल लेता हूँ कभी
0: जी
1: कभी, अपनी काहली को छुपाने के लिए मैं कहता हूँ कि हाँ मैं टहल रहा हूँ। लेकिन कई बार मैंने देखा है कि लोग मॉर्निंग वॉक के लिए निकलते हैं, 4-5 दोस्त होते हैं, वो बातें करते हुए बहुत लंबा चक्कर लगा के लौटते हैं, लेकिन कई माहिरीन का ये कहना है कि ये

0: आपकी सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है। आपको ब्रिस्क वॉक करनी है कि आपको पसीना आए, आप चलने में आपकी सांस तेज हो, आपके लंग्स की कुव्वत पता चले।
1: देखिए,
0: आप क्या
1: इसमें
0: कहना चाहेंगे?
1: एक तो होता है कि बेस्ट केस सिनेरियो क्या है।
0: जी
1: एक तो डेफिनेटली ब्रिस्क वॉक सबसे हेल्पफुल रहता है कि
0: जी
1: ब्रिस्क वॉक करना है और आपको थकान हो, हल्का हल्का सांस फूले, पसीना आए, तो वो आइडियल होता है।
0: आइडियल होता
1: लेकिन
0: है।
1: अगर इंसान ये सोचे कि मैं ब्रिस्क वॉक नहीं कर पा रहा हूँ और मैं सिर्फ बेड पे बैठूँ, चेयर पे बैठूँ, तो
0: जाहिर है।
1: उससे बेहतर सेकंड बेस्ट ऑप्शन है कि आप टहले। क्योंकि चाहे वो 5,000 स्टेप्स है उसका भी फायदा होता है, चाहे
0: जी
1: 10,000 स्टेप्स है उसका भी, तो आप फिजिकली एक्टिव रहिए। लेकिन अगर
0: जी
1: आप नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है आजकल,
0: जाहिर है
1: इतना
0: वो
1: वो
0: बिल्कुल।
1: हमारी प्रेफरेंसेस बहुत बदल जाती हैं, जॉब, घर का काम, उसमें आपको टाइम अलग से अपने लिए, चाहे कुछ भी वॉक करें वो भी कर सकते हैं। मैं तो ये तो एडवाइस करता हूँ पेशेंट को, जैसे अगर आप कहीं लॉन्ग टर्म के लिए किसी का वेट कर रहे हैं, जैसे
0: जी
1: एयरपोर्ट पे हैं,
0: तो
1: स्टेशन पे
0: टहलते
1: हैं,
0: रहें।
1: तो चेयर पे मत बैठें, आप टहलिए, वो
0: बिल्कुल
1: भी आपके लिए
0: निश्चित।
1: फायदेमंद होगा। ये जरूरी नहीं है कि आपको अलग से एक प्लान वर्क करके रहना। आप कहीं किसी का इंतजार कर रहे हैं तो आप टहल टहल के इंतजार करिए। तो एक
0: बेहतर।
1: बेसिक चीज है, अगर आप फोन पे बात कर रहे हैं, आप फोन पे बात बैठ के ना करके आप वॉक करके बात करिए। क्योंकि आज इंसान एक एक घंटा फोन पे बिजी होता है,
0: जी
1: और ये
0: जी
1: बेस्ट
0: जी
1: टाइम होता है कि आप टहल टहल के बात करें, आपको पता भी नहीं चलेगा कि
0: बहुत
1: आप वॉक
0: उम्दा,
1: कर रहे हैं।
0: बहुत उम्दा।
1: जी
0: क्या क्या क्या गुर आपने बता दिए। और ऐसे मौके कम आते हैं कि लोग बहुत संजीदगी से अपनी सेहत के बारे में सोचें और उन्हें यह भी पता हो कि उनकी सेहत के किस मसले का हल क्या है। आपने बहुत कम वक्त में, आपने बहुत मुख्तसर और थोड़े वक्त में बहुत काम की बातें बताई। और मेरी दुआ है कि हमारे जितने सामईन हैं, जो लोग भी सुन रहे हैं, वो आपके मशवरों पर अमल करें और सेहतमंद रहें, अपने फैमिली, अपने बच्चों को सेहतमंद रहने की सलाह दें, उन्हें तरीके बताएं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। नवाजिश।
1: जी शुक्रिया। बस लास्ट पे एक चीज़ बोलूँगा, जैसे हम हमेशा बचपन से सुनते आ रहे हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। शुगर से बचने के लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अपना वेट मेंटेन रखें, डाइट पे फोकस करें, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं। अगर ये चीज़ों पे फोकस करेंगे तो शायद आपको डायबिटीज़ नहीं होगा और ना ही डायबिटीज़ से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस होंगी।
0: बहुत शुक्रिया।
2: सामईन, अभी आप डॉक्टर शेख यासिर खान से ये सैर हासिल गुफ्तगू समाप्त कर रहे थे, उनसे बात कर रहे थे जनाब नौमान शौ। तो सामईन, हमें यकीन है कि हम सब के लिए ये गुफ्तगू और डॉक्टर साहब का मशवरा बहुत मुफीद साबित होगा। सामईन, हम ऐसे ही मेहमानों को आपकी बज्म में शामिल करते रहेंगे। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम ख़त्म करने की दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।

0: अभी आप उर्दू मजलिस कार्यक्रम सुन रहे थे। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं कार्यक्रम मैटनी मेलोडीज।
1: प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: आइए कार्यक्रम के आरंभ में सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में ये गीत, फिल्म है दो गलियां।

0: This is Akashvani. We now take you over to the Mahaprabhu Jagannath Ji Tham, Pavan Chetra Puri in Odisha for the live broadcast of the celebration of Rath Yatra. Our commentators are Sri Mohan Lal Majithia in Hindi and Professor Rajinikant Nayak in English.
1: Ye Akashvani hai. Ab hum aapko punah महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी लिए चलते हैं, जहां से आप वहां आयोजित हो रही रथ यात्रा का आंखों देखा हाल सुनेंगे। विवरण दे रहे हैं श्री मोहनलाल मजीठिया हिंदी में और प्रोफेसर रजनीकांत नायक अंग्रेजी में। आइए श्री जगन्नाथ धाम पुरी चले।
2: जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री जगन्नाथ। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को पुरी से भगवान श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के आंखों देखा हाल का दूसरा चरण अभी शुरू हो रहा है। जब हम पहला चरण पूरा करके ब्रेक में गए थे, तब जगन्नाथ जी उनकी पहंडी प्रक्रिया पूरी

0: नहीं हुई थी, वो रथ पर आसीन नहीं हुए थे, लेकिन इस बीच जगन्नाथ जी रथ पर विराजमान हो चुके हैं। उनके बाद तीनों रथों में जो पार्श्व देवी देवता उनको स्थापित किया जाता है, जैसे कि पंचमुखी महावीर, हरिहर, मधुसूदन, गिरी गोवर्धनधारी, पांडु नरसिंह, लक्ष्मण, अंगद, नरसिम्हा, कार्तिकेय, नटराज, नृत्यरत गणेश आदि ये देव, तथा माँ बिमला, वनदुर्गा, वराही, चामुंडा, भुवनेश्वरी, हरचंडी, जयदुर्गा, सर्वमंगला, उग्रतारा आदि देवियों को भी सहायक देवी देवता के रूप में रथों पर विराजमान कराया जाता है। ये प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और इस तरह पहंडी का क्रम संपूर्ण हो चुका है। उसके बाद विधि अनुसार जो परंपरा रही है सदियों की, पूरी गोवर्धन पीठ के शंकराचार्य महाराज श्री श्री निश्चलानंद सरस्वती वो अपनी सेवा देने के लिए, प्रभु के दर्शन करने के लिए वो पधारे हैं। एक के बाद एक तीनों रथों पर वो भगवान की आरती करेंगे, उनकी पूजा करेंगे, दर्शन करेंगे और भगवान से समूचे जगत के लिए कल्याण का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये क्रम अभी चल रहा है। उनका जो ये सेवा है ये पूरी हो जाने के बाद फिर वहाँ से आज्ञामाल आएगी और गजपति महाराजा के पास संदेश लेकर कि आपका अब समय हो चुका है, इसके लिए अभी समय है। लेकिन इस बीच मैं आपको बता दूं, ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं, वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं, भीड़ इतनी है। इस बीच किसी किसी मूर्छित श्रद्धालु को स्वयंसेवी संस्थाएं उनकी सहायता करते हैं, प्राथमिक चिकित्सा के लिए पास ही जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां ले जाते हैं, एम्बुलेंस की सेवा मौजूद है, अग्निशम विभाग वो लोग भी मौजूद हैं और पुलिस, आरपीएफ और ये सारी सशस्त्र सेनाएं ये भी सुरक्षा के लिए मौजूद हैं। सब कुछ सकुशल चल रहा है। घंट ध्वनि, जय घोष, जय जगन्नाथ, हरि बोल की गूंज के बीच ये वातावरण एक मानो एक अद्भुत लहर उठ चुकी है और मेरे सामने तीनों रथ जो सुसज्जित हैं अभी गजपति महाराजा के पास संदेशा आएगा। इस बीच हमारे सामने हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी, वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
1: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना इतना इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
0: धन्यवाद अंजलि जी। आप लोगों ने जैसे सुना अंजलि जी बहुत ही भावुक हो गई हैं। ये समय ऐसा है, ये माहौल ऐसा है, ये वातावरण ऐसा है कि जगन्नाथ जी की

0: बड़े चक्राकार नयन को देखकर कोई भी भक्त, कोई भी श्रद्धालु भाव विभोर हो जाता है, वो अपने आप को भुला देता है, वो यही देख रहा है कि वो दुनिया में सिर्फ वो अकेला है और उसके सामने उसके आराध्य देव भगवान श्री जगन्नाथ जी हैं, आसपास कोई और नहीं है। ये भक्त और भगवान के बीच के मिलन का दृश्य बहुत ही मनभावन है, बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अलौकिक है। आप पहली बार आई हैं रथ यात्रा में?
1: हाँ, मैं पहली बार आई हूँ।
0: इससे पहले आप जगन्नाथ मंदिर के दर्शन में आई?
1: नहीं, मैंने कभी जगन्नाथ मंदिर के दर्शन नहीं किए।
0: तो देखिए, ये अंजलि जी का सौभाग्य है कि उन्हें भगवान जगन्नाथ स्वयं दर्शन देने के लिए आज के इस अषाढ़ शुक्ल पक्ष द्वितीया के तिथि में उन्हें अपने पास बुला लिया और उन्हें दर्शन दिया। और जैसा कि अंजलि जी ने वर्णन किया, उनके पास शब्द की कमी पड़ रही है, वो अपने भाव प्रकट करने में अक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अंजलि जी, आपका जीवन सुखमय हो, जगन्नाथ जी आप पर यही आशीर्वाद करें। धन्यवाद,
1: जय जगन्नाथ।
0: तो देखा आपने, ये एक भक्त के मन की भावना थी, उन्हें शब्दों की कमी पड़ रही थी, वो यहाँ आकर जगन्नाथपुरी में पहुंचकर कैसे अपने आप को भुला देती हैं, वो जगन्नाथ जी के दर्शन कर कैसे अपने आप को धन्य मानती हैं। तो अब मेरे सामने तीनों रथ सुसज्जित हैं, जगन्नाथ जी रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं, शंकराचार्य जी अपने भगवान के दर्शन कर सभी जनता के लिए, सभी भक्तों के लिए, सभी श्रद्धालुओं के लिए, समूचे विश्व के लिए भगवान से आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। और आगे का हाल सुनाने के लिए अंग्रेजी में मैं अनुरोध करूंगा मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से।
2: थैंक यू मजीथिया जी। एक्चुअली दिस इज द आफ्टरनून सेशन ऑफ आवर कमेंट्री, लाइव कमेंट्री इन हिंदी एंड इंग्लिश। मजीथिया जी हैज ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट हाउ द थ्री कार्स आर ऑलरेडी रेडी, दे आर इन रेडी पोजिशन, दो ऑल थ्री ऑफ देम आर एब्सोल्युटली wet to the skin, as you say, but this has had no deterring effect on the assembly. The crowd is as eager to participate in the Rath Yatra as they were early in the morning, but morning or afternoon, the rains continue unabated, but this has not been able to do any dent to the enthusiasm of the crowd, of the substantial crowd which has assembled here to see the annual Rath Yatra of the Lord of Lords, that is Jagannath. So as I was telling you, this time special precaution has been taken from the side of the government to prepare everything in such a way so that there is no untoward incident, because last year there was one such untoward incident for which the government was a little maligned, and this time they have taken special care, and the services provided also, they include some of it Majithya ji has already talked about. Fire brigade is there, health services like Red Cross and ambulance services are always available. In fact, the moment there is a casualty, that there somebody falls down because of extreme heat, but there is no heat today, it is only rains. So in case anyone loses consciousness, there is an ambulance which is allowed to pass through the crowd in such a beautiful way, so that there is nothing that comes in the way of the ambulance, and the patient is immediately taken care of. And the sanitation part is also taken up care of, and police has taken special care this year. About 220 platoons of police personnel have been deployed for the Puri Rath Yatra this year. About 12,000 security personnel, including Odisha Police, Home Guards and Central Armed Police Forces, CAPF, like BSF and CRPF, are already there. And specialized units also, like elite units such as National Security Guard, NSG, and Commandos and Rapid Action Forces, RAF, that is, they are also pressed into service. They are on duty, and whenever required, their help can be sought after. And absolutely about

0: घोल और पहरा यानी झाड़ू से साफ करना। तो छेरा पहरा ये मिलकर झाड़ू से साफ करना और चंदन मिश्रित जल का सिंचन करना, ये होता है छेरा पहरा। तो गजपति महाराजा जब ये आएंगे बारी बारी से तीनों रथों पर ये सेवाएं प्रदान करेंगे। फिलहाल मैं आपको बता दूं ये रथों के निर्माण के बारे में कुछ जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। परंपरा के अनुसार वैशाख शुक्ल तृतीया यानी अक्षय तृतीया रथ निर्माण की शुभ तिथि मानी जाती है। प्रतिवर्ष पुरोहित यज्ञादि अनुष्ठान पूर्वक श्री नर यानी कि भगवान गजपति राजा के जो महल है उसे श्री नर कहा जाता है, उसके सम्मुख रथशाला की स्थापना करते हैं। ये रथशाला स्थानीय भाषा में रथ खड़ा कहा जाता है। इसके उपरांत श्री मंदिर से तीन रथों के लिए तीन आज्ञामाल लाए जाते हैं और तीनों रथों के निर्माण हेतु रखी गई पहली लकड़ियों को पूजा करके फिर पूजा अर्चना के बाद प्रति जो रथ के लिए अलग अलग कारीगर हैं वो कुल्हाड़ी चलाकर रथ निर्माण कार्य का शुभारंभ करते हैं। यही प्रक्रिया प्रतिवर्ष होती है, आज भी हो रही है, आगे चलकर भी यही प्रक्रिया जारी रहेगी। जिस प्रकार पंच तत्वों से बने मानव शरीर या मानव रथ निर्माण होता है उसी प्रकार पांच तत्वों से बना है, उसी प्रकार रथ के निर्माण में भी पांच तत्वों का उपयोग किया जाता है। लकड़ी, धातु, वस्त्र, जरी और रंग आदि जंबूरा ये सब प्रयोग में लाया जाता है जिससे रथ बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगते हैं। इन पांच तत्वों में से दारू यानी लकड़ी ही रथ निर्माण का प्रमुख कारक है। रथों के निर्माण में साधारणतया शाल, असन, धौरा, अर्जुन और फांसी आदि लकड़ियों का प्रमुखता से उपयोग किया जाता है। महाराणा गुणाकार छद्माकार वंशानुक्रम से ये रथों का निर्माण कार्य करते आए हैं। जो शास्त्रीय विधि से रथ का निर्माण करते हैं रथ खला में मुख्यतः लकड़ी का काम होता है और जबकि अन्य कार्य अलग अलग जगहों पर होते हैं। ये पारंपरिक शैली से शास्त्रानुमोदित विधि से रथों के निर्माण कार्य संपन्न किया जाता है। रथों के बारे में अधिक जानकारी के लिए मेरे साथी कमेंटेटर अंग्रेजी में प्रोफेसर रजनीकांत नायक।
1: Telling you, friends, the Jagannath as we see him has a lot of speciality about him, but more about it a little later. We have a guest in our studio. She is a lady we are having in the studio, and we will have a little interview with her and we'll talk to her about her experience here. Madam, your name?
2: My name is Sumandar. I'm basically from Jammu and Kashmir, but settled in Gujarat, Ahmedabad.
1: Gujarat, Ahmedabad. Is this your first time that you are coming to Puri?
2: No, this is my third time I'm coming to Puri, but this is my first time for Raghunath Yatra, Rath Yatra.
1: Oh, I think. What's your take on this Rath Yatra, which is so famous that we call it the cynosure of all festivals here?
2: It is something which is miraculous. And it's happening only with the grace of God. It cannot happen without the grace of God and His desire. So many people coming in here, so many people coming for the darshan. It is something which cannot be expressed in words. It's only that once you are here, you can feel that it is in the air, the purity, the God, the divinity, it is in the air.
1: Madam, did you have these religious feelings early in life or somebody inspired you to?
2: My father, he was a very big fan, or you can say devotee of Jagannath Puri. But unfortunately, before he could not come and visit Puri. We are basically from Jammu and Kashmir. It was a long distance from Kashmir to this point. But he used to tell me stories about Jagannath Puri. So since I was a kid, I had a desire to be here.
1: Now that you are here in Puri, what's your experience? Is it exactly the way you considered Lord Jagannath should be, or do you find him a little different from other gods?
2: He's little mischievous, I should say, but he's there for everybody.
1: How do you find him mysterious?
2: mysterious in the sense, since morning we are waiting for lakhs and lakhs of devotees waiting.

0: legal spouse to Gajapati of Puri. And besides, the two large eyes of the Lord are said to be representing sun and the moon, and he commands over all lesser gods. And the chief speciality of this Lord, our Lord Jagannatha, can be said to be lying in upholding family virtues and proving beyond doubt that gods are within touchable distance of human beings. The Lord's Leela or divine game is at its best during the Kar festival. This is the occasion where the Supreme Lord or Purushottama Jagannatha comes to meet his bhaktas in the open. The enthusiasm of millions of bhaktas of his to have a glimpse of their favorite deity can be said to be the best spiritual show on earth. And faith is supposed to be the greatest healer, and at no other juncture in human history the time was more appropriate for man to repose his faith in the Almighty Lord, as we have heard in recent times when we had the corona pandemics, or for the last so many years, about 155 years in the history of the temple, Jagannath worship has not been able to be done because of foreign aggression. With this, I will like to hand over the mic to Majithia ji for commentary in Hindi.
1: धन्यवाद प्रोफेसर नायक. जैसा कि मैंने कहा था थोड़ी देर पहले, शंकराचार्य महाराज तीनों रथों पर भगवान के दर्शन करने के साथ साथ जनता के लिए, समूचे विश्व के लिए प्रार्थना की है भगवान से कि विश्व का कल्याण हो, धर्म का जय हो और अधर्म का नाश हो. उसके पश्चात वहां से आज्ञा माल लेकर गजपति महाराजा के निवास पहुंचे, और गजपति महाराज कुछ ही देर पहले हमारे सामने से एक विशेष रूप से बनी पालकी पर विराजमान होकर रथों पर अपनी सेवा प्रदान करने के लिए पहुंचे हैं. वो बारी बारी से तीनों रथों पर सोने की मुठ वाली झाड़ू से रथों की सफाई करेंगे. जैसा कि हम देख रहे हैं, आगे आगे एक सेवक श्वेत फूल वहां डालते जा रहे हैं और झाड़ू से महाराजा उसकी सफाई करते हैं. इसके बाद वो तीनों रथों पर ये सेवा करने के बाद वो सुगंधी जल से, चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, भगवान की पूजा करेंगे, आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे. ये उनका पारिवारिक हक है. भगवान श्री जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक होने के नाते उन्हें यह अधिकार प्राप्त है. यहां मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रभु जगन्नाथ श्री बलभद्र और माता सुभद्रा के साथ चक्रराज सुदर्शन और सभी पार्श्व देवी देवता रथों पर विराजमान हो जाने के बाद, शंकराचार्य की नीति समापन होने के बाद गजपति महाराजा आते हैं. अभी अभी वो आए हैं. पहले दाऊ जी बलभद्र जी के रथ पर वो जाएंगे, फिर सुभद्रा जी के रथ पर, और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर जाकर वो अपनी सेवा प्रदान करेंगे. इस छेरा पहरा जो विशेष नीति है और जिसका अधिकार गजपति महाराजा को प्राप्त है, ये सदियों पहले गजपति कपिलेंद्र देव के समय से इस परंपरा का प्रारंभ हुआ था. तब से लेकर आज तक वही परंपरा चली आ रही है. पहले मंदिर के अंदर से, जहां भगवान रथ पर आने के लिए निकलते हैं, पूरे रास्ते पर छेरा पहरा की नीति होती थी. परंतु एक समय ऐसा आया जब गजपति मुकुंद देव रुग्ण होने के कारण ये परंपरा सीमित कर दी गई और सिर्फ रथों पर छेरा पहरा की नीति का प्रारंभ हुआ, और यही नीति आज तक चली आ रही है. फिर भी राजा और प्रजा के बीच के संबंध तथा धर्म के प्रति राज परिवार के

रच के अपने सेवा प्रदान करने के बाद, छेरा पहरा करने के बाद वो देवी सुभद्रा के रथ पर जाएंगे और अंत में जगन्नाथ जी के रथ पर। उसी क्रम में पहले छेरा पहरा होगा, सोने के मुठ वाली झाड़ू से सफाई करेंगे, फिर वो सुगंधित जल का सिंचन करेंगे, उसके बाद आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे, उसके बाद उनकी सेवा संपन्न होगी और फिर से वो पालकी में सवार होकर अपने राजमहल वापस आएंगे। इसमें अभी समय है, मैं आपको बताना चाहूंगा जो यहां पूरी धाम जो ऐसा है, इसकी महिमा ऐसी है, या जो भी आए वो जगन्नाथ जी में अपने इष्ट का दर्शन कर पाए और अपने आप को धन्य मानने लगे। जैसे कि संत कबीर का जब श्री क्षेत्र पुरी में आगमन हुआ तो दूर से ही श्री मंदिर की चूड़ा पर, श्री मंदिर के शिखर पर नील चक्र और पतितपावन ध्वज को देखकर भावुक हो उठे, अनायास ही उनके मुख से निकल पड़ा, नील चक्र पर धजा बिराजे मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गाए दास कबीरा। अब आप सोच रहे होंगे ठाकुर आगे दासी नाचे, इसका क्या अर्थ होता है? जगत के नाथ जगन्नाथ उनके दरबार में पहले नृत्य हो रहा था, पारंपरिक ओडिसी नृत्य जो देवदासियां होती थी, जिन्होंने अपना जीवन संपूर्ण रूप से भगवान श्री जगन्नाथ की सेवा में अर्पण कर दिया था, वो नृत्य करती थी। आज के जमाने में वो परंपरा अब रही नहीं, लेकिन कबीर जी ने वो जो दोहा कहा, नील चक्र पर ध्वजा बिराजे मस्तके सोहे हीरा, ठाकुर आगे दासी नाचे गाए दास कबीरा। उसी प्रकार श्री जगन्नाथ महाप्रभु को स्वयं भगवान श्री कृष्ण और राधा का युग्म अवतार माना जाता है। 16वीं सदी के महान संत श्री चैतन्य अक्सर जगन्नाथ मंदिर में कृष्ण के प्रेम में भाव विभोर होकर नाचते थे, गाते थे। रथ यात्रा के समय वह अपने भक्तों के साथ मिलकर गुंडीचा मंदिर, जहां भगवान की रथ यात्रा पूरी होती है, उस मंदिर को साफ करते थे। इससे पता चलता है अहंकार को मिटाने और मन को शुद्ध करने का ये प्रतीक है। जब जगन्नाथ जी स्नान यात्रा के बाद बीमार पड़ते हैं, जिसे अनवसर काल कहा जाता है, वो 15 दिन ऐसे होते हैं अपने भक्तों के लिए बहुत ही पीड़ादायी कहा जाता है, तो चैतन्य महाप्रभु उसी समय पुरी आए हुए थे। उन्होंने जगन्नाथ जी के दर्शन न पाकर विरह के दर्द में पुरी छोड़कर 25 किलोमीटर दूर ब्रह्मगिरी में जा पहुंचे और वहां चतुर्भुज विष्णु के रूप में भगवान जगन्नाथ जी ने उन्हें दर्शन दिया और उनके मन को शांत किया। आज भी अनवसर काल में हजारों भक्त ब्रह्मगिरी जाते हैं भगवान जगन्नाथ जी के विष्णु रूप के दर्शन के लिए और वहां का प्रसिद्ध खीर का प्रसाद पाकर धन्य होते हैं। जब तुलसीदास जी पुरी आए थे, उन्हें लकड़ी से बनी जगन्नाथ जी के इस अधूरे रूप में अपने इष्ट यानी भगवान श्री राम के दर्शन नहीं हुए, उन्हें भी दुख हुआ, उनके मन को भी ठेस पहुंची। तब भगवान ने उन्हें रात में सपने में दर्शन देकर अपनी महिमा बताई। फिर अगले दिन सुबह मंदिर में तुलसीदास जी को जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के स्थान पर प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता के भव्य दर्शन हुए। इसके अलावा भगवान राम के एक अन्य भक्त रघुदास को भी जगन्नाथ मंदिर में राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए थे। ऐसी दंत कथाएं बहुत हैं, हम कहने बैठे तो समय कम पड़ जाएगा। जगन्नाथ मंदिर से जुड़ी हुई, जगन्नाथ के भक्तों से जुड़ी हुई कई ऐसी कथा हैं। एक कथा है दासिया बाउरी की, जो उस समय प्रचलित नीच जाति के थे, लेकिन जगन्नाथ जी के बहुत ही परम भक्त थे। उन्होंने सोचा, मैं मंदिर के अंदर प्रवेश तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अपने इष्ट देव भगवान श्री जगन्नाथ को

0: रिफल देना चाहता हूं तो ये कैसे दूं। भगवान ने अपना हाथ लंबाया और उनके हाथ से श्रीफल स्वीकार कर उसे भी धन्य किया। जब कांची अभियान की बात हुई, कांची के महाराजा से युद्ध हुआ उत्कल के गजपति महाराजा का, उसमें उत्कल के राजा की ओर से स्वयं भगवान जगन्नाथ और भाई बलभद्र काले और सफेद घोड़े में सवार होकर युद्ध किया, कांची के महाराजा को परास्त किया और गजपति महाराजा को धन्य किया। ये संक्षेप में ये कहानी है जगन्नाथ रथ यात्रा की। अब समय हो चला है आप लोगों से विदाई लेने का। इससे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी छेरा पहरा की नीति कर रहे हैं, अभी सुभद्रा जी के रथ पर हैं। जैसा कि क्रम है, पहले सोने की मूठ वाली झाड़ू से वो साफ करते हैं और फिर सुवासित चंदन मिश्रित जल से सिंचन करेंगे, फिर आरती करेंगे, चामर सेवा करेंगे। उसके बाद जगन्नाथ जी के रथ नंदी घोष पर वो सवार होंगे और उसी क्रम में अपनी सेवा प्रदान करेंगे। रथ पर चढ़ने के लिए ताल के जो वृक्ष के लकड़ी होती है उससे बनी हुई एक विशेष प्रकार की जो सीढ़ी होती है उसे चारमाल कहते हैं। तीनों रथों पर गजपति महाराजा अपनी सेवा पूरी कर ले उसके बाद वो चारमाल निकाल लिए जाएंगे और अश्वों को बांधा जाएगा और उसके बाद सारथी को बिठाया जाएगा, फिर रथों को खींचने का काम शुरू होगा, जिसका समय 4 बजे निर्धारित किया गया था। और जैसा कि लग रहा है कुछ देर में है अभी ये प्रक्रिया पूरी होगी तो वहां रथ को खींचने का काम भी बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। लेकिन उसका आंखों देखा हाल हम आपको सुना नहीं पाएंगे, हम आपको कुछ ही देर में दिल्ली ले चलेंगे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी कटक केंद्र द्वारा प्रस्तुत हुआ और श्री जगन्नाथ जी के रथ यात्रा का पूरी से सीधा प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से आप लोग सुन रहे थे। मुझे आशा है आप सभी को आनंद आया होगा, भगवान जगन्नाथ जी का आपको आशीर्वाद मिले। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे जय किशोर नागर जी, विनय कुमार सामंतराय जी, तकनीकी सहायता में मिहिर कुमार सामल और शंभुनाथ बेहरा थे। इसी के साथ मैं मोहन मजीठिया, मेरे साथी कमेंटेटर प्रोफेसर रजनीकांत नायक जी से उनके साथ मिलकर आपके साथ ये जो समय बिताया इसके लिए आभार व्यक्त करते हुए विदाई लेते हैं और अब आप लोगों को ले चलते हैं आकाशवाणी दिल्ली को। जय श्री जगन्नाथ।
1: अभी आप महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा

杜特里广播电台听众朋友们，现在我们播送 Justin 唱的 Cassie 民间歌曲，请收听。

印度特里广播电台，听众朋友们，这次普通话节目播送到这里，谢谢收听，再会。

0: खेल खिलाड़ी खेलों का आईना।
1: कार्यक्रम खेल खिलाड़ी लेकर एक बार हम फिर से हाजिर हैं। मैं हूं विजेता चतुर्वेदी और मेरे साथ है मेरे साथी
2: धर्मेंद्र।
1: जी हाँ, आज इस कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे खेलों की। सबसे पहले बात करेंगे हम फीफा 2026 की, जो रोमांच जो है चरम पर आ चुका है और अब लोगों को इंतजार है फाइनल मैच का। और आज क्या कुछ होने वाला है फीफा में, ये भी जानने के लिए हमारे श्रोता उत्सुक होंगे। इसके अलावा हम बात करेंगे इंडिया और इंग्लैंड के बीच में चल रहे सेकेंड ODI मैच की, मैदान पर क्या कुछ हो रहा है इसके बारे में भी आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में भी आज जानेंगे जूडो और स्विमिंग के बारे में और कैसा रहा है इतिहास इस खेल का हमारे भारत के नजरिए से, इसके भी इस पर भी हमारी नजर रहेगी। और जापान ओपन बैडमिंटन में क्या कुछ हो रहा है, साथ ही साथ एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप जकार्ता में क्या कुछ हमारे हाथ लगा है इस पर भी होगी चर्चा। और आइए अब सबसे पहले हम चलते हैं फीफा की तरफ और जानते हैं वहां पर क्या कुछ हो रहा है।

0: कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं।
1: कुछ ऐसी ही कहानी रही अर्जेंटीना और इंग्लैंड के बीच खेले गए फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल की। अटलांटा में खेले गए मैच के 85वें मिनट तक सब कुछ इंग्लैंड के पक्ष में दिख रहा था। टीम एक गोल से आगे भी थी और विरोधी टीम पर लगातार दबाव भी बना रही थी। फाइनल में जगह बनाने की तैयारी भी पूरी थी, लेकिन अंतिम 7 मिनट में सब कुछ पलट गया। पहले अर्जेंटीना की टीम को 86वें मिनट में शॉर्ट कॉर्नर मिला। कप्तान लियोनेल मेसी ने शॉर्ट कॉर्नर लिया और गेंद एंजो फर्नांडिस की तरफ बढ़ाई। फर्नांडिस ने करीब 25 गज की दूरी से दंदनता शॉट लगाया और

0: गेंद इंग्लैंड की रक्षा पंक्ति के साथ साथ गोलकीपर को चीरती हुई सीधे नेट में जा समाई।
1: मेसी
0: गोल भले ही मेसी के जरिए नहीं आया लेकिन उनके बेहतरीन पास पर हुए इस गोल के साथ स्कोर 1-1 हो गया। इस गोल ने वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना के खेमे में जैसे नई जान फूंक दी और इंग्लैंड के हौसले को पस्त कर दिया। गोल का स्वाद चखने के बाद अर्जेंटीना का खेल और ज्यादा आक्रामक हो गया। घड़ी की सुइयां तेजी से आगे बढ़ रही थी तभी इंजरी टाइम के 90+2 मिनट में मेसी ने फिर कमाल कर दिखाया। इस वर्ल्ड कप में सबसे अधिक गोल करने वाले इस खिलाड़ी ने दाईं ओर से गेंद को सटीक निशाने पर बॉक्स में भेजा। सब्स्टिट्यूट स्ट्राइकर लोटेरो मार्टिनेज जैसे इसी मौके का इंतजार कर रहे थे। वे तीर की गति से इंग्लैंड के डिफेंडरों से आगे निकले और सटीक हेडर के जरिए गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस तरह कप्तान मेसी के जादुई खेल से अर्जेंटीना ने 5 मिनट के भीतर मैच पलटते हुए 2-1 की बढ़त बना ली। इसके बाद इंग्लैंड के लिए वापसी के तमाम दरवाजे लगभग बंद हो गए। टीम ने बराबरी के लिए तमाम जद्दोजहद की लेकिन अर्जेंटीना की डिफेंस ने उनकी एक नहीं चलने दी। हालांकि मैच की शुरुआत इंग्लैंड के लिए ज्यादा बेहतर रही थी, इस सेमीफाइनल मैच की शुरुआत से पहले ही यह साफ हो गया था कि मुकाबला सिर्फ फुटबॉल का नहीं माइंड का भी होगा। इसी का परिणाम था कि मैच के तीसरे ही मिनट में इंग्लैंड के इलियट एंडरसन पर टैकल के बाद दोनों टीमों के खिलाड़ी आमने सामने आ गए। रेफरी को बीच बचाव करना पड़ा। पहले हाफ में कोई गोल तो नहीं हुआ लेकिन दोनों टीमों के खिलाड़ी कई बार भिड़े और फाउल की भरमार रही। मैच के 33वें मिनट में इंग्लैंड के लिए पहला मौका आया जब डेक्लन राइस की फ्री किक पर जॉन स्टोन्स ने हेडर लगाया। यह अलग बात है कि तब गेंद नेट में लगकर बाहर चली गई। इसके बाद 37वें मिनट में लियोनेल मेसी आगे बढ़े लेकिन इलियट एंडरसन ने उन्हें रोकने के लिए फाउल किया। इस पर एंडरसन को येलो कार्ड मिला। एक बार फिर आक्रमण की बारी थी अर्जेंटीना की। इस बार जब एंजो फर्नांडेज ने 38वें मिनट में बॉक्स के बाहर से शॉट लगाया तो गेंद इंग्लैंड के गोल पोस्ट के ऊपर से निकल गई। रफ खेल जारी रहा। 42वें मिनट में जूड बेलिंगम की जर्सी खींचने पर अर्जेंटीना के लिसांड्रो मार्टिनेज को भी कार्ड दिखाया गया। हाफ टाइम तक मैच बिना किसी गोल की बराबरी पर था। हालांकि हाफ टाइम की सीटी के बाद भी दोनों टीमों के खिलाड़ी रेफरी से बहस करते रहे। ब्रेक के बाद अर्जेंटीना ने तेज शुरुआत की। जूलियन अल्वारेज ने 48वें मिनट में पहला ऑन टारगेट शॉट लगाया जिसे जॉर्डन पिकफोर्ड ने शानदार तरीके से रोक दिया। मैच का पहला गोल इंग्लैंड की तरफ से 55वें मिनट में आया। हैरी केन के लंबे पास पर अर्जेंटीना का डिफेंस पूरी तरह क्लियरेंस नहीं कर सका जिसके बाद डेक्लन राइस ने गेंद मॉर्गन रोजर्स को दी। रोजर्स ने दाईं ओर से सटीक क्रॉस डाला जिस पर एंथनी गार्डन ने बॉक्स से आसान फिनिश किया।
1: Rogers is cross. Gordon coming in. Anthony Gordon. Right place. Right time.
0: ये टूर्नामेंट में गार्डन का पहला गोल था और इंग्लैंड 1-0 से आगे हो गया। हालांकि ये गोल खाने के बाद अर्जेंटीना के खिलाड़ी जैसे नींद से जागे और अटैकिंग गेम खेलना शुरू कर दिया। यह अलग बात है कि उन्हें पहले गोल के लिए मैच के 85वें मिनट तक इंतजार करना पड़ा लेकिन एक बार जो बढ़त बनाई तो फिर मुड़कर नहीं देखा।
1: 12th added minute and Argentina, the world champions, are going to the 2026 final. Messi inspired the comeback.
0: इस जीत से डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना लगातार दूसरी बार फीफा वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। खिताब के लिए 19 जुलाई को उसकी टक्कर अब स्पेन से होगी। ये अर्जेंटीना का 7वां वर्ल्ड कप फाइनल होगा। टीम इससे पहले 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 और 2022 में फाइनल खेल चुकी है। अर्जेंटीना ने 1978, 1986 और 2022 में विश्व कप का खिताब भी जीता है। अब उसके पास लगातार दूसरी बार और कुल 4th खिताब जीतने का मौका है। आइए जानते हैं कि अर्जेंटीना के सेमीफाइनल मैच और स्पेन के साथ फाइनल मुकाबले को लेकर क्या कहते हैं भारत के पूर्व खिलाड़ी अनादि बरुआ।
2: बहुत ही रोमांच का फुटबॉल मैच रहा और इतना अच्छा मैच हुआ। मैच जो होना चाहिए सेमीफाइनल में वैसे ही हुआ और दोनों टीमें बहुत अच्छा खेली। देखिए गोल तो होगा, दो टीम खेलेगी, एक टीम तो हारेगी, लेकिन दोनों का मनोबल इतना फास्ट था, इतना अच्छा खेले तो दाद देना पड़ेगा दोनों टीमों के कोच को, प्लेयर्स को। एक बहुत अच्छा सेमीफाइनल हुआ।
3: अर्जेंटीना की टीम ने आखिरकार जैसा इस टूर्नामेंट में प्रदर्शन किया है अंत के लम्हे में बाजी मार ली। क्या कहेंगे अर्जेंटीना के खेल को लेकर और मेसी के खेल को लेकर?
2: मेसी तो एक ऐसे प्लेयर है, आइकॉन प्लेयर है, अगर आपको कहा जा सकता है ये एक भगवान है फुटबॉल के। सबसे बड़ी बात होती है कि जब उनके पास बॉल आती है तो उनके जो विजन है वो कहाँ पास देंगे, किसको पास देंगे, और बॉल का मूवमेंट जो होता है, उनको जो टचेस होते हैं वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है और उसी के

0: ये बहुत बड़ी बात है। फुटबॉल में अगर हारने के बाद आप जीतते हैं तो इसे कहते हैं कि टफ कंपटीशन, बड़ा मुश्किल होता है, ऐसा नहीं हो पाता है
1: जी। और कल के जो खेल रहा उसमें अर्जेंटीना के खेल की क्या खासियत रही?
0: पहले हाफ में 15 मिनट में तो इंग्लैंड बहुत अच्छा खेली, एकदम अटैकिंग फुटबॉल खेली, लेकिन दाद देनी पड़ेगी इनकी, जो जितने मिडफील्डर डिफेंडर जो भी है अर्जेंटीना के, इन्होंने बॉल को मिडफील्ड पहले खेला, क्योंकि रणनीति थी कि पहले हाफ क्वार्टर में पानी वानी पीने के बाद सेकेंड क्वार्टर में हम खेलेंगे फास्ट, और सेकेंड हाफ में उन्होंने पोजिशन फुटबॉल बहुत बढ़िया रहा, पासिस बहुत अच्छे रहे, लेकिन गोल नहीं हो पाया। खेल के अंदर गोल बहुत जरूरी है, लेकिन मैच का जो मिडफील्ड प्लेयर था ज्यादातर मिडफील्ड में हुआ और थोड़ा रफ एंड टफ भी हुआ
1: जी। और अब फाइनल है स्पेन के साथ, अर्जेंटीना को फेवरेट मान रहे हैं, स्पेन को फेवरेट मान रहे हैं?
0: ये बहुत ही कठिन क्वेश्चन पूछा धर्मेंद्र जी आपने, लेकिन फेवरेट तो मेरी फेवरेट तो अर्जेंटीना है, क्योंकि अर्जेंटीना टीम एक ऐसी टीम है जो हारने के बाद गोल मारती है। रही बात स्पेन की, वो अभी तक अजय है, पता नहीं कितने मैचेस, 37 मैच खेल चुके एक भी, और 25 मैच जीते और 4 वो ड्रॉ किया, तो वो एक टीम ने एक भी गोल नहीं खाया, तो वो एक टीम बहुत अच्छी टीम है, तो बहुत अच्छा मुकाबला होगा सेमीफाइनल ये फाइनल, और ज्यादा रफ एंड टफ ना हो, क्योंकि काफी येलो कार्ड मिल चुके हैं, 14 येलो कार्ड मिल चुके हैं और बहुत सारे सॉरी 14 रेड कार्ड मिल चुके हैं और येलो कार्ड, लेकिन गोल काफी देखने को मिला इस वर्ल्ड कप में, 297 गोल देखने को मिला, तो जितने टीमें आ रही है 48 टीम्स आई, तो गोल देखने को मिला, तो लोगों का मन, जो लोग होते हैं वो मैच में गोल देखने आते हैं, उसके जो मैच का जो होता है आपका एक्सपीरियंस होता है गोल देखने का या गोल मारने का, तो वो लोगों के जहन में रहता है, तो इसलिए फुटबॉल बहुत बढ़िया फुटबॉल हो रहा है।
2: हम आपको बता दें कि सेमीफाइनल मैच के दौरान कई नए रिकॉर्ड भी बने। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कोलेनी अपनी टीम को लगातार दूसरे वर्ल्ड कप फाइनल में पहुंचाने वाले इतिहास के 7वें कोच बन गए। उनसे पहले ये उपलब्धि विटोरियो पोजो, हेलमुट शॉन, मारियो जागालो, कार्लोस बिलार्डो, फ्रांस बेकेनबाउर और डिडियर डेंशा के नाम रही है। अर्जेंटीना की टीम इतिहास में पहली बार लगातार 2 वर्ल्ड कप फाइनल खेलेगी। अर्जेंटीना ने वर्ल्ड कप इतिहास में अपना 6ठा सेमीफाइनल खेला और हर बार जीत हासिल की। इंग्लैंड को हराकर अर्जेंटीना ने लगातार 14वीं जीत दर्ज की। टीम सितंबर 2025 में इक्वाडोर से हारने के बाद एक भी मैच नहीं हारी है। अर्जेंटीना ने मौजूदा टूर्नामेंट में अब तक 19 गोल किए हैं। ये टीम का एक वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल करने का नया रिकॉर्ड है। अर्जेंटीना ने लगातार 14 वर्ल्ड कप मैचों में कम से कम 2 गोल किए हैं, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। 39 साल के लियोनेल मेसी इस वर्ल्ड कप में अब तक कुल 8 गोल कर चुके हैं और वे टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा गोल करने वाले खिलाड़ियों की गोल्डन बूट की दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं। अब दुनिया को इंतजार है जब ये तय हो जाएगा कि अगले 4 साल तक दुनिया का फुटबॉल बादशाह कौन बनेगा, वर्तमान चैंपियन अर्जेंटीना या एक बार वर्ल्ड कप जीतने वाला स्पेन।

0: और अब आइए बात कर लेते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मैच खेला जा रहा है। भारत इस सीरीज का पहला मैच जीतकर 1-0 से आगे है और टीम इंडिया की कोशिश होगी कि वो दूसरा मैच जीतकर 2-0 की बढ़त बना इस सीरीज को अपने नाम कर लें। और इस वक्त की अगर बात करें तो इंग्लैंड ने टॉस जीत लिया है और भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया है। स्कोर की अगर बात करें तो इस वक्त 12 रन बना चुके हैं बिना किसी नुकसान पर। और इस मैच के अगर प्लेइंग 11 की बात करें तो केएल राहुल गेम में नहीं है और उनकी जगह पर आए हैं ईशान। अब देखना ये होगा कि आज के मैच में क्या स्थिति रहती है, क्या ये मैच इंडिया जीतता है या फिर इंग्लैंड अपनी कोशिश बनाए रखता है।
1: बात चली है तो हम आपको ये बता दें कि 2027 का वनडे वर्ल्ड कप और 2028 का T20 वर्ल्ड कप नए फॉर्मेट में होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ICC के अनुसार वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के साथ नया 3-स्टेज फॉर्मेट लागू होगा जिसमें सेमीफाइनलिस्ट सुपर 7 राउंड से चुने जाएंगे। अब तक ये सुपर 6 से चुने जाते थे। दूसरी तरफ T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 की जगह सुपर 10 स्टेज खेला जाएगा। सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 2 नए एलिमिनेटर मुकाबले भी जोड़े गए हैं। ICC ने कल नए फॉर्मेट में बदलावों को मंजूरी दे दी है। इसके अलावा 2028 T20 वर्ल्ड कप के लिए नया क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर बनाया गया है।

0: इनका ऐलान एडिनबर्ग में आईसीसी की सालाना एजीएम के बाद किया गया। वनडे वर्ल्ड कप में 14 टीमों के मुकाबले के फॉर्मेट को 3 स्टेज में बदल दिया गया है। नए फॉर्मेट में सबसे पहले सुपर सीरीज खेली जाएगी। इसमें रैंकिंग की आखिरी 3 टीमें यानी 12, 13 और 14 राउंड रॉबिन फॉर्मेट में आमने सामने होंगी। इन मुकाबलों के बाद एक टीम दूसरे राउंड में पहुंचेगी। दूसरे राउंड में 12 टीमें ही होंगी। यहां 6-6 टीमों के 2 ग्रुप होंगे जिनमें कुल 30 मैच खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप की टॉप 3 टीमें और दोनों ग्रुप को मिलाकर एक बेस्ट यानी 7वीं टीम तीसरे राउंड यानी सुपर 7 में पहुंचेगी। सुपर 7 के सभी 7 टीमें आपस में राउंड रॉबिन फॉर्मेट में कुल 21 मैच खेलेंगी। इसके बाद टॉप 4 टीमें सेमीफाइनल में पहुंचेंगी, जहां नंबर 1 टीम का सामना नंबर 4 से और नंबर 2 का मुकाबला नंबर 3 से होगा। इनकी विजेता टीमें फाइनल खेलेंगी और फिर नया चैंपियन सामने आएगा। हम आपको बता दें कि 2 मेजबान साउथ अफ्रीका और जिम्बाब्वे तो सीधे एंट्री लेने में सफल रही हैं, जबकि रैंकिंग के आधार पर 8 टॉप टीमें भी क्वालिफाई करेंगी। इसके अलावा वर्ल्ड कप क्वालिफायर से आने वाली टीमें भी 14 में शामिल होंगी। तीसरे होस्ट नामीबिया को भी क्वालिफायर खेलना होगा। उधर T20 वर्ल्ड कप के नए फॉर्मेट में ग्रुप स्टेज में 4-4 टीमों के 5 ग्रुप होंगे। इनके बीच कुल 30 मैच खेले जाएंगे। हर ग्रुप से टॉप 2 टीमें अगले दौर में पहुंचेंगी, जिसके बाद कुल 10 टीमें सुपर 10 स्टेज में खेलेंगी। सुपर 10 में 5-5 टीमों के 2 ग्रुप होंगे और कुल 20 मैच खेले जाएंगे। दोनों ग्रुप की टॉप टीमें सीधे सेमीफाइनल में पहुंचेंगी। बाकी 2 स्थानों के लिए एलिमिनेटर मुकाबले होंगे, जिसमें एक ग्रुप की दूसरे स्थान की टीम का सामना दूसरे ग्रुप की तीसरे स्थान की टीम से होगा। दोनों एलिमिनेटर के विजेता सेमीफाइनल में पहुंचेंगे और इसके बाद फाइनल खेला जाएगा। तो क्रिकेट की ये थी बात, और अब बात कर लेते हैं कॉमनवेल्थ गेम्स की।
1: The Commonwealth Games.
0: श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स

0: एताला महाराष्ट्र से ये एसएमएस हमें भेजा है शंकरलाल जयसवाल और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।
1: रामलंगर दिल्ली से हमारे पास में एसएमएस आया, भेजने वाले हैं रामनाथ प्रजापति और इनका पूरा परिवार। गांव मुरादगढ़ जिला करनाल हरियाणा से फरमाइश भेज रहे हैं रमेश कुमार कंबोज और इनका पूरा परिवार। आदर्श नगर मेलौट पंजाब से हमारे पास में फरमाइश आई है, भेजने वाले हैं राज शर्मा और इनका पूरा परिवार। नूर महल महसौल सीतामढ़ी बिहार से फरमाइश भेज रही है मुसरत जहानाज और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है हनुमानगढ़ टाउन राजस्थान से भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश हमारे पास में आई है नगर निगम वार्ड नंबर 28 नाज मंजिल महसौल सीतामढ़ी से भेजने वाले हैं अकरम हुसैन प्रिंस डाक बाबू और इनका पूरा परिवार। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से फरमाइश भेज रहे हैं पंजाब रामटेक और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है फातिमा कॉलोनी श्रीरामपुर महाराष्ट्र से भेजने वाले हैं नासिर शेख। गोविंदपुरा अहमदनगर से फरमाइश भेज रहे हैं जुनेद मुजावर और इनका पूरा परिवार। ये फरमाइश आई है गांव खोकरावली श्रीगंगानगर से भेजने वाले हैं विनोद बारशा और इनका पूरा परिवार।
0: गांव गोविंदगढ़ माजीवाला से हमें राजस्थान से ये फरमाइश भेजी है राजू टुटेजा खुशदिल और इनके परिवार के सभी सदस्य। ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से भी हमें फरमाइश प्राप्त हुई है और भेजने वाले भाई हैं सत्येंद्र कुमार चंसौली और इनके परिवार के सदस्य। और ये हमें बलौद छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है देव शंकर तामूरिया और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये फरमाइश हमारे पास आई है मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से, भेजने वाले हैं अभिजीत गवनकर राही और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर इंद्रपाल शर्मा उनके साथी की आवाज में ये रागनी और किस्सा होगा महाभारत।

दादा रघुनाथ की कविताई और भाई कर्ण कुंती संवाद महाभारत के किस्से से, बहुत ही मार्मिक रागनी, बहुत ही मर्म था इस रागनी में, हमने अपने सभी भाई बहनों को सुनवाई अतुल भाई।

0: इंद्रपाल शर्मा की आवाज में, और जो अगले हमारे आज के कलाकार हैं
1: वो है नीलम चौधरी। इनके लिए भी हमारे पास में SMS आ गए। पायल बहन, ये SMS मिला है हमें भोला कॉलोनी गरौड़ा जिला करनाल हरियाणा से भेजने वाले हैं विजेंद्र कुमार जयजान और उनका पूरा परिवार। और ये SMS हमारे पास में है गांव चौहलदा बागपत उत्तर प्रदेश से भेजने वाले हैं संजय ढींगिया और उनका पूरा परिवार। नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से SMS भेज रहे हैं PS नाहवकर और इनका पूरा परिवार। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से SMS मिला है भेजने वाले ओमप्रकाश राय और उनका पूरा परिवार। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से भी हमारे पास में SMS आया भेजने वाले प्रतीक राय और उनका पूरा परिवार।
0: ये SMS हमें प्राप्त हुआ है सदूल शहर राजस्थान से, भेजने वाले भाई हैं राम कुमार रेवाड़ और चंद्रकला रेवाड़। जसपुर उत्तराखंड से भी हमें SMS भेजा है रियासत हुसैन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये SMS हमें भेजा है बिलासपुर हिमाचल प्रदेश से सुरेश ग्रोवर और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने। ये SMS हमें प्राप्त हुआ है कुलाम रोड हरगोविंद नगर नवा शहर पंजाब से, भेजने वाले भाई हैं सुरेंद्र संतूर और इनके परिवार के सभी सदस्य। ये SMS हमें जनकपुरी सहारनपुर से प्राप्त हुआ है, भेजने वाले भाई हैं जॉन डिकेस्ट्रो और इनके परिवार के सभी सदस्य।
1: तो सुनवाते हैं सभी की फरमाइश पर नीलम चौधरी की आवाज़ में ये राग।

0: अतुल भाई, चंद्र किरण के किस्से की इस रागनी के साथ ही हमारा आज का ग्राम संसार कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। सुनने वाले सभी बहन भाइयों को हमारी राम
1: राम
0: राम।
1: राम। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अल नीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
1: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूँ ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि सरकार का प्रयास एक ऐसे भारत का निर्माण करना है जहां सीमाएं न केवल सुरक्षित हों बल्कि अच्छी तरह से जुड़ी हुई भी हों। उन्होंने कहा कि सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि विकास और राष्ट्रीय सुरक्षा एक साथ आगे बढ़ें। नई दिल्ली में सीमा सड़क संगठन की तकनीकी संगोष्ठी में श्री सिंह ने कहा कि उन्नत अवसंरचना हमेशा से विकसित सभ्यता की पहचान रही है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरगन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत सरकार का लक्ष्य है और इससे भारत का एक वैश्विक शक्ति बनेगा। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में यह मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशीय तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मलिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है।

ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष सीपी राधाकृष्णन से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपा। इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंद्र शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश सिंह बराइक ने इस्तीफा दिया था। बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। ओडिशा के पुरी में आज विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा के दौरान भगदड़ में एक श्रद्धालु की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने के समारोह के दौरान श्रद्धालुओं की अत्यधिक भीड़ के कारण यह दुर्घटना हुई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 20 ओवर में 2 विकेट पर 110 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
1: राम
0: राम राम।
1: राम।
0: तो पायल बहन, हम फिर से हाजिर हो गए हैं कृषि जगत कार्यक्रम लेकर के। और अपने इस कार्यक्रम में आज हम अपने सभी किसान बहन भाइयों के लिए लेकर के आए हैं भाई बहुत सारी जानकारी, और भाई उन्हें साझा भी करेंगे। लेकिन हमारे ग्राम संसार कार्यक्रम में हमारे कुछ श्रोताओं के SMS रह गए थे, जिनमें हमें यह SMS जो है नीलम चौधरी के लिए मिला था, रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से भेजने वाले थे अखिलेश कुमार साहू और इनका पूरा परिवार। ये SMS हमारे पास में आया, सूरतगढ़ राजस्थान से भेजने वाले थे भूपेंद्र मिशन और इनका पूरा परिवार। गांव कलाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़ राजस्थान से SMS मिला था विक्रम कडवासा और उनके पूरे परिवार का। अनारकली बाजार जगराव पंजाब से फरमाइश भेज रहे सुनील पाठक और इनका पूरा परिवार। गांव चौधरीवास हरियाणा से फरमाइश भेज रहे थे मांगेराम सतौड़ और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था कनेरा मोहल्ला पटियाला से भेजने वाले थे मुकेश बत्ता और इनका पूरा परिवार। और ये SMS हमें मिला था पहाड़गंज मुल्तानी ढांडा से भेजने वाले थे अनिल मोहन उनका पूरा परिवार। पटेल नगर मेलोड से भी हमारे पास में SMS आया था, भेजने वाले थे डॉक्टर रमेश कुमार जाजोरिया और इनका पूरा परिवार। बक्सर बिहार से सफुद्दीन अंसारी, डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी और सारिमपुर बक्सर से राजेश डी अंसारी का भी हमें SMS मिला था। और ये फरमाइश हमारे पास में आई थी धनौरी तेलीवाला उत्तराखंड से भेजने वाले थे निसार सलमानी और उनका पूरा परिवार। और ये समय समय मिला था गांव मायचा ग्रेटर नोएडा गौतम बुद्ध नगर से भेजने वाले थे कंची शर्मा, सतपाल शर्मा, मास्टर बनी सिंह, देवेंद्र सिंह, सर्विस गिरी महाराज, कुमारी तनु और पवन शर्मा।
1: अतुल भाई, हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने कार्यक्रम में जितने भी हमारे श्रोता हैं हमें SMS भेजते हैं तो सबको हम शामिल कर सकें। और देखिए, हमारा आज का जो कृषि जगत कार्यक्रम है इसके अंतर्गत आज हम एक रेडियो रिपोर्ट अपने सभी बहन भाइयों को सुनवाएंगे, जो कि है ICAR का 98वां स्थापना दिवस। और इसमें स्वर जो है वो कमल किशोर का है, सहयोग दिनेश कुमार और संयोजक जो हैं वो हैं शिवनंदन लाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पराशर।
0: तो लेते हैं ये जानकारी।
2: 16 जुलाई 2026 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने अपना 98वां स्थापना दिवस नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर NASE में उत्साहपूर्वक मनाया। कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई केंद्रीय मंत्री, वैज्ञानिक और कृषि विशेषज्ञ और किसान मौजूद रहे। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस समारोह में सबसे पहले ICAR में कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग के अपर सचिव डॉक्टर ज्ञानेंद्र देव त्रिपाठी ने सभी का स्वागत करते हुए कहा,
3: नमस्कार। आज जब हम यहाँ पर ICAR के

0: स्थापना दिवस पर एकत्रित हुए हैं, तो इस गौरवशाली अवसर पर उपस्थित सभी अतिथियों, वैज्ञानिक साथियों और देश के अन्नदाता किसानों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का दिन सिर्फ एक उत्सव नहीं, बल्कि यह उस यात्रा का उत्सव है जिसमें भूख की समस्या से जूझते भारत को अन्न निर्यातक भारत बनाने का एक लंबी कहानी जो है बनी हुई है, और यह उत्सव उस चीज को सेलिब्रेट कर रहा है। हरित क्रांति के जनकों से लेकर आज की प्रयोगशालाओं तक आईसीआर के हर वैज्ञानिक ने इस देश की मिट्टी में सपनों की फसल बोई है। 2029 में आईसीएआर अपना जन्म शताब्दी वर्ष मनाएगा। 100 साल की तपस्या और यह अवसर एक बड़े राष्ट्रीय संकल्प से भी हमें जोड़ता है, जो कि है विकसित भारत 2047। और जब देश 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेगा, तब एक आशा रखी गई है कि कृषि और प्राथमिक क्षेत्र $6 ट्रिलियन भारत की इकोनॉमी में देगा। इस आंकड़े को अगर हमें पाना है तो उसके लिए जो भारत का सपना है कि किसान को समृद्ध होना होगा, गांव आत्मनिर्भर होगा, कृषि सिर्फ जीविका नहीं बल्कि समृद्धि का इंजन बनेगी। आईसीआर का शताब्दी वर्ष और भारत विकसित भारत का लक्ष्य दोनों एक ही धागे से बंधे हैं। जब हमारा संस्थान आत्मनिर्भर होगा तभी हमारा किसान समृद्ध होगा, और जब किसान समृद्ध होगा तभी 2047 का $6 ट्रिलियन का स्वप्न साकार होगा।
1: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक डॉक्टर एमएल जाट ने परिषद की 98 वर्षों की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि
2: 97 साल की जर्नी काफी अद्भुत है। यदि हम विकसित भारत की कल्पना करते हैं जिसमें कृषि का बहुत बड़ा अहम योगदान, $6 ट्रिलियन इकोनॉमी में कॉन्ट्रीब्यूशन, उसमें जाने के लिए पहले हमने चिंतन मनन करना होगा कि हमारी समस्याएं क्या है, हमारे चैलेंजेज क्या है, और उन्हीं चैलेंजेज को ध्यान में रखते हुए हमारा सारा अनुसंधान का कार्य होना चाहिए, और उसके लिए डिमांड ड्रिवन रिसर्च एंड इनोवेशन, दूसरा है कि टेक्नोलॉजिकल मॉडर्नाइजेशन, तीसरा है कि सस्टेनेबल ट्रांजिशन, कि ट्रांजिशन करें, ग्रोथ हो हमारी लेकिन सस्टेनेबल हो, और एक पॉलिसी एंड मार्केट का जो इश्यू है उसको हम एड्रेस करें। यदि इन सब चीजों को लेके चलेंगे तो हम उस दिशा में आगे बढ़ेंगे। मैं ये बताना चाहता हूं कि देश ने कितनी प्रगति की है, साइंस ड्रिवन इंक्रीमेंटल रेजिलियंस, और मैं सेक्टर वाइज बताना चाहता हूं, यदि क्रॉप सेक्टर को देखते हैं तो 2001-2 से 2014-15 जहां पे 40 मिलियन टन का उन 12 साल में इजाफा हुआ था जो 19% है, 14-15 से लेके 25-26 मतलब अब तक का वो 49%, जिसका बेस भी हाई था, वो 124 मिलियन टन है, मतलब 3 गुना से भी ज्यादा पिछले 12 साल में अचीव किया है देश ने, और ये इसमें विज्ञान का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। और पिछले एक साल की हम बात करते हैं तो 19 मिलियन टन फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बढ़ा है जिसकी वैल्यू 60,000 करोड़ है। दूसरा हॉर्टिकल्चर का सेक्टर, पिछले 12 साल में लगभग 97 मिलियन टन हॉर्टिकल्चर का प्रोड्यूस बढ़ा है, और पिछले एक साल की बात करें तो 7 मिलियन टन जिसका वैल्यू 20,000 करोड़ है। तीसरा हम डेयरी और लाइव स्टॉक सेक्टर की हम बात करें तो चाहे मिल्क का प्रोडक्शन हो, मीट का प्रोडक्शन हो, एग का प्रोडक्शन हो, काफी तेजी से बढ़ा है, और पिछले एक साल का यदि इकोनॉमिक टर्म में कंट्रीब्यूशन देखें इस सेक्टर का तो 50,000 करोड़ है। फिशरी सेक्टर बहुत तेजी से बढ़ा है, 2014 से यदि हम कंपेयर करें तो डबल से भी ज्यादा हो गया, और यदि पिछले एक साल का प्रोडक्शन इंक्रीज की इकोनॉमिक वैल्यू देखें तो 40,000 करोड़ है। तो इन 4 सेक्टर का सिर्फ प्रोडक्शन इंक्रीज का जो कंट्रीब्यूशन देखते हैं देश में तो 1,70,000 करोड़ है, बाकी कंट्रीब्यूशन अलग है। पिछले एक साल में हम यदि क्रॉप सेक्टर में बात करें तो 44 क्रॉप की 386 वेराइटीज ये हमने डेवलप की है, जिसमें लगभग 94% क्लाइमेट रेजिलियंट है, 29 वेराइटीज हमारी बायोफोर्टिफाइड है, नया साइंस करने के लिए आगे बढ़ाने के लिए 111 जेनेटिक स्टॉक रजिस्टर किए हैं, जितना ब्रीडर सीड की डिमांड थी उससे कहीं ज्यादा ब्रीडर सीड प्रोडक्शन किया है हमने। हॉर्टिकल्चर सेक्टर की बात करें तो 117 वेराइटीज 57 हॉर्टिकल्चर क्रॉप की हमने रिलीज की है, उसका प्लांटिंग मटेरियल, उसका सीड, सारी चीजों में काफी तेजी से इजाफा हुआ है। यदि एनिमल सेक्टर की बात करें तो बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं, एनिमल हेल्थ सबसे इंपॉर्टेंट है, और पशुपालन मंत्रालय के साथ में आईसीआर का एनिमल साइंस डिवीजन साथ मिलकर ये काम कर रहा है, टेक्नोलॉजी को किसान तक ले जाना, एक्सटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट है, लास्ट माइल डिलीवरी। और मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं,

0: एक जून से 30 जून जो खेत बचाओ अभियान चला, उस अभियान के दौरान 1657 टीम 728 जिलों में 1,31,000 से ज्यादा कार्यक्रम करके 90,000 लाइव डेमोन्स्ट्रेशन करके और 5 करोड़ किसानों तक सीधा पहुंचना मुझे लगता है एक बहुत बड़ी उपलब्धि है।
1: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा विकसित 38 नई फसल किस्में और बागवानी क्षेत्र की 5 नई किस्में जारी की गईं। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने कहा,
2: मेरा अपना सौभाग्य कि देश की प्रतिष्ठित संस्था ICAR के 98 स्थापना दिवस के अवसर पर मुझे उपस्थित रहने का मौका मिला। देश की खुशहाली का रास्ता खेत खलिहान से होकर जाता है और इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रधानमंत्री भारत विकसित राष्ट्र जो 2047 का संकल्प लिया है वो कृषि और कृषि से जुड़े हुए अन्य माध्यम के बिना भारत विकसित नहीं हो सकता है। और इसके पीछे प्रधानमंत्री जी ने जो किसान की आय दुगना करने का संकल्प लिया है वो पुरानी परंपरागत तरीके से यदि खेती से आय दुगनी हो रही होती तो यह अरबपतियों का देश होता, हम वर्षों से खेती ही कर रहे हैं। खेती के ऊपर संकट कितने होते हैं, हम उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुअर पालन, बकरी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, औषधि खेती, प्राकृतिक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग, ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर इरीगेशन, नैनो यूरिया, नैनो DAP का इस्तेमाल करके लागत भी कम कर सकते हैं और इसके पीछे अनुसंधान का बड़ा महत्व है।
1: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने कृषि विकास में वैज्ञानिक अनुसंधान की भूमिका को रेखांकित करते हुए कहा,
3: सबसे पहले मैं 98 स्थापना दिवस के अवसर पर किसानों की तरफ से, मजदूरों की तरफ से कृषि विभाग के सभी वैज्ञानिक भाइयों को, सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को लाख लाख बधाई देता हूं। दूसरी बधाई मैं देना चाहता हूं जो हताश हो गए थे वो कर्मचारी भाई जिसको आज नियुक्ति पत्र मिलने का काम किया है, इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूं कि अंतिम समय में उन्होंने इस पर ध्यान दिया, उसको निराश से की तरफ से खुशहाली का पत्र दिया, इसके लिए इनको बहुत बहुत बधाई। कृषि विभाग में और यहाँ के वैज्ञानिकों ने और किसानों ने जो मिल के उन्नति और प्रगति का काम किया है, मैं उनको बहुत बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अन्न के बिना भी लोग सहते थे, ये मुसीबत था, लेकिन मैं यह कह सकता हूँ इसके लिए भारत के 145 करोड़ लोगों की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को लाख बधाई देना चाहता हूँ। सिर्फ हंगामा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है आगे बढ़ते रहना चाहिए और हमारे दिल में न सही तेरे दिल में है आग, जहां आग जलनी चाहिए। और श्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है 1947 में, इसको आगे बढ़कर इनके हिम्मत को आगे बढ़ाने का काम करे।
1: केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी ने मिट्टी के स्वास्थ्य संरक्षण और संतुलित पोषण प्रबंधन के महत्व पर अपने उद्बोधन में कहा,
4: आज भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का 98वां ये स्थापना दिवस है, परंतु आज के दिन मैं हमारे वैज्ञानिकों, साइंटिस्टों, हमारे अन्नदाता किसान भाइयों और बहनों को मैं प्रणाम करता हूं जिनके ताकत के पीछे आज हम अनाज में आत्मनिर्भर हो गए हैं, परंतु अभी भी चुनौतियां कम नहीं है। आज जलवायु परिवर्तन की बात हो, क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हमें सोइल हेल्थ के ऊपर भी ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने सोइल हेल्थ कार्ड चालू किया था, परंतु आज भी हमारे किसान भाई और बहन सोइल हेल्थ कार्ड पे उतना ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो आज 98 इस स्थापना दिवस पर हम सबको प्रण करना है कि हम सोइल हेल्थ कार्ड के ऊपर विशेष तौर से ध्यान दें। अभी खेत बचाओ अभियान चल रहा है वही पूरे देश भर में, क्योंकि किसान की कृषि और पशुधन ये दो ही उसके आधार हैं। इसलिए हम सबको मिलकर, क्योंकि पहले जय जवान का नारा लगा था लाल बहादुर शास्त्री जी ने, पहले जय जवान का, फिर जय किसान का नारा लगा, फिर अटल जी ने जय विज्ञान का नारा लगाया, हमारे देश के प्रधानमंत्री

0: मोदी जी ने जय अनुसंधान का नारा दिया, तो जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान और जय अनुसंधान, ये चार हमारे स्तंभ है। यदि ये मजबूत होंगे तो हमारा देश आत्मनिर्भर बनेगा और ये हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा।
1: केंद्रीय पंचायती राज तथा मत्स्य पशुपालन और डेयरी विकास मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह पशुपालन और मत्स्य पालन के क्षेत्र में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के योगदान की सराहना करते हुए कहा,
2: आज हमारा देश दूध के उत्पादन में विश्व में पहले स्थान पर है, मछली के उत्पादन में विश्व में दूसरे स्थान पर है। ये टेक्नोलॉजी का और जो आपकी भागीदारी है उसका ये परिणाम है। ICAR और NFDB हमारा जो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड है, वो दोनों मिलके कई काम कर रहे हैं और उन कामों में साइंटिफिक एक्वाकल्चर, फिश हेल्थ मैनेजमेंट, सीवीड प्रोडक्शन, मैरीकल्चर, ऑर्नामेंटल फिश, ये सारे चीज कर रहे हैं। अब स्किल का डेवलपमेंट किया जाना, लॉजिस्टिक में सुधार के लिए, क्योंकि अभी हम लोगों ने एक्सपोर्ट का एक पॉलिसी बना रहे हैं, फिशरी डिपार्टमेंट पूरे एक्सपोर्ट आधारित PMMSY2 का जो फ्रेमवर्क तैयार हो रहा है वो पूरा एक्सपोर्ट आधारित। हमारा आज एक्सपोर्ट 62,000 करोड़ रुपए का, 2024-25 में हमने 62,408 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट किया था। पशुपालन के क्षेत्र में आज अपने बहुत अच्छा काम किया है, अफ्रीकन स्वाइन फ्लू का आपने वैक्सीन लॉन्च किया यहाँ से। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, अब अगर हम लोग इसका उपयोग करेंगे तो हम काफी करेंगे। आपके 18 पशु केंद्र हैं, आपके विश्वविद्यालय हैं, उसके करीब करीब 84 पशु चिकित्सा कॉलेज हैं उसके अधीन, इन सबों को इसमें लगाने की जरूरत है। इनको टेक्निकल डाइवर्सिफिकेशन, शिक्षा से पशु स्वास्थ्य के नियंत्रण में सहायता मिलती है, तो इसलिए इसको ज़्यादा मोटिवेट करने के लिए, इसको एडुकेट करने के लिए ज़रूरत है। और इसलिए कि आज का इस MOU और हम समझते हैं कि आने वाले समय में पशुपालन, मत्स्य पालन और ICAR मिलके इस देश की उन्नति में, इस देश की आर्थिक प्रगति में बहुत योगदान करने का अगर समन्वय के साथ काम किया जाए तो इस आर्थिक प्रगति में हम देश को उन्नत बनाने में बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं।
1: इस अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विभिन्न संस्थाओं के बीच एक महत्वपूर्ण MOU समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर 150 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी वितरित किए गए। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा पिछले 98 वर्षों में भारतीय कृषि को नई दिशा देने में अहम भूमिका निभाई, इस पर अपने विचार रखते हुए कहा,
3: 98 वर्षों में ICAR के वो वैज्ञानिक आई डॉक्टर स्वामीनाथन जी को मैं प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूँ, जिन्होंने भारतीय कृषि को असाधारण ऊंचाई दी है। सारे वैज्ञानिकों को प्रणाम, उनका अभिनंदन। आज 98 स्थापना दिवस पर मुझे कहते हुए प्रसन्नता है, हमारे किसानों की मेहनत, किसान अगर कृषि की आत्मा है तो वैज्ञानिक मस्तिष्क है, इनके प्रयत्नों के कारण जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल देश में 376 मिलियन टन खाद्यान्न और 377 मिलियन टन बागवानी और 19 मिलियन टन मछली में भी उत्पादन दर्ज किया है, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। इस एक साल में ICAR ने जो काम किया है, 44 फसलों की 386 नई किस्में विकसित की है, और मुझे ये बताती हुई खुशी है कि इनमें से 94% जलवायु अनुकूल है, क्लाइमेट रिजिलेंट है। किसान के साथ हमारे वैज्ञानिक अब खेत में भी जाते हैं, पिछले साल विकसित कृषि संकल्प अभियान, इस साल खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत इस साल हमारे 1657 वैज्ञानिक टीमों ने 728 डिस्ट्रिक्ट्स में पहुंचकर लगभग 1 करोड़ किसानों से संवाद किया, जिन जिलों में अलनीनो का संभावित प्रभाव है वहाँ भी किसानों से चर्चा की। आज हमने 43 उन्नत किस्में, 17 नई टेक्नोलॉजी और उत्पाद और 14 अलग अलग तरह के प्रकाशन राष्ट्र को समर्पित किए हैं। मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि निर्यात गुणवत्ता वाले आम की तकनीकी, सुअरों के लिए स्वदेशी अफ्रीकन स्वाइन फीवर का टीका जो

0: अभी तक हमारे पास नहीं था, आज वो भी समर्पित किया है राष्ट्र को। भारत का डिजिटल सॉयल मानचित्र मैप और छोटे किसानों के लिए किफ़ायती कपास हार्वेस्टर भी शामिल हैं। आज कई MOUs भी साइन हुए हैं ताकि जो नई तकनीकियाँ हैं उनका कॉमर्शलाइजेशन होकर जल्दी किसानों तक पहुँच सके। और 100वें स्थापना वर्ष को ध्यान में रखते हुए 2 साल बाद है मिशन ICR 100 के अंतर्गत हम 100 राष्ट्रीय संकल्पों पर काम करेंगे जो हम तय करेंगे। 100 यंग साइंटिस्ट ग्रांट चैलेंज भी हम प्रारंभ करेंगे जिसमें हमारे युवा वैज्ञानिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, जीन एडिटिंग, प्रिसिजन एग्रीकल्चर और क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर जैसे भविष्य के क्षेत्रों में इनोवेशन के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा करेंगे। हम 100 जलवायु स्मार्ट विलेज भी विकसित करेंगे जो क्लाइमेट रिजिलेंट, टिकाऊ और आधुनिक कृषि के आदर्श मॉडल बनेंगे। हम ICR के 100वें स्थापना वर्ष तक 10 करोड़ किसानों तक हमारी वैज्ञानिक तकनीकें पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है विकसित भारत 2047, उसके लिए जो लक्ष्य तय किए हैं कृषि उत्पादन 2.1 बिलियन टन, बागवानी हॉर्टिकल्चर 777.7 मिलियन टन, दूध 628 मिलियन टन और मछली उत्पादन 40 मिलियन टन तक पहुँचे, इस लक्ष्य को लेके वर्षवार बांटेंगे कि कितना हमको इस लक्ष्य को प्राप्ति के लिए एक साल में काम करना है, उसका हम प्रयत्न करेंगे। मैं ICR के 98 स्थापना दिवस पर फिर एक बार अपने सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूं, धन्यवाद।
1: इसके साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के 98वें स्थापना दिवस पर आधारित ये रेडियो रिपोर्ट यहीं संपन्न होती है। स्वर कमल किशोर बड़ाइक का, प्रस्तुति सहयोग रहा दिनेश कुमार का, संयोजन था शिवनंदन लाल का और इस कार्यक्रम को आपके लिए प्रस्तुत किया तुषार पाराशर ने।
2: तो पायल बहन, अभी हमारे किसान भाई जानकारी ले रहे थे ICAR के 98वां जो स्थापना दिवस आज मनाया गया है उसके बारे में ये जानकारी दी जा रही थी रेडियो रिपोर्ट के माध्यम से, जिसमें स्वर था कमल किशोर का और सहयोग था दिनेश कुमार का और इसके संयोजक थे शिवनंदन लाल और प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर। निश्चित रूप से देखिए हमारे जो किसान भाई हैं उनके लिए हमारे जो कृषि वैज्ञानिक हैं पायल बहन, उन्होंने अद्भुत योगदान दिया है हमारी कृषि को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो उन्नत किस्में तैयार की हों या अभियंत्रिकी के क्षेत्र में जो है हमारे किसान भाइयों के लिए विशेष योगदान रहा हो।
3: आपने सही कहा अतुल भाई, क्योंकि देखिए नए नए जो आविष्कार हैं, नए नए तकनीकी आविष्कार हैं और किस्मों से संबंधित जो बातें हैं और भाई पशु हर क्षेत्र में हर क्षेत्र में जो है वो ICAR जो है कृषि से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उसमें अच्छे अच्छे अनुसंधान कर रही है, कार्य कर रही है और भाई सरकार द्वारा भी कुछ ऐसी ही बढ़िया योजनाएं जो लेके आई जाती हैं हमारे किसानों के लिए जो जिससे वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। ऐसी ही एक योजना है अतुल भाई जिसे कहते हैं गोवर्धन योजना। इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो ग्रामीण भारत में पशुओं के गोबर और ठोस जैविक कचरे को बायोगैस और जैविक खाद में बदलना है। इससे गांवों में स्वच्छता बढ़ती है, पर्यावरण सुरक्षित होता है और किसानों का तथा उद्यमियों के लिए आय व रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं।
2: बिल्कुल, देखिए इस योजना के तहत जो आपने बताया है कि पशुओं के गोबर, गोमूत्र और खेतों के जो जैविक कचरे का उपयोग करके वर्मी कंपोस्ट खाद तैयार कर लेते हैं पायल बहन, जिससे जो है जो मिट्टी जो खाद बनती है उससे जो मिट्टी की जो गुणवत्ता है वो सुधरती है और जो उसकी मिट्टी की जो जलधारण क्षमता जो है वो भी बढ़ती है और फसल की जो उपज होती है उसमें भी जो है सुधार होता है।
3: बिल्कुल, और देखिए इसके लाभ बहुत सारे हैं अतुल भाई, जैसे कि भाई आप कचरे से, वेस्ट से यानी कि कचरे से आप धन बना सकते हैं, गांव स्वच्छ हो सकते हैं, पर्यावरण संरक्षण हो सकता है, ग्रामीण लोगों की जो आय है उसमें वृद्धि हो सकती है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि हमारे किसान भाई बहन लाभ उठा सकते हैं, इस योजना से भी भरपूर लाभ उठा सकते हैं।
2: देखिए किसानों को गाय के गोबर से ये केचुआ खाद भी हमारे जो किसान भाई वो बना सकते हैं और बहुत सी ऐसे खाद तैयार हमारे किसान भाई कर सकते हैं जो अपने खेत के अंदर डाल सकते हैं। और ये तो रही जानकारी भाई गोवर्धन योजना के बारे में, और एक बात और कहना चाहते हैं कि पायल बहन के बिल्कुल बरसात का मौसम शुरू हो चुका है और भाई अपने पशुओं की विशेष देखभाल करें क्योंकि इसी मौसम में जो है पशुओं का जो है मुंहपक और खुरपका का जो रोग है वो भाई आ जाता है। तो कोशिश करें कि अपने पशुओं का भाई चिकित्सक से जो है टीकाकरण अवश्य कराएं और समय पर ये जानकारी भी लेते रहें कि आपके पशु को कोई अन्य कोई गंभीर बीमारी तो नहीं है।
3: बिल्कुल, आप इसके लिए अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र जो है, पशु स्वास्थ्य केंद्र है, वहाँ जाकर जो है बात कर सकते हैं, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2: और इस अब समय भी हो चला है अपने सभी किसान बहन भाइयों से विदा लेने का, तो कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले हमारे सभी किसान बहन भाइयों को हमारी
3: राम राम।
2: इस कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल और प्रस्तुत करता है तुषार पारासर।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अभी आपने आनंद लिया कार्यक्रम कृषि जगत का, और अब से कुछ ही देर यानी ठीक 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। कृपया प्रतीक्षा कीजिए। ये आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब वक्त है कार्यक्रम गजल और कव्वाली का। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ, आपकी दोस्त तलत। गजल हो या कव्वाली हो, ये एक रूहानी कैफियत बयान करने वाली दोनों विधाएं हैं। गजल में महबूब है तो कव्वाली में वो महबूब जिसे हम ईश्वर कहते हैं, वो एक शक्ति जिसे हम सब मानते हैं। और गजल वो शक्ति जो हमें मोहब्बत करने का एहसास दिलाती है, और मोहब्बत जब अपने आखिरी पड़ाव पर आती है तो वो मोहब्बत बन जाती है भक्ति। तो यही कुछ मिला जुला अंदाज है गजल और कव्वाली का। तो आपके लिए ये पहली कव्वाली फिल्म मकबूल से।

भी एहसास हो जाए कि वो आपके रूबरू है, और लेकिन ये गुमान फिर भी रहे कि शायद वो दूर है, तो ऐसी सूरत में खत जो है वो बहुत कीमती शय होती है। खत वो जरिया होता है जब दिल से दिल की बात एक कागज़ पर उतार दी जाती है। लेकिन आजकल टेक्नोलॉजी का ज़माना है, व्हाट्सएप है, इंस्टा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आप अपने दिल की बात लिखते हैं और अपने महबूब तक पहुँचा दें। लेकिन जो मज़ा वो पुरानी रिवायतों में है, वो नई में नहीं।

जब खत का जवाब आए और उस जवाब में वादा हो अगली मुलाकात का, और जब वो वादा वफा ना हो, तब दिल और तेजी से धड़कता है और दिमाग जो है वो और मायूस हो जाता है। तो ये अब इस कार्यक्रम की आखिरी गजल मैं कहूंगी, और इस गजल को गाया है मोहम्मद रफी साहब ने। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। नमस्कार।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही देर बाद यानी ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं करिश्मा राय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रखरखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित यह रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इस रेलगाड़ी के शुरू होने से भारत उन चुनिंदा देशों के समूह में शामिल हो गया है जिनके पास हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ियां हैं। इन देशों में जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका शामिल हैं। रेलगाड़ियों को 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन इस खंड पर यह अधिकतम 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने राजधानी में नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी है। इस महत्वाकांक्षी नीति के तहत अगले 5 वर्षों में 400 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य राजधानी को देश के अग्रणी नवाचार और उद्यमिता केंद्र के रूप में विकसित करना है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इसका लक्ष्य युवाओं को अपने विचारों को सफल स्टार्टअप में बदलने के लिए आवश्यक हर संभव सहयोग उपलब्ध कराना है।
2: नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए इस नीति के अंतर्गत दिल्ली सरकार वार्षिक दिल्ली स्टार्टअप युवा महोत्सव का आयोजन करेगी। इसमें नवाचार करने वाले युवा, शैक्षणिक संस्थान, स्टार्टअप, निवेशक, उद्योग जगत और नीति निर्माता एक मंच पर आकर नए विचारों का प्रदर्शन करेंगे। शुरुआत में यह नीति 11 राज्य विश्वविद्यालयों, 13 सरकारी वित्त पोषित कॉलेजों, पॉलिटेक्निक संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों और सरकारी स्कूलों में भी लागू की जाएंगी। सरकार पात्र शैक्षणिक संस्थानों में इंक्यूबेशन सेंटर स्थापित करने और उन्हें मजबूत बनाने के लिए एक मुफ्त वित्तीय सहायता प्रदान भी करेगी। इसके अलावा इन इंक्यूबेशन सेंटरों के संचालन, मेंटरिंग, नेटवर्किंग, नवाचार गतिविधियों और स्टार्टअप इकोसिस्टम के विकास के लिए हर वर्ष संचालन संबंधी वित्तीय सहायता भी उपलब्ध कराई जाएंगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि इस नीति के तहत इंक्यूबेशन सेंटर से जुड़े स्टार्टअप्स को उनके विकास के विभिन्न चरणों के माइलस्टोन आधारित वित्तीय सहायता भी दी जाएंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह नीति केवल स्टार्टअप शुरू करने तक सीमित नहीं है, बल्कि दिल्ली के युवाओं को नौकरी खोजने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
1: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज दिल्ली विश्वविद्यालय DU के शहीद भगत सिंह कॉलेज के हीरक जयंती समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुई। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने विद्यार्थियों, शिक्षकों और पूर्व विद्यार्थियों से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने साल भर चलने वाली हीरक जयंती कार्यक्रमों के कैलेंडर और कॉलेज के डिजिटल आर्काइव्स के QR कोड का अनावरण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय पिछले 6 दशकों से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुशासन और राष्ट्र निर्माण के मूल्यों को आत्मसात करते हुए विद्यार्थियों में राष्ट्र प्रथम की भावना का विकास कर रहा है।

0: है।
1: कॉलेज में अपनी अपनी फील्ड में इस भावना को जरूर इस दिल के कोने में रखना होगा, क्योंकि उसके बिना कुछ भी नहीं। आज राष्ट्र देवो भव का मतलब जिसने समझ लिया, वही व्यक्ति आगे बढ़ सकता है, देश को आगे बढ़ा सकता है। और इस पावर फीलिंग में हम सब जुड़ जाते हैं, एक एक भारतीय जुड़ जाता है। तो जब एक व्यक्ति देश के प्रधान मोदी जी ये करते हैं, तो हम 140 करोड़ भारतीयों को उस पे गर्व होता है।
0: श्रीमती रेखा गुप्ता ने बताया कि इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के प्रस्तावित नए परिसर में दिल्ली विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास विकसित करने की योजना बनाई गई है। डीयू कुलपति प्रोफेसर योगेश सिंह ने कॉलेज की हालिया उपलब्धियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि शहीद भगत सिंह महाविद्यालय ने NIRF रैंकिंग में 101वें स्थान से लंबी छलांग लगाकर 39वां स्थान प्राप्त किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया ने डॉक्टर जाकिर हुसैन लाइब्रेरी के रीडिंग हॉल का विस्तार और नवीनीकरण किया है। रीडिंग हॉल में शोधार्थियों और पोस्ट ग्रेजुएट विद्यार्थियों के लिए विशेष रूप से 250 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए 150 सीटों वाला एक रीडिंग हॉल शामिल है। इन सुविधाओं में आरामदायक फर्नीचर, बेहतर लाइटिंग और वेंटिलेशन, आसान एक्सेस और पढ़ाई के लिए आरामदायक माहौल जैसी चीजें शामिल भी की गई हैं। जेएमआई के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी प्रोफेसर साइमा सईद ने कहा कि यह कदम छात्रों के लिए आधुनिक, समावेशी और छात्र अनुकूल लर्निंग का माहौल प्रदान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार आयुष्मान आरोग्य मंदिर पहल के सातवें चरण के तहत 45 नए आयुष्मान आरोग्य मंदिरों का लोकार्पण करेगी। इस अवसर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री डॉ पंकज कुमार सिंह ने कहा कि इन केंद्रों के माध्यम से नागरिकों को उनके अपने घरों के नजदीक जरूरी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होंगी, जहां बीमारियों से बचाव, स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा पर विशेष बल दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि दिल्ली में अभी 370 आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह पहल जमीनी स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए दिल्ली सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। दिल्ली का लोक निर्माण विभाग नो योर रोड परियोजना शुरू करने जा रही है, जिसका उद्देश्य सड़क रखरखाव में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है। इस पहल के अंतर्गत राजधानी की सभी सड़कों में लगभग 2500 QR कोड लगाए जाएंगे। इन QR कोड को स्कैन करके नागरिक सड़क के निर्माण की मरम्मत काम करने वाली एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नागरिक QR कोड के जरिए सड़क से जुड़ी शिकायतें भी दर्ज करा सकेंगे। इस पहल में लोक निर्माण विभाग का लगभग 1400 किलोमीटर का दायरा शामिल है। दिल्ली सरकार में लोक निर्माण मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने आज त्यागराज स्टेडियम में पुनर्स्थापित वर्षा जल संचयन प्रणाली का निरीक्षण किया और शहर में चल रहे अभियान की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि दिल्ली सरकार ने विभिन्न सरकारी कार्यालयों, विद्यालयों, अस्पतालों, स्टेडियम और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में 1000 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों के पुनर्स्थापन और 500 नई वर्षा जल संचयन संरचनाओं के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने बताया कि अब तक लगभग 400 मौजूदा वर्षा जल संचयन प्रणालियों का पुनर्स्थापन पूरा किया जा चुका है। दिल्ली के शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज भलसवा स्थित आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS आवास परियोजना का निरीक्षण कर मरम्मत और विस्तार कार्यों की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान श्री सूद ने कमरों के आकार, नई फ्लोरिंग और अन्य निर्माण कार्यों का अवलोकन किया। इस परियोजना में 7400 से अधिक EWS फ्लैट शामिल हैं। मीडिया से बातचीत में श्री सूद ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत दिल्ली सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास उपलब्ध कराने के वादे को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है।
2: प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गरीबों को आवास देने के लिए जो प्रधानमंत्री जी का वादा और गारंटी है, उसको हम बहुत जल्दी पूरा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आवास योजना के साइज को बड़ा किया गया है, उसी को मैच करने के लिए इन पुराने बने मकानों में ऑल्टरेशन करने के

0: बारे में हमने चर्चा की। हम प्रधानमंत्री जी का जो गारंटी थी, उनका सपना दिल्ली के गरीबों को सम्मानजनक आवास देने का था, वो अवश्य पूरा।
1: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। इनमें दिल्ली, हरियाणा में फरीदाबाद के बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के देवबंद सहित अन्य स्थान शामिल हैं।
2: ये मामला उत्तर प्रदेश एटीएस द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों के भारत में अवैध घुसपैठ कराने, जाली भारतीय पहचान पत्र बनवाने और देश के विभिन्न हिस्सों में उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। जांच के दौरान एक मजबूत वित्त नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। इन पर कथित रूप से भारी मात्रा में विदेशी चंदा प्राप्त करने और उसे कई बैंक खातों और बिचौलियों के माध्यम से अवैध गतिविधियों में इस्तेमाल करने का आरोप है। प्रारंभिक जांच से ये भी पता चला है कि नकद निकासी और कई छोटी छोटी धनराशि के हस्तांतरण के माध्यम से संदिग्ध लाभार्थियों को धनराशि भेजी गई। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सरफिरोजी।
1: दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने शराब तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से हरियाणा मार्ग वाली 110 कार्टन अवैध शराब और एक चार पहिया वाहन जब्त किया है। पुलिस ने बताया कि आरोपी राजौरी गार्डन में अवैध शराब की तस्करी में शामिल था। 80वें स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए दिल्ली का लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा। लाल किला परिसर में स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने यह आदेश जारी किया है। विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्रता दिवस से पहले हर साल ऐसे आदेश जारी किए जाते हैं। 15 अगस्त को केवल सरकार द्वारा जारी पास धारकों को ही लाल किला परिसर में प्रवेश करने और समारोह में शामिल होने की अनुमति होगी। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली नगर निगम के अपने 3 निर्वाचित पार्षदों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। इनमें निर्मला देवी शर्मा, कृष्णा देवी राघव और सुल्ताना आबाद शामिल हैं। कांग्रेस संसदीय दल सीपीपी की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी और पार्टी के अन्य सदस्य उपस्थित थे। बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया कि बैठक में आगामी मॉनसून सत्र में उठाए जाने वाले प्रमुख मुद्दों पर पार्टी के रुख पर चर्चा हुई। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने कहा कि एक समृद्ध जैव अर्थव्यवस्था देश की स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करेगी, वैक्सीन विकास को बढ़ावा देगी, उच्च कुशल रोजगार पैदा करेगी और वोकल फॉर लोकल पहल को आगे बढ़ाएगी। नई दिल्ली में 2035 तक भारत को एक अग्रणी जैव अर्थव्यवस्था महाशक्ति के रूप में बनाना शीर्षक वाली कार्य योजना को संबोधित करते हुए डॉ सिंह ने कहा कि 21वीं सदी जैव प्रौद्योगिकी की है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, दिल्ली के उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज राजधानी में भगवान श्री जगन्नाथ की पावन रथ यात्रा में शामिल हुए। त्यागराज नगर में रथ यात्रा कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भगवान श्री जगन्नाथ की रथ यात्रा भारत की सनातन सांस्कृतिक परंपरा, सामाजिक समरसता और लोक कल्याण की भावना का प्रतीक है। उपराज्यपाल ने हौसखास स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ की 48वीं वार्षिक रथ यात्रा का उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रोहिणी स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर में 21वीं वार्षिक रथ यात्रा में भाग लिया। राजधानी दिल्ली में आज दोपहर में उमस भरी गर्मी रही और मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने कल हल्के बादल छाए रहने की संभावना व्यक्त की है। कल का अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद

0: सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को रवाना करेंगे। दिल्ली सरकार ने नवाचार, अनुसंधान और उद्यमिता को नई दिशा देने के उद्देश्य से दिल्ली स्टार्टअप और इंक्यूबेशन नीति को मंजूरी दी। प्रवर्तन निदेशालय की कथित आतंकी वित्त पोषण से जुड़े मामले में दिल्ली और हरियाणा समेत कई जगहों पर छापेमारी। स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के मद्देनजर लाल किला परिसर 15 अगस्त तक आम जनता के लिए बंद रहेगा और दिल्ली लोक निर्माण विभाग सड़क रख रखाव को अधिक पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से नो योर रोड परियोजना शुरू करेगा। और इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और अब समय है कार्यक्रम गीत मालिका का। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का ये पहला गीत।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही देर बाद आप सुनेंगे एक विशेष रेडियो रिपोर्ट। कृपया हमारे अगले कार्यक्रम की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये आकाशवाणी है। अब प्रस्तुत है आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। यह घंटनाद, यह कोलाहल, यह जयघोष किसी के आगमन की सूचना देता है। किसका आगमन हो रहा है? कौन है ऐसा जिसके आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं लाखों श्रद्धालु और भक्तजन? कोलाहल के बीच से जो एक स्वर उभर कर आ रहा है वह है जय जगन्नाथ। आज यहां उपस्थित सभी भक्तजनों के कंठ में यह एक ही ध्वनि है, जय जगन्नाथ। प्राचीन उत्कल प्रदेश जो वर्तमान में ओडिशा के नाम से जाना जाता है, उसका एक स्वतंत्र परिचय है, वह है प्रभु जगन्नाथ। विश्व भर में यह प्रदेश जगन्नाथ जी की भूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ओडिशा के समुद्री तट स्थित पुरी शहर में विराजते हैं भगवान जगन्नाथ अपने अग्रज भगवान बलभद्र तथा बहन देवी सुभद्रा जी के साथ। कहा जाता है कि यह उनका मानवीय लीला क्षेत्र है, अर्थात प्रभु यहां वह सब कुछ करते हैं जो एक साधारण मनुष्य अपने जीवन में करता है। प्रभु के सारे विधि विधान मानवीय दिनचर्या के समान हैं। सदियों से चली आ रही परंपरा के अनुसार सभी विधियां संपन्न की जाती हैं। उसी परंपरा का एक अंश है भगवान जगन्नाथ जी की वार्षिक रथ यात्रा। शास्त्रानुसार रानी गुंडीचा को दिए गए वचन को निभाने के लिए भगवान वर्ष में एक बार गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहीं एक मान्यता और भी है कि मंदिर में प्रवेश न कर पाने वाले अपने भक्तों को दर्शन देने के लिए, उन पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाने के लिए भगवान अपने मूल स्वरूप में ही मंदिर से बाहर आ जाते हैं। शास्त्र पुराणों में किए गए वर्णन के अनुसार भगवान की इस रथ यात्रा का विशेष महत्व है। कहा गया है कि रथारूढ़ भगवान के दर्शन से जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति मिलती है। यही कारण है कि रथ यात्रा के दौरान प्रभु के दर्शन करने हेतु विश्व के कोने कोने से श्रद्धालु भक्तजन पुरी आ पहुंचते हैं। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि के दिन भगवान की रथ यात्रा का आयोजन किया जाता है।

रथ यात्रा का आयोजन भले ही आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन होता हो, परंतु इस महोत्सव की तैयारियां बहुत पहले ही शुरू हो जाती हैं। भगवान की यात्रा के लिए हर वर्ष 3 रथ नए सिरे से बनाए जाते हैं। इसके लिए काष्ठ संग्रह का कार्य वसंत पंचमी के पावन दिन से शुरू होता है। रथ निर्माण का कार्य भगवान के विशेष सेवक वंशानुक्रमिक रूप से करते हैं। रथ निर्माण एक चरणबद्ध कार्यक्रम है। रामनवमी से लकड़ियों को चीरने का कार्य शुरू होता है। अक्षय तृतीया के पवित्र दिन से प्रारंभ होता है रथ निर्माण का कार्य। फिर नियमित समय व्यवधान से रथों के पहियों तथा अन्य हिस्सों को प्रस्तुत किया जाता है। रथों के निर्माण में विश्वकर्मा, लोहार, दर्जी, चित्रकार आदि सेवकों की बड़ी भूमिका होती है। उधर अक्षय तृतीया से आरंभ होती है चंदन यात्रा। इस दौरान विग्रहों को नरेंद्र सरोवर में नौका विहार कराया जाता है। स्नान पूर्णिमा के दिन भगवान के विग्रहों को रत्नवेदी से स्नान मंडप लाया जाता है। स्नान के पश्चात प्रभु को गज वेश में सजाया जाता है। अत्यधिक स्नान से प्रभु ज्वर से पीड़ित होते हैं, तब 15 दिनों के लिए उन्हें एकांतवास में रखकर उनका उपचार किया जाता है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पूर्व दिवस अर्थात प्रतिपदा के दिन भगवान नव यौवन वेश में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा का मुख्य महोत्सव पुरी में आयोजित होता है, जिसमें भगवान मुख्य मंदिर से निकलकर गुंडीचा मंदिर की यात्रा करते हैं। वहां 1 सप्ताह के अवस्थान के पश्चात पुनः रथारूढ़ होकर वापस मुख्य मंदिर में लाए जाते हैं, जिसे स्थानीय भाषा में बाहुड़ा यात्रा कहा जाता है। आज आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के पावन दिवस के अवसर पर पुरी में इस महोत्सव का आयोजन किया गया। मौसम विभाग द्वारा पुरी तथा आसपास के कई जिलों में मध्यम से भारी वर्षा के पूर्वानुमान की परवाह किए बिना लाखों की संख्या में भक्तजन पुरी पहुंचे थे। मन में जहां दृढ़ भक्तिभाव होता है, वहां मनुष्य हर विघ्न को पार कर जाता है। इसी बात का प्रत्यक्ष प्रमाण था यहां उमड़ा भारी जनसमूह। श्री मंदिर के नाम से जाने जाने वाले मुख्य मंदिर को फूलों से सजाया गया था। मंदिर के सिंह द्वार के सामने तैयार खड़े थे 3 सुसज्जित रथ। लाल और हरे रंग का भगवान बलभद्र जी का रथ तालध्वज, बीच में लाल और काले रंग के वस्त्रों से सज्जित देवी सुभद्रा जी का रथ देवदलन, और द्वार के समीप था लाल और पीले रंगों के वस्त्रों से सज्जित भगवान जगन्नाथ जी का रथ नंदीघोष। मार्ग पर आंकी गई रंगोलियां सभी का मन मोह रही थी। आसमान में छाए बादल बीच बीच में बरस पड़ते थे, परंतु यह बारिश भक्तों के उत्साह में किसी प्रकार की कमी ना ला सकी। बारिश होने के समय भक्तों के द्वारा उपयोग में लाए गए रंगीन छाते एक अद्भुत दृश्य प्रदान कर रहे थे। कोई भजन कर रहा था तो कोई कीर्तन, तो कोई अपनी नृत्य कला अथवा रण कौशल का प्रदर्शन कर भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा था।

एक विधि के अनुसार भगवान के रथों पर ध्वज तथा कलश की स्थापना की गई। ब्राह्मणों द्वारा रथ प्रतिष्ठा की विधि संपन्न होने के बाद शुरू हुई पहुंडी की विधि। पहुंडी का शाब्दिक अर्थ है धीरे धीरे कदम दर कदम आगे बढ़ना। इस विधि के अंतर्गत यहाँ दंड रूपी भगवान सुदर्शन और देवी सुभद्रा को भक्तजन बिना भूमि को स्पर्श कराए कंधों पर उठाकर मंदिर के रत्न सिंहासन से रथों तक लाते हैं। वहीं भगवान बलभद्र तथा जगन्नाथ जी को एक एक कदम बढ़ाते हुए लाया जाता है। क्रमानुसार सुदर्शन जी, भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा तथा जगन्नाथ जी की पहुंडी विधि संपन्न हुई। भगवान के आयुध सुदर्शन जी को देवी सुभद्रा जी के रथ पर स्थापित किया गया। टाहिया कहे जाने वाले फूलों से सजे विशाल मुकुट से सज्जित भगवान की शोभा अवर्णनीय थी। भगवान की इस आकर्षक विधि का दर्शन करने के लिए आए भक्तों से मुख्य मार्ग मानो पूर्ण रूप से भरा हुआ था। भगवान के रथारूढ़ होने के साथ साथ यात्रा के लिए उनकी आवश्यक सामग्रियों को भी रथों पर रखा गया। प्रभु के रथारूढ़ होने के पश्चात परंपरा के अनुसार पुरी गोवर्धन मठ के शंकराचार्य ने अपने शिष्यों के साथ आकर भगवान के दर्शन किए। अगला अनुष्ठान था छेरा पहरा। परंपरा के अनुसार इस विधि में भगवान के प्रथम सेवक कहे जाने वाले पुरी के गजपति महाराज स्वयं अपने महल से एक पालकी पर सवार होकर आते हैं और अपने हाथ में सुवर्ण मार्जनी लेकर रथों की

0: अफाई का कार्य करते हैं। यह विधि इस बात को दर्शाती है कि भगवान के आगे राजा और रंक में कोई भेद नहीं है, भगवान के आगे सभी समान हैं। सफेद राजसी पोशाक में गजपति महाराज लाल रंग की पालकी पर सवार होकर महल से रथों तक पधारे। फिर बारी बारी से एक एक रथों पर महाराजा ने सेवकों द्वारा डाले गए फूलों की प्रतीकात्मक रूप से सफाई की। छेरा पहरा विधि को संपन्न कर महाराज ने भगवान की आरती की और महल की ओर प्रस्थान किया। अब बारी थी रथों पर चढ़ने के लिए लगाई गई सीढ़ियों को खोलने की। सीढ़ियों को खोलने के पश्चात रथों से सारथी अश्वों तथा रज्जुओं को संयुक्त किया गया। अब वह क्षण आ पहुंचा था जिसका हर भक्त को बड़ी बेसब्री से इंतजार था। रथों को खींचने का समय हो गया था। बड़े ही उत्साह के साथ भक्तजन पहले बलभद्र जी, फिर देवी सुभद्रा और अंत में भगवान जगन्नाथ जी का रथ खींचते हैं। सूर्यास्त तक रथों को खींचा जाता है। गुंडीचा मंदिर तक न पहुंचने की स्थिति में रथों को अगले दिन सूर्योदय के पश्चात फिर से खींचा जाता है। इतने विशाल आयोजन में कानून व्यवस्था बनाए रखने, सभी आवश्यक सेवाओं को सुगमता से उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न विभाग, स्थानीय इकाइयों तथा स्वयं सेवकों की भूमिका सराहनीय रही। पूरी न आ पाने वाले श्रद्धालुओं को रथ यात्रा का प्रत्यक्ष अनुभव प्रदान कराने के लिए आकाशवाणी ने क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ अंग्रेजी और हिंदी में आंखों देखा हाल सुनाने का प्रबंध किया था।
1: ये तीनों रथ पूरी तरह से बरसात में भीगे हैं, लाखों श्रद्धालु, बरसात लगातार जारी है, फिर भी उन्हें इसकी परवाह नहीं है। उनके आगे उनके आराध्य देव जगत के नाथ प्रभु जगन्नाथ विराजमान हैं। वो स्वयं भीग कर रत्न सिंहासन छोड़कर जब रथ रूपी मंदिर में काष्ठ सिंहासन पर विराजमान होने के लिए आए हैं और भक्तों को अपना दर्शन देने के लिए आए हैं, तो उनके आगे सामान्य भक्त की भला क्या औकात है। तो सारे भक्त सब कुछ भुलाकर अपने आराध्य देव को अपने सम्मुख पाकर वो धन्य हुए हैं। काफी संख्या में यहाँ भक्त मौजूद हैं। इस बीच हमारे सामने, हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अहमदाबाद से आई मूल अमृतसर की निवासी अंजलि जी। वो रथ यात्रा दर्शन के लिए आई हैं, हम उनसे बात करेंगे। तो अंजलि जी, स्वागत है आपका जगन्नाथपुरी में। आपको यहाँ आकर कैसा लग रहा है?
2: ये खूबसूरत नजारा आज तक मैंने कभी देखा नहीं था। इतना बड़ा त्योहार की तरह इसको मनाया जाना मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं ये देख पाऊंगी। जो इन पलों का मैं अनुभव कर रही हूँ वो मैं बता नहीं सकती शब्दों में, कि इतना प्यारा अनुभव, इतना सुंदर अनुभव कैसे मुझे मिला मुझे नहीं पता। लेकिन इस समय जो मैं अनुभव महसूस कर रही हूँ वो मेरे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। हर भक्त अपने अपनी जगह से जुड़ा हुआ है और अपनी अपनी भक्ति में इतना लीन है कि उसको अपनी ना बारिश की परवाह है, ना अपनी भूख की परवाह है, ना किसी भी चीज की परवाह है, और वो वहीं पे खड़ा हुआ है भगवान के दर्शनों के लिए। इतना उत्सुक है कि मेरे पास शब्द नहीं है। हर इतने लाखों लोगों में सब में इतना प्यार भावना भगवान के प्रति जो मैंने देखे, मैंने आज तक कभी देखी ही नहीं है।
1: धन्यवाद अंजलि जी।
0: यह रिपोर्ट प्रस्तुत किए जाने तक भगवान बलभद्र जी का रथ खींचा जा चुका था और देवी सुभद्रा जी के रथ को खींचने की तैयारियां चल रही थी। अभी आप सुन रहे थे आज महाप्रभु जगन्नाथ जी के धाम ओडिशा के पावन क्षेत्र पुरी में आयोजित हुई रथ यात्रा पर समेकित रेडियो रिपोर्ट। आलेख एवं वाचन स्वर प्रकाश चंद्र दवे, प्रस्तुति सहयोग अक्षय कुमार सेठी, प्रस्तुतकर्ता थे विनय कुमार सामंतराय। आकाशवाणी के कटक केंद्र के सौजन्य से प्राप्त यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। रात्रि के 8:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम गीत मालिका।

आप जुड़े हुए हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से, और कार्यक्रम है फिर गीत मालिका का, और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना।

0: बजकर 45 मिनट होने को हैं। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु शामिल हुए। अमरीका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच जारी। और अब समाचार विस्तार से। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। उन्होंने कहा कि यह सबका साथ सबका विकास के प्रति मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस साल 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से ज्यादा वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से उन्होंने संपर्क किया। वैज्ञानिक विशेष रूप से उन जिलों में पहुंचे जिनके अलनीनो से प्रभावित होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने पिछले वर्ष के दौरान कई उन्नत किस्म की फसलें विकसित की हैं।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित की है। बागवानी की 117 किस्में हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजना बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं ICR कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका के समूह में शामिल हो जाएगा। इस रेलगाड़ी को 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने के लिए डिजाइन किया गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीत मालिका। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर रात्रि के

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।

0: मैं क्षय मित्र इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा आज से शुरू हो गई। ये हवाई संपर्क एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। यह ऐतिहासिक शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल ही में नमो हवाई अड्डे के उद्घाटन के बाद हुई है। एक रिपोर्ट।
4: केंद्र शासित प्रदेश दमन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी से इस क्षेत्र में पर्यटन, व्यापार और निवेश को काफी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। यात्रियों को अब लंबी सड़क या रेल यात्राओं पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, जिससे यात्रा का समय काफी कम हो जाएगा। स्थानीय प्रशासन के अनुसार जल्द ही नमो एयरपोर्ट से देश भर के अन्य प्रमुख शहरों में हवाई सेवाओं को बढ़ाने की योजना पहले से ही चल रही है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने आज कहा कि उड़े देश का आम नागरिक योजना के अगले चरण का उद्देश्य अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक कनेक्टिविटी को बढ़ाना और 4 करोड़ लोगों को विमान यात्रा में सक्षम बनाना है। नई दिल्ली में कार्यशाला में श्री नायडू ने कहा कि सरकार हवाई टिकटों की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए कई उपाय कर रही है।
5: एविएशन एक ऐसा इंडस्ट्री है जिसको हमें डायनेमिक फेयर प्राइसिंग के तहत हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाना है तो एयरलाइंस को वो डायनेमिक प्राइसिंग की सुविधा हमें देनी चाहिए, जो भारत में भी हम एक्सटेंड कर रहे हैं। कई जगहों पे अगर ऐसा लगता है कि फेयर्स हद से ज्यादा हो रहे हैं तो हमने ये पाबंदी लगाया कि ये प्राइसिंग को रेगुलेट करेंगे।
3: विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने आज स्वदेशी प्रौद्योगिकियों को देश भर में व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए वैज्ञानिक संस्थानों, उद्योग और राज्य सरकारों के बीच मजबूत सहयोग का आह्वान किया। डॉक्टर सिंह ने नई दिल्ली में CSIR केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान के 1 वर्षीय प्लेटिनम जयंती समारोह में ये बात कही। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के शासन में तेजी से सकारात्मक बदलाव के कारण भारत वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचा है। चेन्नई में उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 से सरकारी योजनाएं देश के सुदूरतम क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक नागरिक तक पहुंच रही हैं। तृणमूल कांग्रेस की एक और राज्यसभा सांसद कोयल मल्लिक ने राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा अध्यक्ष CP राधाकृष्णन से मुलाकात कर अपना इस्तीफा उन्हें सौंपा। वो इस साल अप्रैल में राज्यसभा के लिए चुनी गई थी। कोयल तृणमूल कांग्रेस की चौथी राज्यसभा सांसद हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है। इससे पहले सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराइक ने इस्तीफा दिया था और बाद में वे भाजपा में शामिल हो गए। प्रवर्तन निदेशालय ने कथित आतंकी वित्त पोषण और अवैध घुसपैठ नेटवर्क से जुड़े एक मामले में आज पश्चिम बंगाल सहित देशभर में 13 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया। एक रिपोर्ट।
6: ये मामला उत्तर प्रदेश ATS द्वारा रोहिंग्या और बांग्लादेशी नागरिकों की भारत में अवैध घुसपैठ कराने और उनके पुनर्वास में कथित रूप से शामिल संगठित गिरोह के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल के कलिकपुर में हरौरा अल जमियतुल इस्लामिया दारुल उलूम में तलाशी के दौरान 40 लाख रुपए नकद और सोने के सिक्के बरामद हुए। जांच के दौरान एक मजबूत वित्तीय नेटवर्क का खुलासा हुआ है, जिसमें कुछ धर्मार्थ ट्रस्ट और संस्थाएं शामिल हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप NewsOnAIR पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में आज भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे।

0: पुरी का पवित्र शहर भक्ति के सागर में आज डूबा रहा, क्योंकि पहंडी विजय और छेरा पहरा की पवित्र रस में पूरी होने के बाद लाखों भक्तों ने भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथों के ग्रैंड रोड पर खींचने की रस्म में हिस्सा लिया। रात होने पर रथ खींचने का काम आज के लिए रोक दिया गया है और पवित्र श्री गुंडीचा मंदिर तक की दिव्य यात्रा कल फिर शुरू होगी। हालांकि श्री गुंडीचा मंदिर के पास भगदड़ जैसी घटना से उत्सव का माहौल प्रभावित हुआ, जिसमें खबर है कि एक भक्त की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। गंभीर रूप से घायलों को इलाज के लिए पास के अस्पतालों में भेजा गया है। उड़ीसा सरकार ने इस घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही उत्सव के बाकी दिनों के लिए सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के इंतजाम और कड़े कर दिए गए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, पुरी।
1: इस बीच गुजरात, झारखंड और दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जगन्नाथ रथ यात्रा के अवसर पर देशवासियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कच्छ के नववर्ष आषाढ़ी बीज के अवसर पर कच्छी समुदाय को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि आषाढ़ी बीज कच्छी समुदाय की चिरस्थायी सांस्कृतिक विरासत और मजबूत भावना को दर्शाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के तहत नवीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे पांचवीं या छठी कक्षा में शुरू करना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सकें। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं निखिल कुमार।
2: घरेलू शेयर बाजार में आज सेंसेक्स में केवल एक अंक की बढ़त हुई और ये 77,187 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 6 अंक गिरकर 24,073 पर पहुंच गया। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के विस्तृत बाजार के मिड कैप में 0.4% और स्मॉल कैप में 0.1% की गिरावट आई। वहीं अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 9 पैसे गिरकर 96.35 रुपए पर बंद हुआ।
1: अमरीका ने ईरान पर हमले और तेज कर दिए हैं। आज उत्तर में स्थित ठिकानों को निशाना बनाया गया और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर भी गोलीबारी की गई। जवाब में ईरान ने क्षेत्र में अमरीका के सहयोगी देशों को निशाना बनाते हुए मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। ईरान ने धमकी दी है कि अगर अमरीका पुलों और बिजली संयंत्रों को निशाना बनाता है तो ईरान क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे पर व्यापक हमले कर सकता है। इंडोनेशिया के जकार्ता में भारतीय मुक्केबाजों ने एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक अपने नाम कर लिए हैं। अंडर 23 वर्ग में विश्वनाथ सुरेश और गंगा ने स्वर्ण और वंशज ने रजत पदक अपने नाम किया। अंडर 19 में आदित्य और शुभम राजपूत ने रजत पदक हासिल किए। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 8 विकेट पर 214 रन बना लिए हैं। इंग्लैंड ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। 3 मैचों की श्रृंखला में भारत 1-0 से आगे है। मौसम विभाग ने अगले 7 दिनों में पूर्वी और पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी हिमालय क्षेत्र में तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 3 से 4 दिनों तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में तथा 22 जुलाई तक राजस्थान में भी वर्षा होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने मछुआरों को 21 जुलाई तक दक्षिण पश्चिमी अरब सागर में और अगले 2 दिनों तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी और आसपास के इलाकों में न जाने की सलाह दी है। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने 1 अरब से ज्यादा लोगों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के दायरे में लाकर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जींद रेलवे स्टेशन से देश की पहली हाइड्रोजन से चलने वाली रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हुई। हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा में लाखों श्रद्धालु हुए शामिल। अमेरिका ने उत्तरी ईरान तक हमले किए और नौसैनिक घेराबंदी तोड़ने की कोशिश कर रहे एक जहाज पर गोलीबारी की। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में एशियाई अंडर 19 और अंडर 23 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत ने 2 स्वर्ण और 3 रजत पदक हासिल कर लिए हैं। और कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के बीच दूसरा एक दिवसीय अंतर

0: Good night.
1: आदाब, ये आकाशवाणी है। जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। भारत ने समाजी तहफ्फुज के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संगे मील उबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमरीका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत के 2 मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे जबकि 3 मुक्केबाजों ने चांदी के तमगे जीते हैं। और मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में भारत और मेजबान इंग्लैंड के दरमियान दूसरा एक रोजा बैन अल-अक़वामी मैच जारी है। अब खबरें तफसील से। भारत में समाजी तहफ्फुज का दायरा 1 अरब से तजावुज कर गया है। सोशल मीडिया पोस्ट में मेहनत और रोजगार के मरकजी वजीर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की क्यादत में भारत में समाजी तहफ्फुज की कवरेज जो साल 2015 में 19% थी, साल 2026 में बढ़कर 68.4% हो गई है। उन्होंने कहा कि 100 करोड़ से ज्यादा शहरी समाजी तहफ्फुज के दायरे कार में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि ये मोदी हुकूमत की सबका साथ सबका विकास के अहद की अक्कासी करता है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के अपने दौरे के दौरान जिंद रेलवे स्टेशन से जिंद और सोनीपत के दरमियान चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ये ट्रेन मुकम्मल तौर पर मुल्क में ही डिजाइन तैयार और इंजीनियर की गई है। इसकी तैयारी में घरेलू टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है जो जदीद रेलवे इंजीनियरिंग के शोबे में मुल्क की बढ़ती हुई सलाहियतों की अक्कासी करती है। इस ट्रेन के आगाज के साथ ही भारत उन चुनिंदा मुल्कों में शामिल हो जाएगा जहां हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनें पहले से ही कामयाबी से चल रही हैं। इन मुल्कों में जर्मनी, जापान, चीन और अमरीका शामिल हैं। इस ट्रेन की ज्यादा से ज्यादा रफ्तार 110 किलोमीटर फी घंटा है, ताहम इस मखसूस रूट पर इसे 75 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट। माफ कीजिए, ये रिपोर्ट हम आपको बाद में सुनवाएंगे। बाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी चंडीगढ़ जाएंगे जहां वो 6,600 करोड़ रुपये से ज्यादा मालियत के तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और कई प्रोजेक्टों का इफ्तिताह भी करेंगे। ये प्रोजेक्ट सेहत, तालीम और सड़कों के बुनियादी ढांचे से वाबस्ता हैं। इसके बाद जनाब मोदी जालंधर जाएंगे जहां वो 5,470 करोड़ रुपये से ज्यादा के कई तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह करेंगे और संग बुनियाद रखेंगे। इन प्रोजेक्टों का मकसद कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना, मुसाफिरों को सहूलत फराहम करना और खित्ते की माशी तरक्की को रफ्तार फराहम करना है। वज़ीर-ए-आज़म अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत अज़सर-ए-नौ तैयार किए गए 75 रेलवे स्टेशनों का भी इफ्तिताह करेंगे जिनमें जालंधर कैंट रेलवे स्टेशन भी शामिल है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के आवाम के दरमियान रेलवे, सेहत, सकाफत, राबता, तालीम और दीगर शोबों से मुतालिक मुख्तलिफ प्रोग्रामों में शिरकत के मुंतजिर हैं। सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने कहा कि ये प्रोजेक्ट्स अवाम, खासतौर पर मुल्क की युवा शक्ति की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाएंगे। ज़िराअत और किसानों के बहबूद के मरकजी वजीर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आबोहवा की तब्दीली जैसे चैलेंजेस के बावजूद भारत ने इस साल 376 मिलियन टन गजाई अजनास और 377 मिलियन टन बागबानी फसलों की रिकॉर्ड कायम किया है। नई दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब चौहान ने कहा कि अब साइंसदान बराह रास्त खेतों में किसानों के साथ काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खेत बचाओ अभियान के तहत 1,657 साइंसी टीमों ने 728 जिलों में खासतौर पर एल नीनो से मुतासर इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ किसानों से राबता कायम किया है।
2: एक साल में 44 फसलों की 386 नई किस्में, जिनमें से 94 क्लाइमेट रिजिलिएंट है, 29 बायोफोर्टिफाइड है, ये विकसित किए। बागवानी की 117 किस्में।

0: हमने अलग अलग अलनीनो के प्रभाव के कारण और वैसे भी जो संवेदनशील जिले हैं उनके लिए आकस्मिक योजनाएं बनाई है। आज मैं गर्व से कहता हूं आईसीआर कृषि परिवर्तन का अग्रदूत बन चुका है।
1: वजीर मौसूफ ने कहा कि हुकूमत मिशन आईसीआर 100 के तहत 100 यंग साइंटिस्ट ग्राम चैलेंज का आगाज करेगी, जिसमें नौजवान साइंसदान मसनू जहानत, AI, रोबोटिक्स, जदीद ज़राअत और आबो हवा की तब्दीली के लिहाज से स्मार्ट ज़राअत जैसे शोबों में कौमी सतह पर मुकाबले मुनक़द किए जाएंगे। जनाब चौहान ने कहा कि हुकूमत आबो हवा की तब्दीली के लिहाज से 100 स्मार्ट गांव भी तैयार करेगी, जो पायदार, जदीद और आबो हवा की तब्दीली से हम आहंग ज़राअत के मिसाली नमूने होंगे। उन्होंने मजीद कहा कि ज़रई तहकीकी भारती कौंसिल ICAR ने पिछले एक साल में 44 फसलों की 386 बेहतर अकसाम तैयार की हैं, जिनमें 94% आबो हवा की तब्दीली के खिलाफ मजाहिम फसलें और 29 अकसाम गजाइत से भरपूर हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी के वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने साइंसी इदारों, सनत और रियासती हुकूमतों के दरमियान मजबूत इश्तराक की अपील की, ताकि मुल्क भर में स्वदेशी तर्ज पर तैयार करदा टेक्नोलॉजियों के बड़े पैमाने पर निफाज को यकीनी बनाया जा सके। डॉक्टर सिंह ने आज नई दिल्ली के सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट CSIR की एक साल तवील प्लेटिनम जुबली तकरीबात से खिताब करते हुए ये बात कही। जनाब सिंह ने मजीद कहा कि बुनियादी ढांचे की भारत की गैर मुतवक्के तौसी ने साइंसी इदारों को सड़कों, पुलों और ट्रांसपोर्ट निजाम के लिए जदीद तरीन टेक्नोलॉजियों में तआवुन करने का अहम मौका दिया है। मरकज के जिला इंतजाम इलाके दमन के लिए एक अहम संग मील के तौर पर आज नए तामीर शुदा नमो हवाई अड्डे से दिल्ली के लिए पहली कमर्शियल परवाज का आगाज किया गया। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर के राम मोहन नायडू और दमन व दीव और दादर व नगर हवेली के एडमिनिस्ट्रेटर प्रफुल्ल पटेल ने मजकूरा हवाई अड्डे पर एक खसूसी तकरीब में इस पहली परवाज को झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पेशरफ्त हाल ही में वजीर आजम नरेंद्र मोदी के हाथों नमो हवाई अड्डे के इफ्तिताह के बाद हुई है। बराह रास्त फिजाई राबते से दमन में सियाहत, तिजारत और सरमायाकारी को नुमाया फरोग हासिल होगा। मुकामी इंतजामिया के मुताबिक मुस्तकबिल करीब में नमो हवाई अड्डे से मुल्क के दीगर बड़े शहरों के लिए भी परवाजें शुरू करने का मंसूबा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। उड़ीसा का पवित्र शहर पुरी अकीदत से सरशार है, क्योंकि भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा पूरी मजहबी अकीदत के साथ शुरू हो गई है। नामवाफिक मौसमी हालात के बावजूद अकीदतमंदों की बड़ी तादाद ग्रैंड रोड पर मौजूद है। भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथों को खींचने की आलमी शोहरत याफ्ता रस्म बारिश के बाद दिन भर के लिए मुअत्तल रही। इससे पहले तकरीबात पर उस वक्त असर पड़ा जब मुबैना तौर पर भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: श्री गुंडीचा मंदिर के करीब भगदड़ जैसे वाकये में एक अकीदतमंद की मौत हो गई, जबकि दिगर कई जख्मी हो गए। शदीद जख्मी अफराद को इलाज के लिए करीबी अस्पतालों में मुंतकिल किया गया है। उड़ीसा हुकूमत ने इस वाकये की आला सतह जांच का हुक्म दिया है, जबकि रथ यात्रा के बाकी हिस्से के लिए हिफाजती इंतजाम और भीड़ को मुनज़म करने के तरीक़ेकार को मजीद मुस्तहकम किया गया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मेहताब आलम।
1: हाउसिंग और शहरी उमूर की वजारत ने परिवर्तन स्कीम के रहनुमा उसूलों को मंजूरी दे दी है। इस स्कीम का मकसद ट्रांसपोर्ट से होने वाली फिजाई आलूदगी और गाड़ियों से कार्बन के अखराज में कमी लाने के लिए पुरानी गाड़ियों की जगह नई और माहौलियात के लिए साजगार गाड़ियां लाने की हौसला अफजाई करना है। ये स्कीम खासतौर पर कौमी राजधानी खिता NCR में चलने वाले ज्यादा आलूदगी फैलाने वाले पुराने ट्रकों और बसों को भारत स्टेज BS6 मेयार से हम आहंग करना या बैटरी से चलने वाली गाड़ियों से तब्दील करने में मदद फराहम करेगी। इस स्कीम के तहत गाड़ी खरीदने वालों को मोटर गाड़ियों के टैक्स में रियायत, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, गाड़ी के कर्ज में 5% सूद की रियायत और रियायत की हकदार नई गाड़ियों पर साजो सामान के ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर्स की जानिब से कम अज कम 8% रियायत दी जाएगी। भारत के रिजर्व बैंक RBI ने मुल्क के मालियाती शमूलियाती इशारिये FI इंडेक्स में बेहतरी का इंदराज किया है। इसके मुताबिक ये इशारिया मार्च 2025 के 67 से बढ़कर मार्च 2026 में 70 हो गया है। ये मुतवातिर इजाफा मुल्क के मालियाती खिदमात के बढ़ते दायरे की पेशरफ्त और मुल्कगीर सतह पर मालियाती मसरूफियात की वसूत का अक्कास है। कंपोजिट FI इंडेक्स 97 इशारियों का अहाता करता है, जिसमें कोई बुनियादी साल नहीं होता। वहीं ये तीन बुनियादी पैमानों पर भारत के मालियाती इको निज़ाम को भी परखता है। FI इंडेक्स की शुरुआत मार्च 2021 में खत्म होने वाले माली साल के लिए अगस्त 2021 में हुई थी और इसे सालाना बुनियाद पर शाय किया जाता है। अमेरिका ने आज सुबह सवेरे ईरान पर अपने

हमले मजीद तेज कर दिए हैं। अमरीकी फौज ने शुमाली इलाकों में भी कई अहदाफ को निशाना बनाया और एक बहरी जहाज पर भी फायरिंग की। अमरीका ने इस जहाज पर इल्जाम लगाया कि वो ईरान पर आयद बहरी नाकाबंदी को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इसके जवाब में ईरान ने मिजाइलों और ड्रोन्स के जरिए खित्ते में मौजूद अमरीका के इत्तेहादियों को निशाना बनाया और खबरदार किया कि हमलों में मजीद शिद्दत आ सकती है। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया अमरीकी हमलों में 35 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए हैं और 300 से ज्यादा जख्मी हुए हैं। इस बीच ईरानी फौज के खातिमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान कर्नल इब्राहिम जुल्फिकारी ने खबरदार किया कि अगर अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप की उन बार बार दी जाने वाली धमकियों पर अमल होता है जिनमें ईरान के पुलों और बिजली घरों को निशाना बनाने की बात कही गई है, तो ईरान खित्ते के अहम बुनियादी ढांचे पर बड़े पैमाने पर हमले कर सकता है। उन्होंने कहा कि किसी भी सूरत में ईरान अमरीका को आमनाए हुरमुज में मदाखलत करने की इजाजत नहीं देगा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा जरई तहकीक की भारतीय काउंसिल ICAR के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मंगीलाल जाट के साथ भारत के जरई शोबे की पेशरफ्त में ICAR के तआवुन पर एक खसूसी बातचीत नशर करेगा। इस खसूसी बातचीत को मुल्कगीर हफ्तावार प्रोग्राम में आज रात 9:30 बजे सुना जा सकता है। ये प्रोग्राम FM गोल्ड चैनल और इजाफी फ्रीक्वेंसीज पर भी सुना जा सकता है। जकार्ता में आज 19 और 23 साल की उम्र तक की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में भारत ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुहिम का अख्ताम किया। विश्वनाथ सुरेश ने 50 किलोग्राम के जुमरे में और गंगा ने 55 किलोग्राम के जुमरे में सोने का तमगा जीता। 23 साल की उम्र तक के मर्दों के फाइनल में भारत ने सोने के 2 तमगे जीते हैं। वंशज ने फाइनल में 65 किलोग्राम के जुमरे में भरपूर मुकाबला किया लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के 19 साल से कम उम्र के फाइनल मुकाबले में भारतीय बॉक्सर्स ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया लेकिन उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। मर्दों के क्रिकेट में कार्डिफ में 3 एक रोजा बैन अलावामी मैचों की सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने इंग्लैंड के सामने जीत के लिए 234 रन का निशाना रखा है। इससे पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने टॉस जीता और गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल इस मैच में नहीं खेल रहे हैं, उनकी जगह ईशान किशन को शामिल किया गया है। भारत को सीरीज में 1-0 की सबकत हासिल है। इससे पहले भारत ने बर्मिंगम में खेले गए पहले मैच में इंग्लैंड को 6 विकेट से शिकस्त दी थी। सीरीज का तीसरा और आखिरी मैच कल लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में खेला जाएगा। ओलंपिक में 2 मरतबा तमगा जीतने वाली पीवी सिंधु आज टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए दुनिया की 5 नंबर की चीनी खिलाड़ी हैन यू को सीधे सेटों में शिकस्त देकर क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। दूसरे राउंड के इस मुकाबले में सिंधु ने सिर्फ 35 मिनट में आला दर्जे की चीनी खिलाड़ी को 21-16, 21-14 से हरा दिया। कल उनका सामना जापान की नोजोमी ओकुहोरा से होगा। प्री क्वार्टर फाइनल में मिक्स डबल्स की भारतीय जोड़ी तनिषा क्रास्टो और ध्रुव कपिला की शिकस्त के बाद सिंधु टूर्नामेंट में वाहिद भारतीय खिलाड़ी रह गई हैं। भारतीय महकमे मौसमियात ने अगले 7 दिनों में मुल्क के मशरकी और शुमाल मशरकी इलाकों, मशरकी उत्तर प्रदेश और ज़ैली हिमालयी मगरबी बंगाल में शदीद बारिश की पेशगोई की है, जबकि बाज़ मकामात पर शदीद से बहुत शदीद बारिश का इम्कान जाहिर किया गया है। महकमे मौसमियात ने कहा कि कल हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में हल्की बारिश का इम्कान है। महकमे मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिन के दौरान दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में इसी तरह की सूरत हाल रहेगी, जबकि राजस्थान में इस महीने की 22 तारीख तक इसी तरह के मौसमी हालात बरकरार रहेंगे। महकमे मौसमियात ने माहीगीरों को मशवरा दिया है कि वो 21 जुलाई तक जुनूब मगरबी बहिरा अरब और अगले 2 दिनों तक जुनूबी खलीज बंगाल और इससे मुल्हिका इलाकों में जाने से गुरेज करें। और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। भारत ने सामाजिक तहफ्फुज़ के फ्रेमवर्क के तहत 1 अरब से ज्यादा शहरियों को शामिल करते हुए अहम संग मील उबूर किया है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल हरियाणा के जिंद रेलवे स्टेशन से हाइड्रोजन से चलने वाली मुल्क की पहली ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। दमन और नई दिल्ली के दरमियान बराह रास्त कमर्शियल परवाज का आगाज हो गया है, जिससे फिजाई कनेक्टिविटी के नए दौर की शुरुआत हो गई है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की आलमी शोहरत याफ्ता रथ यात्रा में लाखों अकीदतमंद शरीक हो रहे हैं। अमरीका ने शुमाली ईरान में अपने हमलों का दायरा वसी कर दिया है और बहरी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाले एक जहाज को नाकारा बना दिया है। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। और जकार्ता में 19 और 23 साल तक की उम्र की एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में
भारत के दो मर्द मुक्केबाजों ने सोने के तमगे, जबकि तीन मुक्केबाजों ने

0: كوريستكي رئيس الوزراء الجديد في البلاد ضمن نقل حكومي مهم. وقد سماه الرئيس الأوكراني السيد فلاديمير بوتين فلاديمير زيلينسكي، مشيرا إلى إسهاماته البارزة في قطاع الطاقة، وبحجة أنه اختير لأفضل مكانه ليساعد الشعب الأوكراني على إعدادهم لمقاومة حرب شتوي آخر. وزير الصناعة والتجارة السيد بيوش غويل تفاعل مع وفد أعمال أصحاب الأعمال الهنود المكونة من أعضاء الغرف التجارية الهندية ولجنة الصناعات الهندية وإشتوت شام والمؤسسات الإقليمية الأخرى في مدينة بروسيلز بلجيكا. الجبهة الوطنية البلوشية BNM أثارت قلقا متزايدا حول الأوضاع الأمنية في منطقة ساحلية جيفاني، وأكدت المنظمة بأن الهيئات الباكستانية تسعى إلى إزالة المجتمعات المحلية من بيوتها وقراها. بناء على إفادة BNM إن العمليات الاحتجاجية الجارية في المنطقة قد قطع السكان عن نيل المواد الأساسية اللازمة، وأضافت بأن القيود المفروضة من قبل الهيئات العسكرية قد أساءت لأوضاع البشرية، كما أضافت الشدة والمعاناة البشرية للمواطنين في المنطقة. وزير الدفاع السيد راجنات سينغ أكد بأن الحكومة في محاولتها لبناء الهند دولة حيث الحدود تبقى مصونة ومأمونة بل ومرتبطة بمعظم أكنافها، وأكد بأن الحكومة تؤكد النقد التقدم والعمران والأمن القومي معا حزبا بحزب. الولايات المتحدة قامت بإطلاق غارات جوية من جديد على إيران بهدف صيانة السفن البحرية في مضيق هرمز، وأفادت القوات العسكرية الأمريكية بأنها أكملت تيارا ثانيا لغاراتها الجوية على إيران يوم أمس، والتي كانت بهدف تضعيف قدرات إيران على استهداف السفن في مضيق هرمز. وزير الزراعة ورفاهية الفلاحين شيف راسين تشوهان ركز على ضرورة تطوير الزراعة المتناسقة وممارستها فيما بين الفلاحين للتأكد من نمو زراعي مستدام. وفي الرياضة، الرياضة الأولمبية بي في سندو قامت أداء ملموسا وناجحا ودخلت ربع نهائي البطولة في بطولة كرة السلة المفتوحة في اليابان. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियों चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने नीट UG 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। NTA के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी पर का दौरा करेंगे। वे BSF से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजना

0: शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरप्पू महरामोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुघस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा और माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में मदद मिलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी से बातचीत की और पूर्व अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत और फिनलैंड के संबंध एक नए महत्वपूर्ण दौर में प्रवेश कर रहे हैं। भारत फिनलैंड व्यापार गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि दोनों देश डिजिटल और सतत विकास के क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने की ओर अग्रसर हैं। उड़ीसा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए डटे हुए थे। इस बीच गुजरात, झारखंड, दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न स्थानों पर भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा हर्षोल्लास के साथ निकाली गई। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड को 234 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में इंग्लैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 42वें ओवर में 6 विकेट पर 214 रन बना ली है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind railway station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins the select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects.

0: अगला गीत फिल्म हम दोनों से आपके लिए आ रहा है, और इस गाने को लिखा था साहिर ने, साहिर लुधियानवी। जी हाँ, इस गाने के शब्द इतने आम और गहरे हैं कि ये हर दिल को छू लेते हैं, और जो इस गीत में लाइन है, दिल अभी भरा नहीं, इस लाइन को इन्होंने इतना आम शब्दों में बयां कर दिया कि ये गहरा रोमांटिक रूप इस गीत को मिल गया। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म हम दोनों से।
1: अभी न जाओ छोड़ कर,

जो अगला गीत हम आपको सुनवाने वाले हैं वो कहा जाता है कि इस खूबसूरत गाने की शुरुआती बोल जो है वो गीतकार शैलेंद्र ने एक माचिस की डिब्बी पर लिखे थे। जी हाँ, और साथ ही ये फिल्म फंटोश के लिए गाना लिखा गया था, लेकिन बाद में इसे देवानंद की काला बाजार फिल्म में शामिल कर लिया गया। जी हाँ, आप शायद सही अनुमान लगा रहे होंगे कि मैं कौन सा गीत आपको सुनवाने वाली हूँ। खोया खोया चांद, आइए सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में, जिसे संगीतबद्ध किया था एस डी बर्मन ने।

अगला गीत पुराने हिंदी फिल्मों का जो हम आपको सुनवाने वाले हैं, फिल्म प्रिंस से, जिसमें शमी कपूर और वैजयंती माला ने काम किया था और इसे मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी थी। और दोस्तों आपको बता दें कि ये जो गीत है ये एक पब में लिखा गया था। जी हाँ, गीतकार हसरत जयपुरी जब एक नाइट क्लब में बैठे थे तब एक महिला की चमकती ड्रेस देखकर उनके दिमाग में ये गीत के शब्द आए थे।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गीत सुनहरे, जिसमें हम आपको सुनवाते हैं पुराने हिंदी फिल्मी नगमे ऑफ गोल्डन एरा। अगला गीत आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ है, साथ में सुमन कल्याणपुर और संगीत शंकर जय किशन का है। और दोस्तों आपको बता दें कि गाने में जो शम्मी कपूर का ताली बजाने वाला अनोखा डांस स्टेप है, उनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। आइए सुनते हैं ये गीत।

गीत आप सुन रहे थे फिल्म ब्रह्मचारी से। अगला गीत जो हम आपको सुनवाने वाले वो है 1965 की सुपरहिट सस्पेंस थ्रिलर फिल्म गुमनाम। जी हाँ, ये बेहद और बेहतरीन रहस्यमय गानों में से एक है। जी हाँ, और आपको बता दें ये फिल्म मशहूर लेखिका अगाथा क्रिस्टी के प्रसिद्ध उपन्यास एंड देन देयर वर नन पर आधारित थी। और ये पहला हिंदी फिल्म गीत था जिसे दशकों बाद 2001 में आई हॉलीवुड फिल्म घोस्ट वर्ल्ड के साउंडट्रैक में इस्तेमाल किया गया था। आइए सुनवाते हैं लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर की आवाज में ये गीत।

आइए अब सुनते हैं 1976 की सुपरहिट फिल्म कभी कभी से ये गीत, जो कि अपनी सदाबहार धुन के लिए खय्याम को उस साल का फिल्म फेयर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला था और मुकेश को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का। जी हाँ, और आपको बता दें कि इस गीत के दो वर्जन थे, एक जिसे मुकेश ने अकेले गाया था और दूसरा मुकेश और लता मंगेशकर का डुएट। दोनों ही वर्जन फिल्म में अलग-अलग मौकों पर बजाए जाते हैं। आइए सुनते हैं ये वर्जन।

बेहद खूबसूरत गीत लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में आप सुन रहे थे। अगला गीत आइए आपको सुनवाते हैं, जिसमें कल्याण जी आनंद जी की जोड़ी द्वारा संगीतबद्ध है और ये गीत विनोद खन्ना और जीनत अमान पर फिल्माया गया था, फिल्म कुर्बानी से ये गीत। आइए सुनते हैं।

आशा भोसले और मोहम्मद रफी की आवाजों में इतना खूबसूरत गीत आपके लिए था। अब अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं, जिसमें आप सुनेंगे आवाज भूपेंद्र सिंह की। और दोस्तों बता दें, ये जो गीत है ये फिल्म केजे क्रोनिन के प्रसिद्ध उपन्यास द ग्रीन ईयर्स पर आधारित थी ये फिल्म बेसिकली। और इसी फिल्म का ये गीत है जिसका निर्देशन गुलजार साहब ने किया था। और फिल्म मौसम ने राष्ट्रीय पुरस्कारों में दूसरा सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का खिताब जीता था और शर्मिला टैगोर को इसके लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का फिल्मफेयर पुरस्कार भी मिला था।

इस कार्यक्रम के अंत में आपको सुनवाते हैं एक बेहद भावुक गीत फिल्म मासूम से, जिसे गुलजार साहब ने लिखा है और आरडी बर्मन ने संगीत दिया था। इस सदाबहार गीत में आप आवाज़ सुनेंगे लता मंगेशकर की। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का आखिरी गीत।

0: रात्रि के 2 बजने वाले हैं। अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ अब भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले भारत, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जुमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। इसके अलावा गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत

0: इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे हैं और लगभग 1,00,00,000 किसानों से संपर्क किया। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क की एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापुर राम मोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताड़ाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से ट्रेनों का संचालन बेहतर होगा। सर्वोच्च न्यायालय ने सीबीएसई पाठ्यक्रम के अंतर्गत 9वीं कक्षा में तीसरी भाषा शुरू करने पर चिंता जताई है और कहा है कि इससे विद्यार्थियों में तनाव बढ़ेगा। न्यायालय ने सुझाव दिया है कि इसे 5वीं या 6ठी कक्षा में शुरू किया जाना चाहिए ताकि विद्यार्थी इसे आसानी से अपना सके। न्यायालय की पीठ ने केंद्र सरकार से कहा कि वे 9वीं कक्षा से तीसरी भाषा शुरू नहीं करें। ओडिशा के पवित्र शहर पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा निकाली गई। कल सुबह से लगातार बारिश के बावजूद लाखों श्रद्धालु बड़ा डंडा पर इस पवित्र दृश्य को देखने के लिए जुटे हुए थे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए, वहीं विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 3 मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। India has crossed the 1 billion mark in social protection coverage. In a social media post, Union Labour and Employment Minister Dr. Mansukh Mandavia said, India's social protection coverage has expanded from 19% in 2015 to 68.4% in 2026, bringing more than 100 crore citizens under the umbrella of social protection framework. He said, this reflects the Narendra Modi government's commitment to Sabka Saath, Sabka Vikas. India's social protection system has expanded significantly through various welfare programs aimed at providing financial security, healthcare, and food assistance to millions. These initiatives have played a crucial role in improving livelihoods and reducing poverty across the country. Prime Minister Narendra Modi will flag off India's first hydrogen train between Jind and Sonipat at Jind Railway Station today during his visit to Haryana. Designed, engineered and integrated in India, the train has been developed using indigenous technology, reflecting the country's growing capabilities in advanced railway engineering. With the introduction of this train, India joins a select group of countries that have operational hydrogen-powered trains. These include Germany, Japan, China and the United States. The train has been designed to run at a speed of 110 kilometers per hour, but on this section it will operate at a maximum speed of 75 kilometers per hour. Mr. Modi will also launch various development projects worth around 14,700 crore rupees in Jind. He will then travel to Chandigarh, where he will unveil several development projects worth over 6,600 crore rupees. The Prime Minister will thereafter visit Jalandhar in Punjab, where he will launch multiple development projects worth over 5,470 crore rupees. Union Home Minister Amit Shah will be on a three-day visit to West Bengal from today. Sources said that during the visit, he will participate in the programs focused on border security, governance, law and order, and development. On Saturday, Mr. Shah will visit the Jumagarh border outpost in Siliguri and interact with BSF personnel at the 18th Battalion border outpost. He will also inaugurate and lay the foundation stone for various development projects related to the BSF. In the afternoon, he will chair a meeting on border-related issues in West Bengal. Sources added that the Home Minister will also review the implementation

0: कुछ कहानियां अधूरी ही अच्छी होती हैं, और इसी के साथ अब नॉन स्टॉप फिल्म म्यूजिक का कार्यक्रम गीत बहार यहीं समाप्त करने की अपनी दोस्त कीर्ति को दीजिए इजाजत। फिलहाल रात्रि के 3 बजने वाले हैं, अब हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जिंद रेलवे स्टेशन पर जिंद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित ये रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,77,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत 1,600 से अधिक वैज्ञानिक दल 728 जिलों में पहुंचे और लगभग 1 करोड़ किसानों से संपर्क किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधारित वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। ये हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। भारतीय रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घुगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेल

रेल के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती कीमत को पूरा करने में मदद मिलेगी। भारत ने सामाजिक सुरक्षा कवरेज में 1 अरब का आंकड़ा पार कर लिया है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का सामाजिक सुरक्षा कवरेज 2026 में बढ़कर 68% से अधिक हो गया है। इससे 100 करोड़ से अधिक लोग सामाजिक सुरक्षा ढांचे के दायरे में आ गए हैं। 2015 में ये मात्र 19% था। ब्राजील ने अमेरिका की ओर से लगाए गए टैरिफ का विरोध किया है और अमेरिकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की चेतावनी दी है। अमेरिका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ये फैसला कथित अनुचित व्यापारिक गतिविधियों के आधार पर लिया गया है। नए शुल्क 22 जुलाई से लागू होंगे। कार्डिफ में दूसरे एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया है। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम 44 ओवर में 233 रन पर ऑल आउट हो गई। भारत के श्रेयस अय्यर ने सबसे ज्यादा 66 रन बनाए। विराट कोहली ने 65 रन की अर्धशतकीय पारी खेली। जवाब में इंग्लैंड की शुरुआत खराब रही, लेकिन अनुभवी बल्लेबाज जो रूट ने नाबाद 99 रन की पारी खेलकर अपनी टीम को जीत लाई। जो रूट को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव 24/7 चैनल है। रात्रि के 3 बजे हैं, 3:10 हुए हैं श्रोतों। प्रस्तुत है कार्यक्रम गीत गज़ल, आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तलत अजीज़ द्वारा गाई एक बेहतरीन गज़ल के साथ।

अभी आपने मिर्ज़ा गालिब की गज़ल सुनी सोमेश कुमार के स्वर में। आइए आप सुनते हैं लता मंगेशकर को फिल्म मासूम से।

आप सुन रहे थे गीत गजल कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। आपके साथ मैं आपका अपना दोस्त मोहन। श्रोताओं, रात्रि के 4 बज चुके हैं, ये वक्त है कार्यक्रम अर्चना का।

आज के अर्चना कार्यक्रम में हम सुनेंगे सरस्वती राजगोपालन का भक्ति संगीत। कार्यक्रम के आरंभ में सरस्वती राजगोपालन प्रस्तुत करेंगी श्री दयानंद सरस्वती की रचना भो शंभू।

भक्ति संगीत के कार्यक्रम को जारी रखते हुए लीजिए अब सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से सी राजगोपालाचार्य की रचना कुरई ओनरुम इल्लई।

कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं सरस्वती राजगोपालन से अन्नमाचार्य की रचना नारायण ते नमो।

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, आइए आप सुनते हैं नाद ब्रह्म कार्यक्रम में कर्नाटक संगीत के अंतर्गत रुद्र वीणा, प्रस्तुति सरस्वती राज गोपालन की है।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़। DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आज शुक्रवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 26वीं तिथि, तदनुसार 17 जुलाई सन 2026। सुबह के 4:54 और ठीक 25 सेकंड हुए हैं। इस मीटर पर हमारे कार्यक्रम आरंभ

यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रम इस प्रकार हैं। 5:10 पर आप सुनेंगे आओ योग करें कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत भद्रासन और अश्वत्थासन के बारे में बताया जाएगा। 5:20 पर देशभक्ति संगीत आप सुन सकते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत स्वरंजनी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा 5:30 पर।

हमारी प्रातःकालीन सेवा आरंभ होगी प्रातः 6 बजे हिंदी समाचारों के साथ। हिंदी समाचारों के उपरांत 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार। 6:10 का समय वंदना कार्यक्रम का रहेगा।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचारों पर चिंतन कार्यक्रम आप सुन सकते हैं 6:40 पर। रामचरितमानस से पाठ बालकांड भाग 119 6:45 पर प्रसारित किया जाएगा। 6:55 पर संस्कृत समाचार होंगे। 7 बजे पुनः आप सुन सकते हैं हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 का समय संगीत

0: हिंदी का कार्यक्रम का रहेगा और 7:30 पर फिल्म संगीत पर आधारित गीतों भरी कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। श्रोताओं, यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। प्रातः के 5 बजने को हैं, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और हिंदी समाचारों के उपरांत अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा में जींद रेलवे स्टेशन पर जींद और सोनीपत के बीच चलने वाली भारत की पहली हाइड्रोजन रेलगाड़ी को रवाना करेंगे। पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से विकसित रेलगाड़ी उन्नत रेलवे इंजीनियरिंग में देश की बढ़ती क्षमताओं को दर्शाती है। इसी के साथ भारत हाइड्रोजन रेलगाड़ियां चलाने वाले जर्मनी, जापान, चीन और अमेरिका के समूह में शामिल हो जाएगा। एक रिपोर्ट।
2: इस ट्रेन में कुल 10 डिब्बे हैं और इसकी शुरुआत होने से यह दुनिया की सबसे लंबी हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेनों में शामिल हो जाएगी। इसमें 3200 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है, जो इसे दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेनों में से एक बनाता है। यह रेलगाड़ी हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक से चलती है, जो ट्रेन को चलाने के लिए हाइड्रोजन को विद्युत में परिवर्तित करती है। ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग से कोयला आधारित ताप विद्युत संयंत्रों से बनने वाली बिजली पर निर्भरता भी कम होगी। इससे भारत को स्वच्छ और टिकाऊ परिवहन व्यवस्था विकसित करने में मदद मिलेगी। यात्रियों की सुरक्षा के लिए ट्रेन में आधुनिक बहुस्तरीय सुरक्षा प्रणाली लगाई गई है, जो हाइड्रोजन रिसाव, अधिक तापमान, आग की लपटों और धुएं का तुरंत पता लगा सकती है। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: संसद के मॉनसून सत्र से पहले आज एनडीए की बैठक होगी। इसकी अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। बैठक में संसद में पेश किए जाने वाले विधेयकों पर विचार विमर्श होगा। सूत्रों के अनुसार परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संशोधन विधेयक पर भी विचार किया जाएगा। मॉनसून सत्र 20 जुलाई से शुरू हो रहा है। गृह मंत्री अमित शाह आज से पश्चिम बंगाल के 3 दिन के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे सीमा सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सुशासन और विकास से जुड़े कार्यक्रमों में शामिल होंगे। शनिवार को वे सिलीगुड़ी के जूमागाछ सीमा चौकी का दौरा करेंगे। वे बीएसएफ से जुड़ी विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। गृह मंत्री पश्चिम बंगाल में सीमा से जुड़े मुद्दों पर बैठक की अध्यक्षता भी करेंगे। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि जलवायु परिवर्तन जैसी चुनौतियों के बावजूद भारत ने इस वर्ष 3,76,00,000 टन अनाज और 3,73,00,000 टन बागवानी उत्पादों की पैदावार की है। नई दिल्ली में श्री चौहान ने कहा कि वैज्ञानिक अब किसानों के साथ मिलकर काम करने के लिए सीधे खेतों में जा रहे हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 पुनर्परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। एनटीए के अनुसार 11 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने स्नातक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, आयुष और अन्य संबंधित पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए पात्रता हासिल की है। सभी उम्मीदवार अपने अंक पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर देख सकते हैं। इस वर्ष पुनर्परीक्षा में देश के 551 शहरों और विदेशों के 14 शहरों में 5,440 केंद्रों पर करीब 20 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। केंद्र शासित प्रदेश दमन और नई दिल्ली के बीच सीधी व्यावसायिक विमान सेवा शुरू हो गई है। यह हवाई संपर्क के एक नए दौर की शुरुआत है। नागर विमानन मंत्री किंजरापू राममोहन नायडू ने कल पहली उड़ान को दमन के नमो हवाई अड्डे से रवाना किया। रेलवे ने महाराष्ट्र के 14 किलोमीटर लंबे ताडाली घूगस रेलखंड के दोहरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना पर 200 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होंगे। रेल मंत्रालय ने कहा है कि इस रेलखंड के दोहरीकरण से माल ढुलाई की बढ़ती मांग को पूरा करने में सहायता मिलेगी। ब्राजील ने अमरीका की ओर से लगाए गए नए टैरिफ का विरोध किया है। अमरीकी उत्पादों पर जवाबी शुल्क लगाने की भी ब्राजील ने चेतावनी दी है। अमरीका ने ब्राजील से आने वाले कुछ उत्पादों पर 25% नया शुल्क लगाने की घोषणा की है। ओडिशा के पुरी में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा आज सुबह 9:30 फिर शुरू होगी।
3: चतुर्भुज जगन्नाथ कंठ शोभित कौस्तुभ
1: कल रात अंधेरा होने पर रथों को रोक दिया गया था। आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के रथ श्री गुंडीचा मंदिर की ओर आगे बढ़ेंगे। रथ यात्रा में शामिल होने के

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, 5:11 और ठीक 13 सेकंड हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ योग करें।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है। और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी

मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं।